0: और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम मत करो।
1: والأرض وضعها للأنام
0: और उसी ने खलकत के लिए जमीन बिछाई।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
0: उन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: कुल मन अलैहा फान,
0: जो मखलूक जमीन पर है सबको फना होना है।

आसमान और जमीन में जितने लोग हैं सब उसी से मांगते हैं, वो हर रोज किसी न किसी काम में होता है।

0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे?
1: ऐ
0: दोनों जमातों, हम अनकरीब तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होते हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? उन दोनों में बहुत सी शाखें यानी किस्म किस्म के मेवों के दरख्त हैं।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? इनमें दो चश्मे बह रहे हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? और इन बागों के अलावा दो बाग और हैं,

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? दोनों खूब गहरे सब्ज़।

तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे? वो हूरे हैं जो खेमों में महफूज हैं।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: अस्सलाम वालेकुम. आज बुध है, रबीउल सानी की 10 और सितंबर की 23 तारीख. ये रेडियो पाकिस्तान है. आसफा महफूज से खबरें सुनिए. अहम खबरों का खुलासा. वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में कीनिया के सदर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने के आज़म का अदा किया है. सदर ने सऊदी अरब के 96वें कौमी दिन के मौके पर सऊदी क़यादत और बरादर आवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है. पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया ने मशरक़ वुस्ता में अमन व इस्तेहकाम के फरोग के लिए मिलकर काम करने के आज़म का अदा किया है. वजीर खजाना ने पाकिस्तान की हवाबाजी की सनत के लिए बोइंग कंपनी की मावनत को सराहा है. पिशावर मोटरवे M1 आज रात 11 बजे से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी. जापान में जारी 20वें एशियाई खेलों के हॉकी मुकाबलों में पाकिस्तान अपने तीसरे मैच में कल चीन के मद्दे मुकाबल होगा. और अब खबरों की तफसील. पाकिस्तान और कीनिया ने दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने के आज़म का अदा किया है. यह इत्तफाक राय न्यूयॉर्क में अकौमे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कीनिया के सदर विलियम रोटो के दरमियान मुलाकात में हुआ. दोनों रहनुमाओं ने तआवुन के मौजूदा इदाराजाती तरीक़ाकार को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोनों ममालिक की कारोबारी बिरादरियों के दरमियान रवाबित के फरोग की हौसला अफजाई की और कीनिया के सरमायाकारों को पाकिस्तान में खसूसी इक्तसादी जोन समेत सरमायाकारी के मौके तलाश करने की दावत दी. सदर रोटो ने मगरबी एशिया और खलीजी खित्ते के हालिया बहरान में पाकिस्तान के सालसी के किरदार को सराहा. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर कुवैत के वली अहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अस सबा से मुलाकात की. दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में तआवुन मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया. मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने कुवैत के साथ पाकिस्तान के मजबूत और बरादराना ताल्लुकात का अदा किया. उन्होंने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और इंसानी वसाइल की तरक्की के शोबों में दो तरफा तआवुन बढ़ाने के इम्कानात को उजागर किया. दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के फरोग के लिए अपने मुश्तरक आज़म का अदा किया. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अफगानिस्तान की सरजमीन को हमसाया ममालिक खसूसन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए ठोस और काबिल तस्दीक इकदामात की जरूरत पर जोर दिया है. वो न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर अफगानिस्तान के बारे में इस्लामी तआवुन तंजीम के राबता ग्रुप के इजलास से खिताब कर रहे थे. नायब वज़ीर आज़म ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जानिब से दी जाने वाली कुर्बानियों का जिक्र किया. सैनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार ने अफगान तालिबान पर जोर दिया कि वह अफगानिस्तान की बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों और वादों की पासदारी, दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती के खात्मे, ख़वातीन और बच्चियों पर आयद पाबंदियां उठाने को यकीनी बनाए और वतन लूटने वाले अफगान शहरियों की दोबारा आबादकारी और माशरे में इंजमाम में सहूलत फ़राहम करें. नायब वज़ीर आज़म ने एक मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान की हिमायत का अदा किया जो खुद भी और अपने हमसाया ममालिक के साथ भी अमन में हो. नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर कुवैत के वज़ीर ख़ारजा शेख जरा जाबिर अल अहमद अस सबा से मुलाकात की. दोनों वज़राए ख़ारजा ने बाहमी दिलचस्पी के शोबों में दो तरफा तआवुन मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया. उन्होंने मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल समेत इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया और तमाम मसाइल के हल और अमन इस्तेहकाम के फरोग के लिए मुसलसल मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया. पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किया ने मशरक़ वुस्ता और वसी तर खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के फरोग के लिए करीबी राबता और मशावरत बरकरार रखने के आज़म का अदा किया है. यह इत्तफाक राय न्यूयॉर्क में अक़्वामे मुत्तहदा की जनरल असम्बली के 81वें इजलास के मौके पर चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास में हुआ. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ پائیدار حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری ہی واحد راستہ ہیں۔ وزرائے خارجہ نے دیر پا امن اور استحکام کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے سعودی عرب کے خلاف حوثیوں کے حملے کی مذمت کی اور اس کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سلامتی کے لیے حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مملکت کے اپنے دفاع، اپنے علاقے اور عوام کے تحفظ کے حق کی بھی توثیق کی۔ وزرائے خارجہ نے بحری نقل و حمل کی سلامتی اور آزادی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا اور یمن کی جائز حکومت اور صدارتی قیادت کونسل کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق سمیت حق خود ارادیت اور 4 جون 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر عمل کی سلامتی اور آزادی کے تحفظ کی اہمیت پر زور دیا اور یمن کی جائز حکومت اور صدارتی قیادت کونسل کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے فلسطینی عوام کے جائز حقوق

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

101 FM。

101 FM。

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: Back to back hit music on your favorite musical channel, Radio FM 101. Stay tuned.

0: Yes. Sorry.
1: 101 FM.
0: Gook Studio, Season 14.

0: 101 FM
1: Coke Studio Season 15
2: Για το λόγο σε ασυνάργεστε κόμμα

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

0: now you are tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
1: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में कीनिया के सदर और कुवैत के वली अहद से मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इआदा किया है। सदर ने सऊदी अरब के 96वें कौमी दिन के मौके पर सऊदी क़यादत और बरादर अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। इशारों की जबानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। उर्दू के मारूफ शायर और ब्रॉडकास्टर ताबिश देहलवी की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है। और अब खबरों की तफसील।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: दीद कहते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप तमाम सुनने वालों ने आज के दिन का आगाज भी बहुत ही अच्छे और बहुत ही शानदार अंदाज के साथ किया होगा और इस दुआ के साथ कि आपको आपका आज का सारे का सारा दिन बहुत ही अच्छा, खुशियों भरा, बखैर वाफियत वाला दिन देखना और गुजारना नसीब होगा। जनाब 9:12 हुए चाहते हैं पाकिस्तान का मयारी वक्त और मेरा आपके साथ रहने का भी तारीख की बात कर लें तो आज तारीख हो चली है सितंबर की 23, जबकि 21वीं सदी का 26वां साल यानी कि 2026 जो कि है अपने इख्तिताम की जानिब रवां दवा। तो बताएं जनाब कैसे हैं आपके जज्बात, एहसासात, ख्यालात और सबसे बड़के हालात। आई डू होप के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, कूल होंगे, फैंटास्टिक होंगे और बहुत ही शानदार मज़ेदार अंदाज के साथ आप तमाम सुनने वाले अपने अपने कामों में मगन होंगे और हमें सुन रहे होंगे। बातें चलती रहेंगी और अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहा आसान, FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज
1: हमेशा।
0: लेकिन उससे पहले आप तमाम समातों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें ट्यून इन करने के लिए, हमें लॉग इन करने के लिए। अगर बात कर लीजिए लाहौर और उसके मज़ाफ़ात के अलावा पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आप हमें जहां कहीं से भी समात फरमा रहे हैं, हंसते हुए, गाते हुए, मुस्कुराते हुए, चहचहाते हुए, लहलहाते हुए, गाड़ी चलाते, खाना बनाते, खाना खिलाते, चाय या कॉफ़ी पीने के साथ साथ आप कुछ ठंडा खा पी रहे हैं और हमें सुन रहे हैं, तो जनाब आपकी समातों का, आपके ट्यून इन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कुछ होगा आज भी सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, हंसने को, हंसाने को, बोलने को, बुलवाने को, महसूस करने और करवाने को और सबसे बढ़ के सीखने को, सिखाने को। आज के दिन के मौजूदात के वाले से बात की जाएगी, आज के दिन क्या है ख़ास और कुछ सवालात किए जाएंगे, उनके जवाबात आपसे लिए जाएंगे। कुछ दो तरफ़ा गुफ्तोशनीद का जो सिलसिला है वो भी आपके साथ सोन चलता रहेगा। गला कुछ ख़राब है आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, वही हम कोशिश करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे और एक अच्छी वाइब के साथ आज के शो को भी बहुत यादगार बनाएंगे, खुशगवार बनाएंगे। आज के दिन के हवाले से बात कर ली जाए तो आज के चढ़ते सूरज के साथ ही हम इख्तियार कर चुके हैं बुध के दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। वो कहते नहीं ना कि बुध देते कम सूद दे, तो बुध का दिन जो है कहा जाता है, ये एक राय अमूमी तौर पे बड़े रखते थे कि बुध का दिन बहुत अच्छा होता है, अच्छे अच्छे काम होते हैं, एक खैर खाई के मामलात होते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि उनका बुध का दिन ना बुरा गुजरता है। मैंने लास्ट में बताया था, मेरी एक फ्रेंड हैं तो वो अक्सर कहते हैं कि ना बुध के दिन कोई भी अनहोनी होनी होती है, कोई भी बुरा काम होता है ना वो बुध के दिन होता है। मेरे साथ ऐसा नहीं है, आपके साथ कैसा है आप बता सकते हैं। पोस्ट अपडेट की जा चुकी है और पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर आप हम तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं और यकीनन आप कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। हम रखेंगे आपकी तमाम तर फरमाइशों का तहे दिल के साथ ख्याल और इनका खैर मकदम किया जाएगा। वेल जनाब दिन का आगाज़ हुआ चाहता है और बल्कि आगाज़ किया, अब तो दिन इख्तिताम होने वाला है, दोपहर आने वाली है। तो अगर आप अभी अभी उठे हैं तो आपका तो दिन अभी चढ़ गया है। तो जनाब आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ हैं और अच्छे अच्छे काम कीजिए और अपने मुस्तकबिल के हवाले से थोड़ा गौर व फिक्र कीजिए, कुछ ना कुछ कर लें, नहीं करेंगे तो फिर कोई और कर लेगा। आपके हिस्से का जो मकाम है, जो जगह है, जो अपॉर्चुनिटी है, जो मौका है, वो कोई और हासिल कर लेगा। क्या आप ऐसा चाहते हैं? तो हर किसी को ना उसके हिस्से का उतना ही मिलता है जितनी वो मेहनत करता है। सो इस बात पर हमें कामिल यकीन होना चाहिए और हमेशा जो अवेलेबिलिटी के हवाले से अपने आप को अवेल रखता है, अपने आप को अलर्ट रखता है, अपने आप को जो है ना अवेजा रखता है, देखा जाता है, कहा जाता है कि हमेशा उसी को मौका मिलता है। और बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कोई नहीं कल से परसों से ही, और मैं यकीन करें बहुत सारे ऐसे मैं दोस्तों को जानता हूं, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े नामवर शख्सियात को जानता हूं, सवा कमर की बात हो रही थी, वो बताती हैं कि उनसे सवाल किया गया कि वो अदाकार कैसे बनी थी, तो सवाल के जवाब में ये कहती हैं कि वो अपनी जो उनकी जॉब थी ना वहाँ पर एक स्क्रीन प्ले के हवाले से, वो उसमें बहुत डिसिप्लिन थी, रोज़ आती थी, अपना काम करती थी और कभी नागा नहीं करती थी, टाइम पे आती थी, टाइम पे जाती थी। और इस चीज़ का फ़ायदा उनको इस तरह से हुआ कि जो एक ड्रामे की हीरोइन थी ना, जो अदाकारा थी, वो उस दिन वहाँ पर नहीं थी और उनकी जगह सबा कमर को काम करने का मौका मिला और उन्होंने इस मौके पे चौका मारा था। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम ना चौका मारने के बजाय ना हम वो टिप टिप करते रहते हैं। तो इतने में क्या होता है कि बोले जो हैं हमारी ज़िंदगी के जो दिन हैं, जो लम्हे हैं, जो घड़ियां हैं, जो साथ हैं, वो ज़ाया होती रहती हैं। सो जो ज़ाया नहीं करता उसको बहुत कुछ उसकी ज़िंदगी में मिल जाता है। बोले आपको अगर कुछ नहीं भी मिला ना, सो परेशानी वाली कोई बात नहीं। वो मैं कहता हूँ ना कि अपने आसाब पे तलखी क्यों उतारी जाए, ज़िंदगी एक है सो क्यों ना भरपूर गुजारी जाए। सो जनाब ज़िंदगी की बात हो रही है और कुछ अल्फाज हैं, कुछ पैगामात हैं, बिल्कुल इन पे भी बात करें, लेकिन अल्फाज के नाम से ट्रैक आपकी समातों के नाम करना चाहूँगा। हमज़ा मलिक और जैन जुहेब की आवाज़ में बिल्कुल ब्रांड न्यू सॉन्ग है, आपने सुन रखा होगा मेरे लास्ट शो में और दोबारा सुनोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। सुबह के इस पहर में एक बहुत ही अच्छा सा गाना, बहुत ही मज़ेदार सा गाना। आप तमाम समातों के नाम, आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। हमें कहते हैं फेमन वन चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं सो स्टे ट्यून्ड स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फिर 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। शो लाइव है सिटी वाइब्स। वेल 9:23 पर चाहते हैं बात कर लेते हैं आज के दिन के मौसम के हवाले से, क्या हालात वाक़ियात हैं आज के मौसम के लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में। सो आपके गिरद नवा का, आपके इलाके का, और सबसे बढ़ के आपके दिल का, आपके मन का, आपके अंदर का मौसम कैसा है, यह आप मुझे बता सकते हैं, मुझे जान के अच्छा लगेगा। वेल, लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए, आज मैक्सिमम टेम्परेचर जो अभी रिकॉर्ड किया जा रहा है वो है 31, और जो किया जाएगा वो है 36। मिनिमम की बात कर लीजिए 25, यानी कि 25, और इसके साथ साथ हवा में नमी का तनासुब आज रहने वाला है 64%। इसके साथ साथ शाम के औकात में ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं 5 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से। बारिश के इम्कान मौजूद नहीं है, और शाम के औकात में हल्की फुल्की जो है ना बादलों की आंख मचोली भी आपको दिखाई देगी। सो मौसम खुशगवार है। इसके साथ साथ सितंबर की बात की जाती है, अक्टूबर आने वाला है। सो इस तरह के मौसम में जो है ना, वो जो मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था कि जो बहार की वाइब है, जो एक फील है, वो आपको महसूस होना शुरू हो जाती है। सो ये अच्छी बात है कि हब्स है, जो घुटन है वो कम हो जाएगी और मौसम थोड़ा सा मज़ीद अच्छा और खुशगवार हो जाएगा। वेल, मौसम जैसा भी हो, आपके दिल का, आपके मन का, आपके अंदर का मौसम जो है ना वो अच्छा होना चाहिए। सो इसको खुशगवार बनाने के लिए हम रहते हैं हम वक्त आपके साथ, यानी कि FM 101 चैनल रेडियो पाकिस्तान लाहौर आपके साथ मौजूद रहता है, और बहुत सारे नशियात लेकर, अच्छा अच्छा म्यूज़िक लेकर, और इसके साथ साथ प्रोग्राम्स का जो पे दर पे सिलसिला है ये भी आपके साथ सोन चलता रहता है। वेल, बातें चलती रहेंगी। मौसम के अलावा हम आज के दिन के मज़ीद मौजूदात के हवाले से बात करेंगे। आज जनाब कुछ अहम दिन बनाए जा रहे हैं, सो उन पे बात की जाएगी। आज आलमी दिन है जो साइन लैंग्वेजेस होती हैं ना, जिनको इशारों किनायों की ज़ुबान कहा जाता है, सो उनका आज आलमी दिन जो है वो मनाया जा रहा है। सो इस पे हम बात करेंगे इन ज़ुबानों की, इन साइंस की क्या अहमियत होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अपने अल्फाज का, अपनी ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किस तरह से अपने इशारों के ज़रिए से कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझते हैं, समझाते हैं। इस पे हम बात करेंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ सवालात किए जाएंगे, और कुछ मज़ीद खबरें होंगी, कुछ अपडेट्स होंगी, और आपकी तबीयत वगैरह, आपकी सेहत कैसी है, ये आपसे जाना जाएगा। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरी जो तबीयत है कुछ गड़बड़ सी लग रही है आज, मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा। असल में मैंने सुबह एक काम किया है, मैंने शेक पिया है, और शेक पीने के बाद ना पीते हुए मुझे थोड़ा कड़वा लगा था, और मैंने जब बाद में पता किया तो वो मुझे पता चला कि जो कड़वा था ना शेक, वो इस वजह से था क्योंकि केले जो थे वो कच्चे थे। सो होता है, ऐसा होता है। कभी कच्चा आम खाया है, कच्ची अम्बी खाई है, उसके बाद गले में कैसा महसूस होता है। सो कुछ ऐसी ही कैफियत है आज मेरी भी। वेल, आपसे बातें चलती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं, एक और शेयर को शामिल करना चाहूँगा। सो अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ भी सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम। तरीका इंतहा आसान, FM 101 लाहौर का फेसबुक फैन पेज, यहाँ पर आने के बाद आप मुझ तक अपनी रसाई को यकीनी बना सकते हैं, और कह सकते हैं यकीनन आप जो भी कहना चाहते हैं, सुन सकते हैं जो भी आप सुनना चाहते हैं। हम रखेंगे आपकी तमाम तर फरमाइशों का तहे दिल के साथ ख्याल, और इनका खैर मकदम किया जाएगा। अभी कुछ ऑफर कॉलर्स मौजूद थे, बिल्कुल आपकी लाइव कॉल्स को भी इंशाल्लाह इंटरटेन किया जाएगा 10 बजे के बाद। इसके अलावा आपके कुछ पैगामात हैं, कुछ मैसेजेस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, इनको भी ऑफ कोर्स शामिल किया जाएगा। अभी आज जो शेराज मेरे साथ मौजूद हैं, मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया शेराज, जीते रहो, सलामत रहो। मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, मेरा भाई है, और इकट्ठे हमने एक चैनल पे काम किया था, बहुत अच्छा बोलता है ये लड़का भी। तो कभी मौका मिला तो सुनाएंगे, कभी आपको सुनाएंगे इनकी आवाज़ में भी कुछ कि आपकी कानों को अजियत। कोई जोक्स अपार्ट, बातें चलती रहेंगी। अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा हसन रहीम की आवाज़ में, कहते हैं राधा, मेरी राधा। तो इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक। इस बार आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा।

ओके जना, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमें कहते हैं फेमा वन चैनल वीडियो पाकिस्तान लाहौर, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। शो लाइव है सिटी वाइब्स। 9:34 हुए जाते हैं, 9:34 AM। बात कर लेते हैं आज के दिन के हवाले से जनाब। आज इंटरनेशनल साइंस लैंग्वेज डे जो है वो मनाया जा रहा है। यानी कि ये जो अलामतें होती हैं, जो निशानात होते हैं, इशारे होते हैं, इनकी जो जो कम्युनिकेशन का तरीका होता है, जो गुफ्तगु होती है, इसका आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। सो ये तारीखें जो होती हैं एक बहाना होती हैं। मैं अक्सर कहता हूँ इनके पीछे कुछ ऐसे मकासद होते हैं, कुछ ऐसे अज़ाइम होते हैं। सो जैसा कि मैं इसके बारे में बिल्कुल बाद में बात करूँगा, आपको पता होगा कि जो समाज से महरूम अफराद हैं, जिनको बहरे कहा जाता है, सो कहना नहीं चाहिए, लेकिन समाज से महरूम अफराद या इनके स्पेशल पर्सन हैं किसी भी हवाले से, जो कि सुन नहीं सकते हैं, उनका जो है आज अहम दिन है। सो इनको डेडिकेटेड है। और बहुत सारे हमारे आसपास चले नहीं होते, लेकिन दुनिया में तकरीबन चले, मैं लेट मी चेक, तकरीबन 72 मिलियन से ज़ायद अफराद जो है ना, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया में पाई जाती है, जो कि समाज से महरूम यानी कि डेफ पीपल हैं। सो इनके हवाले से ये कहा जाता है, बेसिकली ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये जो एक मोहतात तखमीना लगाया गया है, ये लगाया गया है जनाब वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ, यानी कि जो बहरे लोगों का, समाज से महरूम अफराद का जो एक आलमी इदारा है, इनका ये कहना है, ये मैं नहीं कह रहा आज, इनका ये कहना है कि 72 मिलियन अफराद जो हैं वो दुनिया में तकरीबन जो हैं वो समाज से महरूम होते हैं। सो जिस तरह कोई भी मखलूक़ात हैं, किसी भी तरह की इस दुनिया में रहने वाली, इस कायनात में रहने वाली जितनी भी मखलूक हैं, वो किसी ना किसी तरह से बात करती हैं, किसी ना किसी तरह से पैगाम रसाने का काम करती हैं, कम्युनिकेशन करती हैं, अपने इमोशंस का, अपने जज्बात का, अपने पैगामात का, खतरात का, खदशात का इजहार करते हैं। सो इंसान के बारे में कहा जाता है, इसको इसी वजह से कहा जाता है अशरफुल मखलूकात है, कि उसके पास सोचने समझने की, चीज़ों को एक अच्छे वे में प्रोसेस करने की जो सलाहियत है ना, वो मौजूद है। लेकिन इंसानों में भी कुछ इंसान ऐसे हैं जिनके पास ये सलाहियत नहीं है, वो इस सलाहियत से महरूम है, और इसमें भी खुदा की कोई करनी है। लेकिन कहा जाता है कि जो मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था कि जो लोग नाबीना होते हैं यानी कि बिनाई से महरूम होते हैं या समाज से महरूम होते हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती हैं, मुशाहिदा करने की सलाहियत होती है ना, ये नॉर्मल जो अफराद होते हैं, जो इंसान होते हैं, इनसे 10 गुना ज़्यादा होती है। यानी कि चीज़ों को ये ज़्यादा सेंस कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इनके हवाले से बात की जा रही है, इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस का जो आज दिन है वो मनाया जा रहा है, और इसकी तारीख जनाब कुछ यूँ है कि तकरीबन 23 सितंबर को जो था इसका बकायदा जो था वो आगाज़ किया गया था, और ये डेडिकेट किया गया था ये दिन आलमी तौर पर तमाम जो समाज से महरूम अफराद हैं इनके लिए। सो बहुत सारे स्कूलों का क़याम किया जाता है, बहुत सारे ऐसे इदारों को जो है तश्कील में लाया जाता है कि जिनमें समाज से महरूम अफराद की तालीम के हवाले से, इनके फलाह व बहबूद के हवाले से काम किया जाता है। सो पाकिस्तान में भी ऐसे इदारे मौजूद हैं, और मेरा एक दोस्त है, उसका छोटा भाई है, उसके साथ ये मामला है, और क्या ही प्यारा वो बच्चा है, इतने प्यारे प्यारे उसके इशारे होते हैं, वो अपने प्यार का, अपने गुस्से का, अपने इमोशंस का इजहार अपने हाथों से, अपनी हाथों की उंगलियों से, अपने इशारों से करता है। इतने प्यारे लगते हैं ये बच्चे, ऐसे इंसान। सो कभी भी बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही एक सतही सी बात है और बुरी बात है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि इनके बारे में उनको कमतर नहीं जानना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। कोई कैसे क्यों सोच सकता है किसी भी इंसान को कमतर? लेकिन बात सारी ये है कि कभी कभी होता है कि हम देखते हैं ना कि हमारे पास ये सहूलत है, हमारे पास ये तमाम तर बुनियादी अशिया, बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं, इनकी बुनियाद पर हम दूसरे लोगों को जज करते हैं जिनके पास ये सलाहियतें हैं, वो सहूलतें नहीं होती हैं। सो ये मामला थे, और ये भी हकीकत है, लेकिन इस हवाले से हमने थोड़ा सा गौरव फिक्र करना है, तमाम तर इंसानों का ख्याल रखना है, स्पेशली वो तमाम अफराद का जो कि किसी भी तरह से ख़ास हैं, हमसे ज़्यादा ख़ास हैं। सो इनकी बातों को समझने के लिए मुझे याद पड़ता है कि मैं कॉलेज जाता था, और रास्ते में कुछ दो लड़के होते थे मेरे सामने सीट पर बैठते थे,
और वीडियो कॉल पे अपने दोस्तों के साथ बात करते थे, और वीडियो कॉल मुसलसल उनकी जो होती थी ना, वो इन्हीं इशारों पर, इन्हीं साइन जो लैंग्वेजेस होती हैं इन पर होती थी। और उनमें से एक दोस्त के बारे में मुझे पता चला था कि उसने अपनी एक बाकायदा जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, वो डेवलप कर रखी थी उन तमाम अफराद के लिए जो कि समाज से महरूम हैं। मुझे पता चला उस ऐप के नाम का या उसके हवाले से मज़ीद कोई वगैरह हुई है तो आपके साथ लाजमी शेयर किया जाएगा। सो अगर आप भी ऐसे अफराद में शामिल हैं जो कि सुन नहीं सकते हैं, आपके जानने वालों में कोई ऐसा है तो कई होते हैं ना, सुनी अनसुनी भी कर देते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप उनको बिल्कुल कोई आज के दिन अच्छी बात कह सकते हैं, अच्छा पैगाम दे सकते हैं, उनको कुछ आप गिफ्ट दे सकते हैं, और उनका किसी भी तरह से ना आप ख्याल रख सकते हैं। वेल ये बातें चलती रहेंगी और अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो उन बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन साथ साथ मौसीकी का जो तड़का है इसको भी हम शामिल रखते रहेंगे। आवाज़ शामिल करना चाहूँगा आसिम अज़हर की, और साथ में है जानी, कहते हैं तेरे बिन नहीं लगता। सो क्या नहीं लगता, बिल्कुल दिल की बात हो रही होगी। वेल इस गाने को सुनेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। आसिम अज़हर की आवाज़ में इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं और वापस आते हैं इस ट्रैक के उस पार। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिएगा।

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है। अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे होने को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ। तू समझे मुझे अब भी, तू जैसे कोई नूर है, कोई नूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा।

तू मुझसे इतना दूर है, अब कर लिया कबूल है। अंदर से तू भी जानती तेरे तेरे मन को है, पर तू जाने में मजबूर हूँ, मैं तेरा मशकूर हूँ। तू समझे मुझे अब भी, तू जैसे कोई नूर है। कोहिनूर है तू, एक फितूर है तू, इतने फासले पर फिर भी कुछ सुकून सा।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 9:55 हुए चाहते हैं मेरा आपके साथ, ये साथ रहेगा ठीक 11 बजे तक के लिए। थोड़ा सा ना नपे तुले अंदाज में बोलना पड़ रहा है, उससे थोड़ी सी लुकनत का भी मुझे है मामला दरपेश। वेल, बातें आपसे चल रही हैं, आपके कुछ लाइफ जो पैगाम हैं वो भी शामिल किए जाएंगे। वेल, कल के हवाले से बात कर लेते हैं। कल 22 सितंबर जो था, बहुत सारे गाने आपने ऑफ कोर्स मलिका तरन्नम मैडम नूर जहां के सुने होंगे। जनाब, कल इनका जो था 100वां जो है योम पैदाइश मनाया गया था। बहुत सारे गाने, बहुत सारे नगमे, बहुत सारे इवन के नाते कलाम तक पढ़ने वाली ये फनकारा थी। और कहा जाता है ना कि जो सच्चा फनकार होता है बिल्कुल जो कि रूह के साथ अपने फ़न में जो है ना वो एक निखार लाता है। सो इसके बारे में कहा जाता है कि सच्चा फनकार, ऐसा सच्चा फनकार जो होता है वो कभी मरता नहीं है, वो हमेशा अमर हो जाता है। सो वो अपने काम के ज़रिए से वो अमर रहता है, ज़िंदा रहता है। और नूर जहाँ के हवाले से बात की जाती है मैडम नूर जहाँ के हवाले से कि ये भी बिल्कुल एक ऐसी ही नायाब और बेमिसाल फंकारा थी और रहेंगी। वही जनाब, इनके हवाले से बिल्कुल आपको बुनियादी मालूमात होंगी। एक्चुअली मैंने इनका भी एक ट्रैक निकाला था, एक गाना, और मैंने सोचा था क्यों ना इसको शामिल किया जाए और सुबह के इस पहर में थोड़ा सा माहौल को भी गर्माया जाए। सो मैडम नूर जहाँ के हवाले से बुनियादी कुछ मामलात, वो तमाम नए सुनने वाले, वो तमाम बच्चे जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमें सुन रहे हैं, इनको बताता चलूँ कि कहा जाता है कि पैदाइश के 100 साल बाद भी मैडम मलिका तरन्नम नूर जहाँ जो हैं वो जनूबी एशिया की सबसे महबूब गुलकार हैं। इनके बारे में बड़े बड़े जो फनकार थे, बड़े बड़े जो गायक थे, चाहे हमसाए ममालिक की बात कर लीजिए, पूरी दुनिया से बड़े फनकारों की बात कर लीजिए, उन्होंने इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी जो अलकाबात थे, बहुत ऐसे ऐसे जो अल्फाज थे उनका इस्तेमाल किया था। सो इनको यही वजूहत हैं, इनका जो फ़न था और जो डेडिकेशन थी, जो महारत थी, जिसके बिना पर इनको एशिया की सबसे महबूब, सबसे ज़्यादा जानी जाने वाली, पसंद की जाने वाली जो खातून गुलूकारा हैं, इनके नाम पर इनको जाना जाता है। सो नूर जहाँ मलिका तरन्नम मैडम नूर जहाँ 21 सितंबर को 1926 को कसूर में पैदा हुई थी। और इनका नाम जो था, चले इनका असल नाम भी जो है बहुत कम लोगों ने सुना होगा, जो जान रखा होगा, अल्लाह वसाई के नाम से ये जानी जाती थी। अल्लाह वसाई इनका जो असल नाम था ना बचपन में, वो रखा गया था। सो इन्होंने कम उम्र में ही गाना और अदाकारी शुरू कर दी थी, और इसमें कहा जाता है कि इन्होंने ऐसी महारत हासिल की कि इन्हें मलिका तरन्नम का खिताब मिला था। मैं ये बिल्कुल बताने लग गया क्यों मिला था, इसके पीछे कौन कौन से गाने थे, कैसे कैसे रिकॉर्ड से, तो वो बात कहाँ से कहाँ चली जाएगी, फिर मुझे बारी बारी करके सब चलाने भी पड़ेंगे। सो वेल, अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा आप तमाम समातों के नाम। मैडम मलिका तरन्नम जहाँ की आवाज़ में कहती हैं एक तेरा प्यार, थोड़ा आज के एक नए अंदाज में, नई बीट के साथ, नए सांस के साथ जो है इसको रिक्रिएट किया गया है। इस ट्रैक को मिलकर सुनते हैं, इन्जॉय करते हैं, वापस आते हैं इस ट्रैक के उस पार। आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ रहिएगा, बल्कि न्यूज़ ब्रेक का वक्फा है, इसको भी हमने शामिल करना है। कुछ खबरें सुन लेते हैं, उसके बाद हम अपनी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपने कहीं जाना नहीं, हमारे साथ मौजूद रहिएगा।

0: दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में कीनिया के सदर और कुवैत के वलीअहद से मुलाकातों के दौरान दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इरादा किया है। सदर ने सऊदी अरब के 96वें कौमी दिन के मौके पर सऊदी क़यादत और बरादर अवाम को दिली मुबारकबाद पेश की है। इशारों की जुबानों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। उर्दू के मारूफ शायर और ब्रॉडकास्टर ताबिश दहलवी की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Alright जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। 04-4111-0101 पे आपकी लाइव कॉल्स और जी, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को

ये मुख्तलिफ ममालिक में जो हैं वो नए नए जो बिल्स हैं वो पास हो रहे हैं कि बच्चों का किस एज की हद तक जो है वो सोशल मीडिया इनको अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये इस पे भी पंजाब असेंबली में एक बिल जो है वो पास किया गया। इसके अलावा एक अहम ख़बर आज के हवाले से ये है कि अगर आप हमें ड्राइव करते सुन रहे हैं तो जनाब सबसे पहले आपने लाइन और लेन का आपने लाजमी ख्याल रखना है और तमाम तर मुसाफरीन का आपने ख्याल रखना है। स्पीड आपने उतनी रखनी है जितनी आप गाड़ी को संभाल सकते हैं। वो मैं कहता हूँ ना कि तेज़ी सभी को भाती है मगर इसी में जान जाती है। और आज जनाब M1, M14, हज़ारा मोटरवे और GT रोड समेत अहम जो शाहराहें हैं वो बंद होंगी। 100 शहरियों को जो है मुतबादल रास्ते इख्तियार करने की जो हिदायत हैं वो जारी की गई हैं। वेल, इसके अलावा आप बात कर लीजिए, कुछ अहम ख़बरें भी हैं, हम देख लेते हैं कि इनमें से किसको शामिल किए जाए ना किसको किया जाए। वेल, एशियन गेम्स में कुछ मामलात हुए हैं, कुछ खिलाड़ियों ने कामयाबी हासिल की हैं। पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं, इन्होंने MMA यानी कि मार्शल आर्ट में एक बहुत सुनहरी कामयाबी हासिल की है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, इनके हवाले से भी बात की जाएगी। और हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो थी वायरल हुई थी, इत्तेफाक से आपने देखी होगी, एक चुलबुला सा बच्चा है और वो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अपने वाले साहब के साथ, अपने पेरेंट या अपने किसी रिश्तेदार के साथ किसी थिएटर में मौजूद है और वहाँ पे वो जिस तरह से स्टेप्स लगा रहा था, जिस तरह से डांस लग रहा था। अपार्ट फ्रॉम डैट के डांस करना अच्छी बात है ये नहीं है, हम इस पर कोई आपसे कोई इस्लाही गुफ्तगु नहीं करेंगे, ना तो मैं इस गुफ्तगु के हक में हूँ, लेकिन वो बच्चा जिस तरह से डांस कर रहा था और जिस तरह से सामने वाले जो एक्ट्रेस थी जो अदाकारा थी उनको इशारे किनारे कर रहा था, इस पर काफ़ी बात हुई और काफ़ी डिबेट हुई कि जो छोटे बच्चे हैं इनमें ये जो रवैये पाए जा रहे हैं, छोटे बच्चों में एक आपको पता है कि फेमिसाइड और इस तरह के मामलात हैं, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। एडोलिसेंस के नाम से एक मूवी भी आई थी जिसमें इनसेल कल्चर के हवाले से बात की गई थी कि बच्चों में छोटी बच्चियों से और जो खातीन होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, इनसे जो एक नफ़रत का, एक हसद का, जलन का इनके अंदर एक मादा जो है आजकल बहुत ज़्यादा पाया जाने लगा है। इसके पीछे सोशल मीडिया का क्या किरदार है, क्या हाथ है और किस तरह से जो सोशल मीडिया डूम स्क्रॉलिंग होती है ये बच्चों के दिमाग पर, उनकी जो साइकी होती है उस पर किस तरह से इफ़ेक्ट करती है, इस पर बहुत सारी तहकीकात, बहुत सारी ऐसी रिसर्च जो है वो सामने आ चुकी हैं। सो मैं आपको ये तजवीज़ करूँगा कि आप इस हवाले से जो सीज़न है, मूवी है एडोलिसेंस, इस पर एक टाइम पर बहुत ज़्यादा बात हुई थी, आपने देखना है कि नौजवान जो कम उम्र बच्चे हैं, जो लड़के हैं, इनमें इस तरह के जो बिहेवियर हैं, इस तरह के रवैये हैं क्यों पाए जा रहे हैं कि वो बच्चा इस तरह से डांस कर रहा है और इस तरह से स्टेप लगा रहा है। और जारी बात है कि ये बच्चा अपने स्कूल भी जाता होगा, इसकी क्लास फेलोज भी होंगी और उनको भी खुदा ना खास्ता हो सकता है कि वो एज एन ऑब्जेक्ट समझता होगा। इस हवाले से हमने अपने बच्चों की, स्पेशली हम हमेशा बच्चियों की तरबियत की बात करते हैं लेकिन बच्चों की तरबियत के हवाले से जो है ना बहुत कम बात की जाती है, मेल्स के हवाले से बहुत कम बात की जाती है। तो बहुत सारे ऐसे हैरेसमेंट के वाकयात होती हैं जिनमें कम उम्र जो नौजवान, कम उम्र बच्चे जो होते हैं वो मुलविस होते हैं। तो बहुत सारी ऐसी और वीडियोस भी सामने आती हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं। वेल, इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि थिएटर में कम उम्र लड़के की जो डांस की जो परफॉर्मेंस थी, इसके देखने की जो वीडियो वायरल हुई थी ना, इस पर जो हुकूमत पंजाब है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, इन्होंने एक्शन लिया है और जो मस्कूरा थिएटर था ना इसको सील कर दिया गया है। सो ये खबर अच्छी है बुरी है, लेकिन इस हवाले से हमें जो अगर आप वालिदैन हैं, पेरेंट्स हैं, हमें बच्चों के हवाले से अपना इनफरादी जो रवैया है, जो किरदार है, उसके बारे में सोचना होगा। वेल, आपकी लाइव कॉल्स को भी इंटरटेन किया जाएगा, इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं और कुछ मज़ीद अहम अपडेट्स हैं, कुछ खबरें हैं। सो आज हम बात करेंगे जनाब, क्या आप ज़्यादा ख्वाब देखते हैं? कभी कभी होता है ना कि हम सोते हैं लेकिन हमें ख्वाब नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी हम सोते हैं तो बहुत ज़्यादा ख्वाब आते हैं। सो आपको मैं ये बताना चाहूँगा, जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं इनको पता होगा कि हमारी नींद की जो होती है ना, तीन स्टेजेज होती हैं। सो इनके नाम होते हैं और एक स्टेज ऐसी होती है जब हम उसमें चले जाते हैं ना, तब हमें ख्वाब आते हैं। सो सवाल ये है, मौजू ये है कि क्या आप ज़्यादा ख्वाब देखते हैं? तो आपको हम ये बताएंगे कि ऐसी गहरी नींद जो होती है, यानी कि गहरी नींद में आपको ख्वाब आते हैं, और ये गहरी नींद कितनी अहम होती है आपको बीमारियों से बचाने के लिए और आपके दिमाग की जो है रीवायरिंग करने के लिए, इसको दोबारा से तरोताज़ा करने के लिए।
तो जनाब इस हवाले से हम बात करेंगे और कुछ मजीद मामलात हैं आपसे बात की।

0: जाएगी 04 ट्रिपल 1 ट्रिपल 0 101 पर। लाइव कॉलर्स भी मौजूद हैं, जानते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर जी, सर की हाल है? ठीक हो
0: सर जी? अल्लाह का शुक्र, तुसी सुनाओ, खैरियत नाल हो, ठीक ठाक हो?
1: हाँ जी सर, शुक्र अल्लाह का। सर थोड़ी आवाज सुनी है, बिल्कुल ठीक ठाक हो गए।
0: अरे क्या बात है सर, क्या बात है, अल्लाह तानू सलामत रखे। सर की कहना चाहोगे?
1: सर अस यही कहना चाहवागे सर, खाब बिल्कुल इंसान नु वेखने चाहिए।
0: नहीं वेखने चाहिए?
1: नहीं सर, खाब खाब भी कभी सर सच्चे ने
0: ते हो याने ने सच्चे
1: सर। अच्छा खाब देखोगे तो सच्चे हो गया, आजकल वाम गलत नशरियात दिखा देंदी है सर।
0: अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। ठीक है ठीक है सर, ठीक है।
1: हाँ जी सर, बहुत ही जानदार सर, सलूट थोड़ी पूरी टीम ने सर।
0: अरे सर सानू तानू भी सलूट, बड़ी मेहरबानी, अपना ख्याल रखना।
1: सर सदा सलामत रहो, अल्लाह पाक तुहानू तंदुरुस्ती सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। सर पे दो शो करया करो बॉस।
0: अच्छा ठीक हो गया सर, मैं कोशिश कर
1: रहा। 8 दिन ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਗੇਨ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸ
0: ਜਾਂਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ 8 ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ 3ਜੇ ਦਿਨ ਤੇ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ
1: ਸਰ? ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਰਾਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਰੇ ਲੋਗੋ ਤੁਹਾਰਾ ਕਿਆ, ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ।
0: ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਦੇ।
1: ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਸਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ
0: ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ,
1: ਪਾਕ ਫੌਜ ਭਾਈਂਦਾਬਾਦ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਜ ਦਾ ਸਲੀਮ ਦਰਜੀ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਅਲੀ ਲਾਡਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਿਆਜ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ।
0: ਓਕੇ ਸਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ
1: ਸਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੂਸੀ ਸਲਾਮ।
0: ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਓਕੇ ਸਰ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
2: جی بسم اللہ مصطفیٰ بھائی، مصطفیٰ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، عبد الحمید کا بات ہے، برفی اللہ۔
0: ارے سر کیا حال چال ہے، ٹھیک ٹھاک ہو، خیریت نہ لو؟
2: اللہ کا بڑا شکر ہے، ماشاء اللہ، بہت ساری دعاواں تہاڈے واسطے۔ دیکھو جی، خواب جڑے نا، خواب چنگے خواب ہون، رات نو پانی ویکھو یا دودھ ویکھو، یہ خاص اللہ پاک دی رحمت ہوندی ہے۔
0: پانی پی کے سو بھی جاؤ،
2: پانی پی کے سوو، کم سے کم ایک دو تسبیح ضرور پاک دی پڑھ کے سوو، پاوے 12 بجے سوو، پاوے 1 بجے، ایک تسبیح کا کیڑا یار مصطفیٰ بھائی۔ پھر خواب انشاءاللہ اچھے ملن گے، اچھے خواب آن گے۔
0: ہاں جی ہاں جی، بالکل ایسا رہی،
2: ماشاء اللہ، بہت ساری دعوا ساڈیا ساجدہ بھن ہوندی ہے نا، بہت اچھی کالر ہے، اللہ پاک اینے واسطے ہمارا بیگ ہے اور ساری سری بہن اینا واسطے اللہ پاک آسانیاں کرے۔
0: ہاں جی،
2: ساڈے شمشی گروپ والے جندے نا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ساری اینا واسطے تہاڈے واسطے دعاواں۔
0: اوکے سر، بڑی مہربانی، سلامت رہو، اپنا خیال رکھنا،
2: رب رکھے، اللہ دے تے پاکستان
0: زندہ باد، زندہ باد۔ وہ جناب، اگر آپ ہمارا فیس بک فین پیج ہے، یہاں پر اپنی رائے کا اظہار تھرو کمنٹس کرنا چاہتے ہیں، یو آر مور دین ویلکم۔ ایف ایم 101 لاہور کا فیس بک فین پیج پوسٹ اپڈیٹڈ ہے، جو پہلی پوسٹ ہے نا جو آپ کو دیکھے گی، وہ میرے شو سے متعلق ہے، یہاں پر آپ حاضر ہو سکتے ہیں اور اپنے دل کی بات جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ ویل 04 ٹرپل 1 ٹرپل 0 101، یعنی کہ 0421100101، اس پہ دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے۔ السلام علیکم۔
3: السلام علیکم۔
0: وعلیکم جی، کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟
3: مجھے بڑے پیار سے کہتے ہیں ساجدہ جی۔
0: اچھا جی، غصے سے کیا کہتے ہیں؟
3: غصے سے بھی یہی کہتے ہیں، نارمل بھی یہی کہتے ہیں۔
0: اچھا، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی۔ ساجدہ کیا کہنا چاہیں گی؟ ابھی آپ کو یاد کیا جا رہا تھا ویسے۔
3: ہاں جی، میں سن رہی تھی، وہ بھتیجا ٹائے تھے اور امید بھائی، دونوں کو میری طرف سے بہت زیادہ السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، میں چلے جاواں؟
3: نہیں نہیں، آپ کی وجہ سے تو سب مجھے سلام کہہ رہے ہیں آپ، ماشاء اللہ زبردست شو، اور آپ ہمارے سویٹ آرجے ہیں۔
0: اچھا
3: ہاں بالکل،
0: اچھا ٹھیک ہو گیا۔ کیا کہنا چاہیں گے مزید، اور کیا ہو رہا ہے لائف میں، کیا کرتی ہیں ساجدہ، بتائیں آج
3: لائف میں کیا کرتی ہوں؟ لائف بہت اچھی جا رہی ہے، اور گھر کے کام شام مصروفیات ہوتی ہے، خالی ٹائم کیا میرا زیادہ تر ٹائم نہ ریڈیو کے شو میں گزرتا ہے۔
0: اچھا، شو میں گزرتا ہے؟
3: ہاں جی، یعنی کہ میں ٹیونی کر کے نہ تو ساتھ کام کرتی رہتی ہوں، سنتی رہتی ہوں۔
0: ارے کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحیح آپ نے دل لگایا ہوا ہے۔ ہاں
3: جی جی بالکل،
0: چلے بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ ओके
3: और मैं ख्वाब के बारे में कहना चाहूंगी, ख्वाब हमें देखने भी चाहिए और जो ख्वाब आते हैं पांच टाइम ख्वाब की तबीर भी ना सच्ची हो जाती है।
0: हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल।
3: हाँ जी, जो ख्वाब देखते हैं वो हकीकत भी हो जाता है। लेकिन अच्छी सोच या अच्छी हम जैसे अच्छा दिमाग में लाएंगे ना, वही हमारे ख्वाब में आ जाता है।
0: हाँ सही है, सही।
3: अक्सर ऐसे होता है।
0: ठीक हो,
3: तो ख्वाब हमारे पूरी होते हैं और ये ख्वाबों का तो शो कर रहे हैं। और हम मैडम का गाना लगा दे, तेरे ख्वाब ते ख्याल रहंदे मेरे नाल नाल।
0: अच्छा मैंने मैडम का गाना लगाया, चलिए मैं देखता हूँ। ठीक है,
3: अच्छा जी।
0: हाँ,
3: और मेरी तरफ से रिमशा को सलाम कहना, रिमशा को, ये बोधी जाट को, बरनी वाले भाई को,
0: ठीक हो गया।
3: हाँ जी, और सलीम दर्दी को, उस्ताद जीरा को, हनी ड्राइवर को और लतीफ ड्राइवर को, ये जितने भी है ना, यानी कि जिनका मैं नाम भूल गई हूँ, सबको मेरी तरफ से बहुत ज्यादा सलाम लिखूं।
0: चीकू को,
3: हाँ जी बिल्कुल, और हमारी एक कॉलर है ईरम बिस्मा, इनको भी मेरी तरफ से,
0: ईरम बिस्मा, जोया, इकरा, शादा, नादिया, शाजिया, सारी।
3: हाँ
0: और क्यों मैनू बैन कराना चाहिए, चलो भाग जो। ओके अल्लाह हाफिज। 04-2111-0101 देखते हैं कौन है कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम
4: जी। आप अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम जी सर।
4: क्या हाल है बेटा? ठीक
0: सर, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं खैरियत से हैं? कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
4: मैं मोहम्मद सलमान भट्ट बोल रहा हूँ, लाहौर से।
0: अरे सलमान भट्ट आ गए हैं, काउंसलर साहब।
4: पहले भी आपसे बात हुई है।
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्या
4: ख्वाब देखें? ख्वाब सबसे अच्छा वो है जिसमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ज़ियारत हो जाए, सबसे अच्छा ख्वाब है।
0: क्या बात है सर, बिल्कुल ऐसे ही है।
4: और वैसे ख्वाबों पे मेरे हिसाब से कोई जबरदस्ती ख्वाब कोई भी आ जाते हैं, कोई बंदा
0: अपनी मर्जी से थोड़ी देखते हैं।
4: वही ना, खुद से थोड़ी आते हैं, ये तो पता ही नहीं होता। कोई बाज दफा को आपने कुछ 7 साल पुरानी कोई चीज देखी होती है वो आ जाती है,
0: कोई ऐसी चीजें आती हैं बंदा कहता है यार कितू आ गई।
4: और कभी कोई ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कभी सारी जिंदगी अभी हमारे बड़ों ने भी नहीं देखी होती।
0: बिल्कुल ऐसी,
4: वो भी आ जाती।
0: बिल्कुल ऐसी।
4: बहरहाल प्रोग्राम आपका अच्छा है
0: सर, बहुत शुक्रिया। आप जी जी,
4: बुध वाले दिन ही आते हैं? मंगलवार
0: जी, मैं बुध को आता हूँ। बुध मेरा जो है ना वो लकी डे है, मैं इसलिए बुध को आता हूँ। आगे पीछे काम खराब हो गए हैं।
4: 9 से 11 आपको ढेरों सलाम। और ज़िया साहब आने लग गए प्रोग्राम में?
0: नहीं नहीं अभी नहीं, उनके लिए दुआ कीजिएगा।
4: मैं जोर कर रहा हूँ, अल्लाह पाक सब सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी।
0: आमीन आमीन इलाही आमीन। सर बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।
4: अस्सलामु अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कमलनाथ बात कर रही हूं, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर।
0: अरे कमलनाथ आ गई हैं, क्या हालचाल है मोहतरमा, खैरियत से हैं?
5: हां जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं।
0: अरे क्या बात है, मैं बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, आप बताएं।
5: माशाल्लाह हम भी बहुत प्यारे।
0: चलें जी, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या कहना चाहेंगी?
5: मैं आपके टॉपिक ये कहना चाहूँगी कि जो अक्सर हमें ख्वाब आते हैं ना, वो ज्यादातर हमारे आने वाले वक्त या काफी होते हैं।
0: अच्छा,
5: हाँ जी। और कुछ लोग इसको समझते हैं और ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा होता है ना, हमारी जिंदगी में आना क्या आने वाला है। और ये मेरे साथ तो ये ज्यादातर होता है।
0: अच्छा ठीक है,
5: ये अगर मेरी जिंदगी में जो कुछ होने वाला होता है ना, मुझे ज्यादातर ख्वाब भी नजर आ जाता है।
0: ठीक हो गया, सही है।
5: हाँ जी, और ये ज्यादातर हर इंसान के साथ हो जाता है, लेकिन कई कुछ लोग इसको सीरियसली ले लेते हैं, कुछ लोग अवॉइड कर लेते हैं। तो बस ये अल्लाह ताला की एक नियमत है और इंसान को इस बारे में समझना चाहिए।
0: बिल्कुल,
5: और
0: बिल्कुल
5: अच्छा सोचें और मतलब सोचें तो वो अपनी जिंदगी पे असर अंदाज भी वैसा ही होगा।
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही।
5: और मैं आज काफी दिनों बाद मैंने आज आपका शो सुना है, मुझे
0: टाइम नहीं होता है। बहुत शुक्रिया सुनने के लिए, सुनती रहा करें। ठीक है,
5: मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को और आपकी टीम को और आपको सलाम और अच्छी तंदुरुस्ती की दुआ, और संगति ग्रुप वालों को भी अल्लाह हाफिज।
0: ओके जी अल्लाह हाफिज। जनाब कुछ ही देर के बाद आपके जो लाइव कमेंट्स हैं वो शामिल किए जाएंगे और देखेंगे क्या क्या बातें हो रही हैं, क्या क्या पैगामा जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं। इन द मीनवाइल आपकी कॉल्स को भी इंटरटेन करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
6: अस्सलाम
0: वालेकुम, मैं फरीद बुजुर्ग से बात कर रही हूँ। आप कैसी हैं? वालेकुम असलम, मैं बहुत अच्छा, आप बताएं कैसी हैं,
6: खैरियत से
0: हैं? जी सब ठीक है, सब ठीक है। आपकी दुआएं हैं, करती हैं ना?
6: बहुत सारी दुआएं मांगते हैं, सबके लिए मांगते हैं। आजकल दुआओं का जरा वो है ना टॉपिक, वो हमारे बहुत सारी दुआएं उनके लिए,
0: बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी
6: दुआएं। इंशाल्लाह ताला 101 के पिंजरे में जल्दी आएंगे,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
6: बहुत सारी मुंतजिर दुआएं उनके लिए, अल्लाह ताला ये ख्वाब हमारा जल्दी पूरा कर दे,
0: आमीन आमीन।
6: अल्लाह ताला उनको जल्दी जल्दी सफा दे दे, यही दुआ है,
0: ये ख्वाब
6: है अल्लाह ताला
0: ख्वाब
6: हमारा पूरा कर दे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। सबको लिए बहुत सारी जाए, बोधी भाई बीमार है, अल्लाह ताला इनको सफा दे।
0: अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, आपने कह दिया है, आपने कह दिया है तो होपफुली आ जाएंगे, ठीक है।
6: मैं सॉरी करती हूं, तो वो नाराज हुई हुई है, तो कॉल पे जल्दी से जल्दी आया हूं, उनके वास
0: करने के करवाते हैं, करवाते हैं आपकी सुलह, करवाते हैं, ठीक है। ओके अल्लाह हाफिज। 04221100 1111 00 00 00 01 देखते हैं कौन हमारे साथ कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
7: वालेकुम सलाम
0: जी सर, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
7: सलीम टेलर, रिचर्ड बाजार।
0: अरे सलीम साहब आ गए हैं, सलीम साहब क्या हाल चाल है?
7: जी शुक्र अल्लाह का, आपकी आवाज़ सुनी और तबीयत सही हो गई।
0: अरे क्या बात है सर, इचरे में क्या महलात वाकयात है, कुछ चल रही है अभी भी, गहमा गहमी की कोई नहीं?
7: हाँ सर, अभी बाजार जितनी गर्मी पड़ रही है, बाजार तो खामोश है।
0: अच्छा,
7: रश रुश कोई नहीं, खुले बाजार हो गए हैं, ये खुशी हो रही है आगे।
0: हाँ जी हाँ जी,
7: आगे दुआ करेंगे कि कारोबार चले, पैसा आए, खुशहाली हो,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
7: टॉपिक भी बड़ा प्यारा आपने आज छेड़ा है, मजा।
0: हाँ जी हाँ जी जी, बताएं क्या कहना चाहेंगे इस पे आप?
7: यार जब कुंवारे थे ना तो बड़े ख्वाब आते थे।
0: मैं तुसी जेड़े ख्वाब कह रहे हो ना, तुसी रह नहीं दियो। अच्छा आगे गल करो। हाँ जी,
7: अब शादी हो गई है तो अब ख्वाब आते हैं,
0: उनकी कितू आने ने, उन तो आने
7: ने। वो जब कोई उठाता है ना तो कहते हैं पैंपर ले आओ।
0: अच्छा ठीक ठीक हो गया, मैं समझ गया। ओके
7: अच्छा, मैं हम ना मजाक में बात डाल दी।
0: हाँ
7: वो ना हम पहाड़ों में जब जाते थे ना तो उधर ख्वाब आते थे कि आसमान पे उड़ रहे हैं हम।
0: अच्छा,
7: वो इतनी ऊंचाइयों पे थे तो बादल मारे गुजरे कमरों में तो कपड़े गीले हो गए हैं।
0: अच्छा ठीक है,
7: खिड़कियां वगैरह, खिड़कियां उधर की खुली होती हैं, खिड़कियां बंद नहीं करनी आप। तो वो जो मंजर ख्वाब के जो देखे वो वाकई पूरे हुए उधर।
0: अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या होता है, ऐसा होता है।
7: सब्जा देखा ख्वाब में भी आया, सब्जा ग्रीनिश दरख्त वगैरह, बड़ा अच्छा लगा। और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे अल्लाह पाक
0: इंशाल्लाह
7: तरक्की दे, और हमारे पाक आर्मी के लिए सारी दुआएं। हम मीठी नींद सोते हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
0: बिल्कुल ऐसे,
7: बहुत सारी दुआएं।
0: बिल्कुल ऐसे,
7: जहाँ तक आपकी हमारी बात जा रही है, से सलामती की दुआ बीमारों के लिए खासतौर।
0: हाँ बिल्कुल,
7: हमारे बोधी जट आए उनके लिए।
0: अच्छा मुझे इनका नहीं पता था, मुझे बड़ा वो एक रंज हुआ इनका जान के।
7: थोड़ा आपकी बात सुनके ना तो ये एक्टिव हो गए माशाल्लाह।
0: चलिए अल्लाह इनको एक्टिव रखे, ऐसे सलामत रहे।
7: साजिदा आई और बत्ती वाले आए, बड़ा अच्छा लगा। परी आपकी खास तौर पे
0: जी जी,
7: इनको सलाम, पाकिस्तान
0: जिंदाबाद। ओके जनाब, अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, आतिफ असलम की आवाज़ में, कहते हैं कदी ते हंस बोल वे। और अभी नाराज़गी की बातें हो रही थी, शमीम आपी के, शमीम आपी के बारे में बात हो रही थी, फरी बात कर रही थी कि वो नाराज़ हैं, सो करवाते हैं आपकी सुलह, करवाते हैं एक ऐसा ही ट्रैक आप तमाम समातों के नाम, बोधी जट के नाम और जितने भी हमें सुनने वाले हैं, आतिफ असलम की आवाज़ में कदी ते हंस बोल वे। इस ट्रैक के बाद आपसे मुलाकात होती है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टिक अराउंड एंड यस डोंट गो एनीवेयर।

0: इनकार किसी लज्जत इकरार में कहाँ गालिब, बढ़ता है शौक उनकी नहीं नहीं से।
1: जी कुछ कहा आपने?
0: जी नहीं, ये बुक में लिखा हुआ है।
1: कौन सी बुक?
0: जी ये।

ओके जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, शोकाल सिटी वाइब्स, और मुझे मुस्तफ़ा कहते हैं। 10:44 हुए चाहते हैं। वह जनाब मंजर महमूद मंजर मौजूद हैं, एम नईम टेलर मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपकी समातों का, एम रमज़ान सिराज मौजूद हैं, रियाज भट्टी हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, गुलाब गुलाब हैं, ये कैसा नाम हुआ है, मिजाज अली हैं, और इनके अलावा आतिफ अली नुनारी कुछ पैगाम भी भेजे हैं, एम रजा चौधरी मौजूद हैं, आपके साथ लाइव कॉल पे बात भी हुई थी सर, बहुत शुक्रिया आपकी समातों का। बरकत रमजानी है, आज जैनब अशद मौजूद हैं फिर मनोवन की, बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत शुक्रिया मैम। इनके अलावा रेहाना खान हैं, शिराज अली हैं, शिराज बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखो यार। मलिक असल नवीद हैं, नज़ीर खोसू हैं, और मोहम्मद हफीज़ुर रहमान हैं। इनके अलावा इकबाल मेहदी हैं, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, स्कर्दू से पैगाम भेजा है। अरे बहुत शुक्रिया स्कर्दू से हमें सुनने के लिए, कभी बुलाओ ना हमें। इनके अलावा कंवल नाज हैं, और कुछ शेर व शायरी जो है भेजी है, लेकिन ये टाइम नहीं है अशआर पढ़ने का, ठीक है। इनके अलावा शराज अली कह रहे हैं कि बेस्ट शो, अरे बहुत शुक्रिया शराज। एम रमज़ान सिराज हैं, कह रहे हैं कि आज नुमाना, नुमाना क्या होता है, नगमाना होता है। आज नगमाना को, आज खदीजा को सलाम कह रही हैं, ये आज हैं हमारे यहाँ पर प्रोड्यूसर्स मौजूद हैं और इत्तेफाक से आज सामने मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, वालेकुम अस्सलाम कह रही हैं आपको। इनके अलावा कंवल नाज ने कहा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से सलाम कह रही हैं, वालेकुम अस्सलाम, और गुड मॉर्निंग कहा है सर जी, वालेकुम अस्सलाम, आपको भी गुड मॉर्निंग सर जी। इनके अलावा आज वसीम को सलाम कह रहे हैं, वो जब आएंगे आप उनको सलाम करिएगा ना, तुसी मेनू को सलाम है इस टाइम। आतिफ अली नुमानी मौजूद हैं, कह रहे हैं कि सैल्यूट टू शमीम सिस्टर, अच्छा ठीक हो गया। इनके अलावा कह रहे हैं कि कंवल नाज कह रही हैं, कैसे हो आप आज मुस्तफ़ा, वेलकम जी आयानो, मैं बहुत अच्छा बहुत प्यारा, आप बताएं कैसी हैं। फिरोज़ आलम जान है, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम मदीना मुनव्वरा, अरे क्या बात है, सऊदी अरबिया से आप मौजूद हैं, कह रहे हैं शो इज़ ऑलवेज़ गुड, और कह रहे हैं कि शो इज़ गोइंग ऑसम, अरे बहुत शुक्रिया, आपने कुछ दुआएँ लिख कर भेजी हैं, थैंक यू जजाकल्ला। वेल 10:47 हुए चाहते हैं, और आपके साथ सोन बातों का सिलसिला चलता रहेगा। अभी एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, हम बात कर रहे थे मलका तरन्नुम मैडम नूरजहाँ की, इनकी कल बल्कि परसों 100वीं सालगिरह जो थी वो मनाई गई थी, सो एक ट्रैक शामिल करना चाहूँगा, बहुत कम आपने सुन रखा होगा, जेड़े शीशे नू ठुकरांदे ने। सो कुछ ऐसी बात भी हो रही थी ना, कुछ नाराज़गियों वाली, कुछ ताल्लुकात के टूटने बनने वाली, सो सुबह के पहर में ये मामला थे, बातें डिस्कस करने के वो नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं, ये गाना शामिल करना चाहूँगा, बहुत अच्छा गाना है, आप तमाम समातों के नाम मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

0: हमने कहा रुक ही जाते हैं।
1: बहुत अच्छा किया,

मोहल जना पितल बनाया ही ते सोना बन सामलाना, बालो बतियां बाय अली जफर एंड अताउल्ला खान निसा खिलवी लाला की आवाज में आपने ट्रैक को एंजॉय किया। भाई जनाब, इसी बात के साथ मैं आपसे आज के लिए इजाज़त चाहूँगा कि तमाम तर आलम इंसानियत का ख्याल रखिएगा बिला तफरीक किसी रंग नस्ल और मज़हब के। ज़िंदगी ने साथ दिया सांस ने वफा की, तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह ने के बानो मेहरबान।

अस्सलाम वालेकुम तमाम धड़कते दिलों को, खुश आमदीद। मैं हूं आपकी अपनी दोस्त, अपनी होस्ट आरजे वजीहा आसिम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा, और अगर नहीं भी अच्छा गुजर रहा तो मैं हाजिर हूं विद द सुपर डुपर शो लेडीज लाउंज। आपका मेरा साथ रहने वाला है 11 बजे से 1 बजे तक। प्रोग्राम में शामिल करेंगे आपके कमेंट्स, मैसेजेस, गाने, और अगर आप किसी को कोई गाना डेडिकेट करना चाहते हैं तो भी आप हमें बता सकते हैं। कुछ आपकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। सबसे पहले तो आज जिनकी बर्थडे है उन्हें मेरी तरफ से एफएम 101 की पूरी टीम की तरफ से मेनी मेनी बेस्ट विशेस ऑफ द डे। और जो लोग बीमार हैं उनके लिए ढेरों ढेरों दुआएं, क्योंकि जहां है तो जहां है।

जी, तो जैसे कि अब मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है और गर्मी की शिद्दत पहले से बहुत कम हो चुकी है, तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ कुछ ब्यूटी टिप्स एंड ट्रिक्स अकॉर्डिंग टू द वेदर दीज डेज। इस वेदर में ना यूजली जो है ना हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, उसके लिए कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और हाउ टू ब्राइटन अप योर स्किन, आजकल जो है ना मिरर शाइन का बहुत बहुत ट्रेंड हो गया है और वो कैसे लेके आनी है वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। यू कैन नोट डाउन पेपर पेंसिल भी पास रखें ताकि आप ये ना भूलें, क्योंकि जो इतने एक्सपेंसिव सीरम्स आप ख़रीदते हैं ना, उनसे बेहतर है कि ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें जो आपके किचन में यूजुअली अवेलेबल होती हैं, या अगर बाहर से भी लें तो बहुत नॉर्मल सी प्राइस में मिल जाती है। सो आई विल बी शेयरिंग ऑल दोज टिप्स एंड ट्रिक्स। तो उसके सबसे पहले अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सा ट्रैक, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम। आज के प्रोग्राम की जो पोस्ट है हमारे फेसबुक पेज पे एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे अपलोड कर दी गई है, सो डू लाइक कमेंट एंड शेयर। आपका जो फीडबैक है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सो डू लेट अस नो व्हाट यू वांट टू हेयर। आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, या आपका अपना चैनल है तो अगर आप कोई बात शेयर करना चाहते हैं, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा कि किससे अपनी दिल की बात करूँ, तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि दिल हल्का कर लेने से बहुत सी आपकी प्रॉब्लम्स जो है ना सॉर्ट आउट हो जाती हैं। और मैं इसके बारे में भी बात करना चाहूँगी कि अब देखें, जैसे वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, तो उसमें एक नया ट्रेंड आ गया है कि लाइफ कोच जो है ना, अब हर इंसान ना आजकल लाइफ कोच बना हुआ है, और वो जो है ना उन्होंने अपने पेज और अपना डिफरेंट इंस्टा हैंडल बनाया हुआ है, और सेपरेट से इंस्टा हैंडल बनाया हुआ है। तो उसका सिर्फ काम क्या है कि आपकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप अपनी लाइफ में फोकस नहीं कर पा रहे हैं या आप में डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, तो क्लैरिटी इन लाइफ इफ़ यू डोंट हैव, तो वो सिर्फ वो काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, ये नौबत क्यों आई कि जी हमें लाइफ कोच की ज़रूरत पड़ गई ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है ना। तो ये नौबत कब, कैसे और क्यों आई, ठीक है, क्योंकि इंसानों की जो आपके रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, फैमिली मेंबर्स या दोस्तों में भी अब वो दोस्तियां नहीं रहीं जो पहले होती थी, जब आप हर बात अपने दोस्तों से भी शेयर कर देते थे। अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है किस दोस्त से क्या बात करें, क्या बात ना करें। तो तब जब आपकी अपनी फैमिलीज़ में, अपनी बहन भाइयों में, अपने पहले होता था ना, आपके चाचे मामे के कज़न्स भी बहुत होते थे, उनके साथ कोई एक दो ऐसा आपका बेस्ट बडी होता ही था जिसके साथ आप कुछ शेयर कर लेते थे। तो अब तो वो ट्रेंड चल रहा है ना कि रिश्तेदार सबको ही बुरे लगते हैं। मतलब कोई भी अपनी लाइफ का किसी से शेयर करना ही नहीं चाहता। पहले ये होता था कि सब एक ही घर में इतनी फैमिलीज रह रही होती थी, और आपको फौरन पता चल जाता था कि आप कहाँ पे आप गलत हो, और आपको फौरन से ना आपको बैक टू द ट्रैक लेके आ जाते थे, ऐसे ही नहीं करना है, ये है वो है। लेकिन गलतियाँ भी इंसान को कर देनी चाहिए, क्योंकि जो आप अपनी गलतियों से सीखते हो ना, वो किसी और चीज़ से नहीं सीखते। लेकिन ये जो लाइफ कोच आजकल जो काम कर रहे हैं ना, वो आपसे सेशन बुक करते हैं 20 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, हर एक मिनट के लिए वो आपको चार्ज करते हैं, और सिर्फ क्या सुनते हैं, आपके दिल की ये बात, ठीक है ना। और सिर्फ वो उनका काम

होता है आपको थोड़ी सी लाइफ में क्लैरिटी देना, आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करना, आपको फोकस्ड बनाना. आजकल हर इंसान कोशिश करता है ना, जैसे कि छोटी छोटी वीडियोज़ बनाए और छोटी छोटी वीडियोज़ बना के अपलोड करें, और उसको पता है अगर ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई तो उस पर व्यूज़ नहीं आएंगे, लोग पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों का अटेंशन स्पैम बहुत कम हो चुका है. लोग किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, एक ही वक्त में बहुत कुछ करना चाहते हैं. मल्टी टैलेंटेड इंसान को ज़रूर होना चाहिए. लेकिन पहले जब आप एक काम सही तरीके से ना उसे मुकम्मल कर लें, देन मूव टू द अदर वन.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: इसके साथ ही मैं शेयर करना चाहूँगी जो जॉइंट पेंस होती हैं, ठीक है, आजकल बच्चों को, बड़ों को और ख़वातीन को स्पेशली 35 के बाद ना डिफरेंट जो है ना जॉइंट में शोल्डर पेन और नी पेन स्टार्ट हो जाती है
1: आजकल, तो स्कूल गए बच्चों को भी स्टार्ट हो जाती है
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चीज़ें भी उस तरह से इतनी हालत मैसर नहीं है, और बच्चे जो हैं उस तरह से अगर थोड़ा सा भी काम वैसे ज़्यादा कर लें ना, थोड़ा सा भी काम ज़्यादा कर लें तो उनको होता है हाय मुझे यहाँ दर्द हो रही है, मुझे वहाँ दर्द हो रही है। तो जॉइंट पेन के लिए मैं शेयर करना चाहूँगी कि आप ऑलिव ऑयल जो है ना बहुत अच्छा है और उसमें शफा भी है, तो ऑलिव ऑयल में आप थोड़ा सा लौंग डाल लें अगर, और बादाम लॉन्ग डाल के आप उसे थोड़ा सा पका लें चूल्हे पे, और फिर वो गर्म थोड़ा सा नीम गर्म हो तो फिर आप उसे अप्लाई करें, तो आप देखिएगा बहुत जल्दी आपकी किसी भी जॉइंट पे है, कंधे पे, घुटने पे, बहुत जल्दी जो है ना उसमें आपको नुमाया आपको फ़र्क नज़र आएगा।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: Welcome back. This is your dost, your host, RJ Wajiha Asim. Program hai Ladies Lounge. Aur is waqt hamare saath studio mein maujood hai Tuba Nawaz. तो जी मेरे साथ ही बात करना चाहूँगी कि जो आपकी लाइफ है ना, या जो सक्सेस है, सक्सेस इन लाइफ इज़ ऑल अबाउट मेकिंग राइट डिसीजंस एट राइट टाइम. तो आप क्या कहेंगी इस बारे में?
1: जो है जज्बाती होके इमोशनल और वक्ती तौर पे कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब आप गुस्से में हों या फिर आप इमोशनल हों तो जो डिसीजन आप उस टाइम लेते ना, वो बाद में हमारे लिए ऐसा लगता है कि नुकसानदेह है, क्योंकि उन फैसलों का कोई भी जो है जो चीज़ें सोच के हमने उस टाइम वो फैसला किया होता है, बाद में हमें रिग्रेट होता है उन फैसलों का कि काश ये फैसला ना करते.
0: ये बात तो है कि गुस्से में तो कभी भी कुछ भी फैसला नहीं करना चाहिए. ये बात तो है. गुस्से को कंट्रोल करना आना ना, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है कि गुस्से को आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना. इनफैक्ट जब आप गुस्से में हो ना, तो आपको कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, चुप रह के 1 to 10 तक. हाँ, खामोशी इख्तियार करनी चाहिए और 1 to 10 तक आपको गिनना चाहिए, जब तक आपका थोड़ा सा ना आप कूल डाउन ना हो जाए. तो जी साथ ही आपने मुझे बताना है, वो एक ऐसी चीज़ आप हमें मैसेज पे बता सकते हैं. यू कैन मैसेज अस एट 4471. यू कैन ऑल्सो कमेंट एट आवर फेसबुक पेज. कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं, ठीक है, या आपको लगता है कि काश ऐसा ना हुआ होता, कि अपनी पर्सनालिटी के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई एक ऐसी चीज़ जो आप बदलना चाहें, तो बस सबसे पहले आप शेयर करें.
1: मैं अपनी पर्सनालिटी के बारे में एक चीज़ बदलना चाहती हूँ, और वो ये है कि मैं छोटी छोटी जो बातें ना उन पे मतलब ओवर थिंकिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान जाती हूँ. मतलब कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, और वो छोटी सी बिल्कुल छोटी सी बात होती है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान जाती हूँ चीज़ों को, मतलब पता नहीं सोच सोच के कहाँ पर ले जाती हूँ. तो और ऐसा कुछ होता भी नहीं है, तो मैं इस चीज़ को जो है वो ओवरकम करना चाहती हूँ कि छोटी छोटी बातों पर जो है ना ओवर थिंकिंग ना की जाए.
0: सही है. और अपना देखो, मैं जो है एक बात बताती हूँ आपको कि आपके अगर आपके पास लाखों रुपए हैं, ठीक है ना, तो उसमें से अगर 2000 रुपये गुम जाएं या कहीं पे आपसे अगर मिसप्लेस हो जाएं या गुम जाएं या आपसे कहीं गिर गए, ठीक है, तो आप बाकी के पैसे भी तो नहीं फेंक दोगे ना, कि क्योंकि 2000 गुम गए, ठीक है. इसी तरह अगर आपकी आपकी लाइफ में या आपके दिन में अगर वो 10-15 मिनट अच्छे नहीं गुजरे, आपने जैसे अपने दिन का आगाज़ किया है, 10-15 मिनट में कुछ हो गया है, किसी ने आपको डांट दिया है या कुछ भी गलत हो गया है, तो आप वो 10-15 मिनट के बारे में बार बार सोच सोच के, या किसी ने आपको कुछ कहा या आपको आपके साथ रवैया अपना अच्छा नहीं रखा, तो वो 10-15 मिनट के बारे में आप सोच सोच के अपना बाकी का दिन क्यों ख़राब करते हैं. ऐसा होता है हम सबके साथ. तो मैं अपने तमाम सुनने वालों को कहना चाहूंगी कि आप भी जरूर हमारे साथ शेयर करें अगर आपके साथ ऐसा होता है. तो जैसे कि हमारे कुछ पैसे गुम जाए तो हम अपने बाकी पैसों को भी फेंक तो नहीं देते ना, उनको हम संभाल के रखते हैं, बल्कि उनकी ज्यादा कदर करते हैं. उसी तरह अगर आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाए तो उसके बारे में सोच सोच के कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ, बजाय इसके उसके बारे में आप सोचते रहे, जिंदगी में ज्यादा प्रोडक्टिव तरीके से ना आगे बढ़ना चाहिए.
1: मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि हमें चाहिए कि ना हम मौजूदा दौर में ना अपनी मेंटल हेल्थ है ना उसकी सबसे ज़्यादा केयर करें. और मुझे ऐसा लगता है कि मसला सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये सबके साथ ही मौजूद है कि हम छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंक करते हैं और ये कि अपना पूरा दिन ख़राब कर लेते हैं, या चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, हम खुद उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं. तो ये कि हमें जो अपने माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए, और ये कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आजकल वैसे भी जो है एनजाइटी, स्ट्रेस और पैनिक अटैक्स, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती जा. तो हमें चाहिए कि हम जो है इसके लिए हेल्दी एक्टिविटीज भी करें, जैसे मैं जो है वो योगा करती हूँ या मॉर्निंग वॉक होगी, ताकि ये सब चीजें जो है मतलब इन सब चीजों को ओवरकम कर सकूं. और ये कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये कि इंसान मतलब कि सोशलाइज करे, अलग लोगों से मिले, अलग डिफरेंट लोगों से बात करे, और ये जो बात आपके अंदर है ना उसको आप दूसरों के साथ शेयर करें, बजाय इसके कि आप उसको अपने अंदर रखें, क्योंकि वो जब आपके अंदर रखें.
0: अभी जब आपने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया उससे पहले मैं यही बात कर रही थी, और यही मेरा आज का ایک بہت اہم شو کا حصہ بھی تھا کہ لائف کوچ کا آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ آ گیا ہے. ٹھیک ہے, لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ 15-20 منٹ کا یا 40 منٹس کا سیشن بک کرتے ہیں, 20 منٹس کے علیحدہ پیسے ہوتے ہیں, 40 منٹس کے اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور انہوں نے صرف کیا کرنا ہوتا ہے لائف میں, دے ہیو ٹو میک یو مور فوکسڈ, دے ہیو ٹو, وہ کہتے ہیں کہ جی وی ول برنگ کلیئرٹی ان یور لائف, کہ آپ کو اگر یو کین ناٹ فوکس تو وہ اس میں ہیلپ کریں گے, آپ کو تھوڑی سی کلیئرٹی دیں گے, آپ کے دل کی بات سنیں گے. تو یہ سب کچھ جو ہے آج کل اتنا زیادہ ٹرینڈ کیوں کر رہا ہے, کیونکہ اپنوں کے ساتھ اتنی دوری بڑھ چکی ہے کہ آپ اپنی فیملی میں یا اپنے دوستوں سے, اپنے کہ چلو فیملی کو چھوڑو, آپ کو فیملی میں امی ابو سے نہیں بات کرنی, بہن بھائیوں سے نہیں کرنی, اپنے دوستوں سے بھی ایٹ ٹائمز آپ نہیں کرنا چاہتے. یہ تو چلو دوستوں سے انسان بات کر کے اپنا دل ہلکا کر لیتا ہے, تو وہ یہی ہے کہ اس لیے آج کل ہاسپٹلس میں, اسکولس میں, کالجز میں کاؤنسلرز موجود ہوتے ہیں. تو ایٹ ٹائمس میری فیملی میں بھی ایک ایسا کچھ ایشو تھا, تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں اسکول میں نا ٹیچر کو جا کے کہوں گی کہ آپ کو نا کاؤنسلر کے ساتھ آپ کی اپوائنٹمنٹ کرا دے. تو وہ بھی بچے نہیں کرنا چاہتے, نہیں میرے سب دوستوں کو پتہ چلے گا میں کاؤنسلر پہ گیا تھا یا گئی تھی, تو نہیں کہیں اور کسی اور کاؤنسلر سے ٹائم لیتے ہیں. تو یہ سب جو ہے نا, یہ سب چیزیں آپس میں دوریوں کی وجہ سے ہی ڈیولپ ہو رہی ہیں. جیسے پرانے جب پہلے زمانے تھے میں تھے, تو پہلے زمانے میں سب لوگ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہوتے تھے, آج کل اتنی ایپس ہیں ہمارے پاس ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہنے کی, اتنی ہی دوریاں زیادہ ہیں. اور پہلے ایپس نہیں تھیں اور آپس میں لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہتے تھے. تو یہ چیزیں اسی لیے ہی آج کل آئی ہیں. وہ آپ کو کیا دیتے ہیں, آپ کو تھوڑا سا ایکسپوجر دیتے ہیں, آپ کے دل کی بات سنتے ہیں, برنگ فوکس ان یور لائف, تھوڑا سا کلیئرٹی دیتے ہیں کہ آپ کس طرف جا رہے ہو, اور ڈسیشن میکنگ پاور, دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو موو اہیڈ ان لائف. تو مزید گپ شپ آپ سب کے ساتھ چلتی رہے گی, اور آپ نے ضرور کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتانا ہے ایک وہ چیز جو آپ اپنی زندگی میں بدلنا چاہتے ہیں, یا آپ اپنی وہ عادت ایک جو آپ بدلنا چاہتے ہیں. ابھی میں ایک زبردست ٹریک پلے کرنے جا رہی ہوں, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ٹیونڈ.

0: जी वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीह हासिम। प्रोग्राम है लेडीज लाउंज और साथ ही हम बाद में भी जरूर बात करेंगे आज आपके किचन में क्या बन रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद खाने का टाइम शुरू हो जाता है और किचन में क्या बन रहा है और खाने पीने की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। और जो लाहौर के जो स्ट्रीट फूड है ना, मतलब कि जो हमें आपको हर गली महल्ले से जो मिल जाएगा खाना, वो भी बहुत बहुत मज़े का होता है। और मुझे जो चिक्कर चने होते हैं ना वो बहुत बहुत पसंद आते हैं और मैं बहुत शौक से बहुत दिल से खा जाती हूँ। और नान चने जहाँ से भी खा लो लाहौर में लेके, उनका एक अपना ही जायका होता है, एक अपना ही टेस्ट होता है। और दाल चावल की आपको अगर आप जो है ना यहाँ पे चले जाएँ, ये जो हमारा जो स्टूडियो जहाँ पे है, जो यहाँ पे रेडियो पाकिस्तान लाहौर का की बिल्डिंग है, ऐसे थोड़े से आप आगे चले जाएँ ना तो आपको हर गली में, हर नुक्कड़ में, आपको हर रोड पे आपको दाल चावल लगे हुए नज़र आएंगे। और उन दाल चावल का जायका बहुत बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये जो स्ट्रीट फूड है इसको भी बहुत प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये जो आप हमेशा देखें, कभी रेस्टोरेंट का खाना ऐसा हो सकता है कि आपको पसंद ना आए या अच्छा ना लगे, लेकिन ये जो आपको नान चने मिलते हैं, दाल चावल मिलते हैं, जो आपको किसी रोड पे खड़े हुए इंसान ने लगाए होंगे ना, वो हमेशा फ्रेश होते हैं, क्योंकि उसके पास कुछ फ्रिज फ्रीज़र नहीं होता।
1: मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से करीब एरिया है ना, लक्ष्मी चौक, यहाँ पे जो खाना है ना वो बहुत अच्छा और बहुत रीजनेबल प्राइस में
0: मिलता है, फ्रेश होता है।
1: जो है ना बहुत,
0: क्योंकि देखिए जो रेस्टोरेंट्स में खाना बच जाता है ना वापस फ्रिज फ्रीज़र में, मतलब कुछ चिकन मैरिनेट किया है, कुछ है वापस वो फ्रिज फ्रीज़र में रख देंगे, लेकिन ये लोग जो है रोज़ फ्रेश बनाते हैं या अपने घर में अपने किचन में बना के ला के वहाँ पे लगाते हैं और फिर बेचते हैं, रोज़ का फ्रेश बनाते हैं। ऐसा नहीं होता जी पिछले दिन का पड़ा है, परसों का पड़ा है या जो गुजर गया है दिन उसका पड़ा है। तो इनके पास क्योंकि कोई फ्रिज फ्रीज़र नहीं होता, जो बच जाता है वहाँ पे वो लोगों को बांट देते हैं या दे देते हैं या ख़ुद घर ले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो फ्रेश ना हो या मज़े का ना हो, तो उसका एक अपना ही एक फ्लेवर होता है।
1: ये फैंसी रेस्टोरेंट से ना मतलब बहुत ज़्यादा बहुत रीज़नेबल है, कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम लोगों के एरिया में वही चीज़ें जो है ना इसे डबल या ट्रिपल प्राइस में मिलती हैं। ट्रिपल आई गेस कह सकते हैं। और यहाँ पे मतलब उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और क्वांटिटी भी अच्छी,
0: बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और साथ ही ना कुछ फरमाइशें भी हैं, वो भी मैं साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करूँगी। और आजकल ना जहाँ से आप खाने पीने की बात हो रही है, तो साथ में ये भी बात करना चाहूँगी कि आजकल के जितने भी कैफ़ेज़ हैं ना, वहाँ पे ये ट्रेंड आ चुका है, वहाँ पे सिर्फ चाय कॉफ़ी नहीं मिलती, वहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी रखी होती हैं, कि फ़ुटबॉल, वो जो फ़ुटबॉल गेम होती है वो भी उन्होंने छोटा सा एक कॉर्नर बनाया होता है, कैरम बोर्ड, लूडो और इस तरह की डिफरेंट गेम्स उन्होंने वहाँ पर रखी होती हैं कि लोग कैफ़े में आते हैं, बुक्स तक उन्होंने वहाँ पर रखी होती हैं।
1: गुलबर्ग में कैफ़े है, अब उसका नाम तो नहीं ले सकते यहाँ पे, और उस कैफ़े में जो है उन्होंने पेंटिंग, कैलीग्राफी, पर्सनल,
0: ये एक कैफ़े नहीं है, दुबई एक कैफ़े नहीं है, बहुत से ऐसे कैफ़ेज़ लाहौर में हैं और भी डिफरेंट शहरों में होंगे जहाँ पे उन्होंने डिफरेंट एक्टिविटीज़ रखी हुई हैं वहाँ पे ना।
1: और उन्होंने वहाँ पे ना क्या कहते हैं, वेटर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, वो मुझे ऐसा लगता है कि लाहौर में तो सबसे ज़्यादा अभी तक डिजिटलाइज वही है, वहाँ पे रोबोट्स उन्होंने रखे हुए हैं कैफ़े में, वेटर्स वगैरह एक एक चीज़ रोबोट ऑपरेटिंग
0: है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहाँ एक्टिविटीज़ क्यों रखी हुई हैं, क्योंकि लोग आएँ साथ साथ कॉफ़ी चाय पिएँ, अपना काम करें, उन्होंने हर टेबल के साथ अपना लैपटॉप या फ़ोन चार्ज करने के लिए सॉकेट्स भी रखे हुए हैं, हर टेबल पर दो दो सॉकेट्स होते हैं, ताकि जो भी कोई बिजनेस मैन है, जॉब कर रहा है, स्टूडेंट्स हैं, जो भी काम करें।
1: लेकिन वो ये है कि वो कैफेज बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, आम इंसान उनको अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: सही है। अभी हम बढ़ते हैं न्यूज़ ब्रेक की तरफ, वील बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुदस्सिरा अथर से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं के साथ गैर रस्मी मुलाकातों में इलाकाई और बैन-अल-अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म जाहिर किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वह बैन-अल-अक़वामी फोरम्स पर जम्मू और कश्मीर के मामले पर मुत्तफ़िका मौक़िफ़ बरकरार रखें। पाक फौज ने कुरम सेक्टर से अफगान तालिबान की जेर निगरानी होने वाले फितनों और ख़वारिज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर। ट्यून इन टू एफएम 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: Welcome back after the news break. This is your dost, your host, RJ Vijay Hasan. प्रोग्राम है लेडीज़ लाउंज और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है हमारी बहुत प्यारी सी इंटर्नी तूबा नवाज़। तो तूबा अब हमारे साथ कुछ शेयर करेंगी, कुछ ऐसे बिज़नेस स्टार्टअप आइडियाज़ जो आपको लगता है कि ख़वातीन जो है ना घर में बैठ के आराम से कर सकती हैं।
1: बहुत सी ख़वातीन जो है वो अपने लाइफ में जो है वो कुछ करना चाहती हैं, मतलब स्टेबल होना चाहती हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, बट ये कि कुछ मतलब कि रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ख़वातीन को कि आप घर से बाहर नहीं जा सकते।
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो उन ख़वातीन के लिए मेरे पास 3-4 आइडियाज़ हैं कि वो घर में बैठ के मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो ये कि आजकल जो है मतलब ट्रेंड्स को देखते हुए ना प्रीमियम जो गिफ्टिंग है, प्रीमियम गिफ्टिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कस्टमाइज गिफ्ट जो है आप उसमें बनाते हैं और वो जो है अच्छी मतलब कि उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है और उसमें ये कि आपने जो कस्टमर है उससे जो है एडवांस पेमेंट लेनी होती है और उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छी से पैकेजिंग और वो सब चीज़ें उन्हें प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है, डेट से पहले। और ये कि उसमें जो है मतलब कि मिनिमम भी जो है ना वो जो गिफ्ट है उसकी जो प्राइस है ना आजकल जो मार्केट में चल रही है 15-20 हज़ार तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसमें मतलब कि आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है और उनकी जो प्राइस
0: इन्वेस्टमेंट कम होती है।
1: और एक और है कि बहुत सी ख़वातीन अगर घर बैठ के काम करना चाहती हैं तो उसमें आजकल डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ज़्यादा स्कोप है। कोई ना कोई एक ऐसी स्किल सीख लें कि उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट आ जाती है, मेटा एड्स आ जाते हैं, वीडियो एडिटिंग आ जाती है या ग्राफिक डिज़ाइनिंग और भी बहुत सारी स्किल्स हैं। आप किसी भी स्किल पे कंटेंट राइटिंग हो गया और आप कोई भी ऐसी स्किल सीखें जिसकी वैल्यू है। सबसे अच्छी स्किल में 2-3 स्किल्स जो हैं वो रिकमेंड करूँगी, उसमें जो है वो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है कि हर बिजनेस को रिक्वायर्ड है, क्योंकि आगे
0: कॉन्टेंट
1: राइटिंग और क्योंकि आगे जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो डिजिटलाइज हो रही है और हर ब्रांड को अपनी जो है प्रमोशन के लिए, अपनी सेल्स के लिए, कन्वर्जन्स के लिए ना मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। तो मेटा एड्स जो है मतलब कि फेसबुक एड्स
0: बहुत ट्रेंड है आजकल, बिल्कुल बिल्कुल
1: बहुत ट्रेंड है। तो आपको जो है उन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए। और सोशल मीडिया जो मैनेजमेंट है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ज़रा थोड़ी डिफरेंट होगी डिजिटल मार्केटिंग से। उसमें ये है कि आपके डिफरेंट कॉन्टेंट पिलर्स होते हैं।
0: अक्सर कंपनीज आपको बस एक फ़ोन नंबर की लिस्ट प्रोवाइड कर देती है जो आपने बस घर बैठ के आराम से खुद ही उनसे इन टच रहना है और उनके साथ लीड जो हैं वो फॉरवर्ड करनी है। ऐसा भी होता है कि वो फिर आप इजीली घर बैठ के कर सकते हो और अपने कस्टमर्स से इन टच रह सकते हो और उनको अपनी कंपनी के बारे में या अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बता सकते हो।
1: ऐसे ही है। और जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है वो ज़रा ऑर्गेनिक है, उसमें ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए आपके लिए आपके पास होते हैं कॉन्टेंट पिलर्स होते हैं, कॉन्टेंट स्ट्रैटेजी होती है, ये ब्रांड परसेप्शन होगी, पोजिशनिंग होती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और ये सब चीज़ें सीखें। और मतलब कि अगर आप ये स्किल भी सीख लेते हैं तो मिनिमम भी आप एक ब्रांड से जो है मिनिमम भी जो इस टाइम रेट चल रहा है वो 30-40 हज़ार जो है वो चार्ज कर लेते हैं इजीली एक ब्रांड से। और अगर आपके पास 2-3 ब्रांड्स हो तो वो आराम से 1-2 लाख आपके घर बैठे बन जाते हैं।
0: तो देखिए ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज हैं, तो इन पर ज़रूर काम करें। स्पेशली जो गिफ्टिंग का है दैट इज़ समथिंग वेरी नाइस, क्योंकि आपको एडवांस पेमेंट भी मिल जाती है और एडवांस पेमेंट लेने के बाद जो आपको डेट देते हैं कि इस डेट तक उन्हें गिफ्ट या बुके रेडी चाहिए, तब तक आप वो पैसे जो हैं लगा के उनको प्रोडक्ट दे देते हैं और आपको अपने से इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती। तो जी यहाँ आपकी स्मार्टों की नज़र करने जा रही हूँ, बहुत अच्छा सा ट्रैक। आई बी टेकिंग यू ऑन ए कॉल्स, हमारे साथ रबते का नंबर है 111-0101। I'll be taking you on a calls after this track. Here you go.

0: जी लिसनर्स, वेलकम बैक. दिस इज योर दोस्त, योर होस्ट आरजे वजीहा आसिम ऑन एयर. अभी टाइम हो गया है 12:13 इन द स्टूडियोज. हमारे साथ मौजूद हैं तुबा नवाज. तुबा नवाज, आपको कैसा लग रहा है आज ऑन एयर जाके मेरे साथ स्पेशली?
1: मैंने आपके अलावा भी बहुत सारे शो.
0: हाँ, आई नो इसलिए मैंने कहा है कि मेरे साथ आपको कैसा लग रहा है आज माइक शेयर करके.
1: हाँ, आज मुझे बहुत मजा आ रहा है. तो कि इंटरेस्टिंग है, और ये कि एक ही टॉपिक नहीं है जिस पे आपको बात करनी है. अलग अलग चीजें, अलग अलग लोग, अलग अलग इंटरेस्ट, अलग अलग बिहेवियर.
0: ताकि देखें सब लोग हमें, डिफरेंट डिफरेंट नेचर के लोग हमें सुन रहे हैं, ताकि हर एक के मजाज के बारे में कोई ना कोई बात जरूर की जाए. अच्छा, और अभी एक कॉलर है हमारे साथ, हम कॉल लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम सलाम.
0: बिल्कुल ठीक ठाक.

0: वेलकम टू द शो, कौन बात करें, कहाँ से?
1: लियाकत अली बागड़ियों से।
0: लियाकत अली कहाँ से बात कर रहे?
1: ग्रीन टाउन के साथ है बागड़ियों।
0: अच्छा जी, अच्छा जी, बागड़िया जी, क्या कहना चाहेंगे?
1: मेरा सलाम बाबा बेटा को भी।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: ठीक बेटा, मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, जो पेंडू है ना असि
0: जी जी, चले ठीक है जी। एक्चुअली हमारा जो पंजाबी प्रोग्राम है वो होता है 1 2 3, और लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अगर हम कर सके तो ज़रूर करेंगे। ओके, बिकॉज वी हैव टू फॉलो द फॉर्मेट ऑफ द प्रोग्राम एज वेल। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ?
3: जी बिस्मिल्लाह, आतिफ दिया। वालेकुम सलाम,
0: वेलकम टू द शो।
3: माशाल्लाह, शुक्रिया। तो
2: वालेकुम अस्सलाम,
3: माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम। साडे भाई दी लियाकत दी कॉल कटी जी, बड़ा दुख लगा। चलो सानू भी मौका मिल गया है।
0: किस्मत किस्मत की बात है,
3: किस्मत की बात है। मैं ना अभी लिया, मैं नंबर मिला के रखा हुंदा, जदों कदे कॉल ड्राप होवे मैं फटाफट
0: बिल्कुल। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया
3: जी, माशाल्लाह शुक्रिया। ते आती हो तापर ते मैं गल करूंगा
0: जी जी जी।
3: देखो इंसान दे विच आदत जड़ी है ना, कोई बुरी होवे ना उन्नू बदल लेना चाहिदा।
0: बिल्कुल,
3: वक्त दे नाल नाल ना आदतां बदल लेनी चाहीदी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: मैं वैसे ओ घर बड़ा ना, ते दरवाजा जदों खुलन लगा ते कहे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात, ते एक घर दे भी सलामती दी दुआ मिल जांदी है, ते क्रिश्चियन दे भी क्रिश्चियन नूं भी सलाम हो जांदा साडे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, घर में कोई हो या ना हो ना, जो आपने एंटर होना है तो आपने अस्सलाम वालेकुम कहना है, ठीक है ना?
3: वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। कोई बुरी आदत होवे ना घर गया ते एवें गुस्सा नहीं चढ़ाई रखना, कोई भांडा पिया या छोटा मारिया जां वेखो ना। एक गल आ भी ए आदतां छोटियां छोटियां खाना खाए, ये आदत बहुत अच्छी है, अल्लाह बरकत भी पा दिंदा, प्यार मोहब्बत भी हो
2: जाती। मैं ये कह रही थी कि आपने जो बात की है बहुत अच्छी और बहुत समझदारी की बात की है। अक्सर हमारे यहाँ जो है, आपको पता होगा कि हमारे यहाँ मर्दों में जो है ना वो बहुत ही मिजाज जो है ना गुस्सा वगैरह पाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिनका बिहेवियर ऐसा होता है ना जिन मर्दों का, ये कि उनके जो घर वाले हैं वो भी उनके साथ अटैच होते हैं, वो आराम सुकून से बात कर लेते हैं, और ये कि बड़ा
0: अच्छा है। बताऊँ ये ना, हम ये घर वालों ने ही उनको बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर करके सर पे चढ़ा दिया। चले जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, बाकी कॉलर्स को भी चांस देते हैं। जी थे हमारे बहुत प्यारे से बहुत अच्छे से कॉलर, और हमेशा बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं। एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, आपी जी क्या हाल, ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
4: आपी जी बहुत ही ज्यादा गल कर रहे हैं, रावी तो।
0: वाह जी वाह, क्या बात है, ये जो रावी के कंडे में आपने सबसे मिलने का जो प्लान बनाया ना, हमारे आधे कॉलर जो है ना रावी के कंडे में इकट्ठे हो गए हैं
4: जी। आपी जी, आपकी तूबान में सलाम। आपी जी
2: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका
0: जी, क्या कहना चाहेंगे आप?
4: आपी जी सदा सलामत रहो, माशाल्लाह ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ।
0: ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
4: ਆਪੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ
0: ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਹੂੰ ਔਰ ਬਸ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
4: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪੀ ਜੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ।
0: ਚਲੇ ਜੀ, ਆਪਕੀ ਕਾਲ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।
4: ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹੇ ਆਪੀ ਜੀ, ਤੇ ਆਪੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ।
0: ਕੌਣ ਸਾ ਕੌਣ ਸਾ, ਜਲਦੀ ਸੇ ਬਤਾਏ।
4: ਅਰੇ ਲੋਗੋ ਤੁਮਾਰਾ ਕਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ।
0: ਚਲੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ,
4: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪੀ ਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੇਰੀ ਆਪੀ ਸਾਜਦਾ ਆ, ਨੀਲਾ ਆਪੀ ਹੈ, ਫਰੀ ਆਪੀ ਹੈ, ਐ ਬਰਫੀ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਨ ਸਲਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਤੇ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਗਲੀਆਂ ਤੋਂ,
0: ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਥ ਬਤਾਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ
4: ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ
0: ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ,
4: ਫੌਜ
0: ਪਾਇੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। اچھا جی، آپ نے پروین کا کلام ضرور ہم پروگرام میں شامل کریں گے، اور ابھی ہمیں جو ہے ایک فرمائش آئی تھی جو عاطف علی نے کی تھی، ان کی فرمائش ابھی ہم پلے کرنے جا رہے ہیں۔ آئی بی ٹیکنگ یور مور کالز آفٹر دس ٹریک، ہیئر یو گو۔

0: जी वेलकम बैक, दिस इज योर दोस्त योर होस्ट आरजे वजीह आसिम। आप सुन रहे थे एक ज़बरदस्त ट्रैक जो कि हमने प्ले किया था तो बहुत प्यारे लिसनर के लिए, जिनका नाम है आतिफ अली। अच्छा, हमें आरजे वसीम अहमद ने मैसेज किया है, कहते हैं बहुत अच्छा टॉपिक आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। रिहाना खान ने हमें बकर से ज्वाइन किया है, मोहम्मद और सलगारी हैं हमारे साथ और अल्हम्दुलिल्लाह मल्ला खेल है हमारे साथ। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम 101 के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से मुस्कुराता हुआ अस्सलाम वालेकुम। वजिया जी कैसी हैं?
0: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं?
1: अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और तुबा साहबा भी मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: तो बहुत अच्छा, हमेशा की तरह वजिया आसिम साडा शो हुंदा वे, बहुत प्यारा शो।
0: शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत।
1: आपको
0: इसको जरूर ओवरकम करना चाहिए क्योंकि फिर जो है ना डिफरेंट बीमारियों में इंसान पड़ना शुरू हो जाता है ना।
2: अच्छा, इसमें ये है कि जैसे हमारे दीन में है कि अगर आपको गुस्सा आया हो, अगर आप बैठे हैं तो आप खड़े हो जाएं, खड़े हैं तो बैठ जाएं, और जब गुस्सा आ रहा हो तो पानी पी लिया करें। और दूसरी बात ये है कि जो आउज़ बिल है उसको पढ़ा करें, इससे आपको जो गुस्सा है वो कम होता है।
0: होता है
1: देखो ये है कि मैं किसी के साथ जब अच्छी बुरी नहीं करती तो मेरे साथ कोई क्यों करे।
0: देखिए, कोई भी किसी के साथ बुरा नहीं करता, लेकिन देखें लोग बदलते हैं मौसम की तरह। ये बात आप अपने दिल दिमाग में बैठा लें, ठीक है ना। तो पहले ये होता था, पहले कपड़े बदलते थे, जूते बदलते थे, अब लोग मौसम बदलते थे, आज के लोग बदलते हैं, ठीक है। काम खत्म, मतलब खत्म, तो बस फिर रिश्ता खत्म।
1: देखो मेरी बात सुने आप, के लोग कहते हैं कि शमीम आती की हर शो में कॉल मिलती है, पता नहीं कैसे मिल जाती है, और अक्सर मेरी कॉल जो है ना पहली होती है शो में।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये
0: देखिए आपकी किस्मत आपके साथ,
1: मेरे साथ। तो लोगों को क्या इतराज है, मैं नहीं किसी का इतराज करती, मेरे भी इतराज क्यों लोग करते। ये मेरी किस्म आप समझ लें या मेरी लक समझ लें या
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ये लोगों को ये मेरा बहुत इतराज के इसकी हर शो में।
0: नहीं नहीं नहीं, देखिए कोई इतराज नहीं है। देखिए ये है आपका अपना चैनल, तो जिसकी कॉल मिल गई हमारी कोशिश होती है हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स लें, ठीक है ना।
1: हाँ जी, हाँ जी। नहीं अभी कॉलर आए थे तो वो कह रहा है 20-25 तो नहीं ना कॉलें, इतनी तो नहीं ना लेनी कॉल, चले 3-4 कॉलें आप।
0: लेकिन देखिए ट्राई तो हम करते हैं, ठीक है ना।
1: हाँ जी,
0: चले जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। और क्या कहना चाहेंगी आप?
1: जैसे मैं ये कहूँगी की वो गाना है कि अगर मैं बेवफा हूँ तो तू की है।
0: अच्छा,
1: बेवफा हूँ तो तू की है,
0: ठीक है।
1: हाँ, ये गाने के बोल हैं, अगर ये प्ले कर दें, बाकी फरी भी सुन रही है इस वक्त।
0: इसके सिंगर कौन कौन है?
1: ये सिंगल मेल सिंगल है, नाम का तो मुझे भी कुछ नहीं पता।
0: ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, अगर आई ट्राई द बेस्ट।
1: हाँ, तो बाकी फरी को, हनीफ भाई को, और कुवैत वाले भाई हैं तारिक भाई, उनको, बहुत से लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अच्छा लगा वजीह आसिम आप साथ बात करके।
0: सेम है, सेम है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, हमारे कॉलर्स जो है ना हमारे हमेशा दिल के बहुत बहुत करीब होते, तो आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। आतिफ अली नौरानी ने हमें मैसेज किया है, कहते हैं ज़िंदगी में जहरीले लोग को इतना इग्नोर करें कि वो अपने आप को ही डस लें। बहुत अच्छी बात की आपने। और साथ ही ना अब मैं ज़बरदस्त एक ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, आई विल बी टेकिंग योर मोर कॉल्स आफ्टर दिस ट्रैक। कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड।

0: Welcome back. This is your dose, your host, Ajay Wajiha Asim. It's 12:31 p.m. in the studios. हमारे साथ हैं तूबा और तूबा साथ मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी. आप भी अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करो कि ज़िंदगी में होता है ना कि अप्स एंड डाउन्स शादी के बाद स्पेशली सब लड़कियों की लाइफ में आते हैं. तो कभी अगर आपको ज़ाहिर बात है माहौल नया होता है, डिफरेंट माहौल आपको मिलता है, उसमें एडजस्ट करना कितना आसान होता है या मुश्किल होता है, तो आप अपनी जनरेशन के हिसाब से ऐसे बताओ. और अगर आपको कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती तो उसके लिए स्टैंड लेना जो है कितना ज़रूरी है या किस तरह लिया जाए.
1: अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जनरेशन के लोगों में ना बर्दाश्त बहुत कम है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. ठीक है, इंसान में जो है वो बर्दाश्त होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी रिश्ता है और स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है तो ये एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ख़ुद भी कहा है कि ये वो रिश्ता है जो जब ख़त्म होने पे आता है या किसी भी ऐसी नौयत पे पहुंचता है ना, तो ये अमल अल्लाह ताला को भी सख्त नापसंद है. ठीक है, तो हमें चाहिए कि आजकल ना लड़कियों में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली मतलब कि यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियाँ या कुछ भी हो ना, उनकी बातें यही होती हैं कि वो जो है ना एक तो कम्बाइंड फैमिली है, जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसमें नहीं रहना चाहती. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर जिस घर आप जा रहे हैं वो लोग अच्छे हैं, ठीक है, मतलब एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, तो आपको एडजस्ट करना चाहिए. और ज़रूरी नहीं है कि जो बात सामने वाला आपको कह रहा है उसकी हर बात का जवाब देना ज़रूरी है. ठीक है, अगर आप उसको खामोशी से इग्नोर कर देंगे तो बहुत सी लड़ाइयाँ जो है और बहुत सी बदमजगी.
0: हमारे साथ कॉलर है, उसको लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ठीक ठाक, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो. अल्हम्दुलिल्लाह,
2: बड़ी मेहरबानी. आप सुनाओ, आप क्या हाल है? घर में खैर खैर है
0: जी? सब ठीक ठाक. क्या कहना चाहेंगे आप शो के हवाले से?
2: और आती आप बीच में किन शो क्यों नहीं करते?
0: क्या नहीं करती
2: आप बीच में? किन शो किया करो?
0: तीन शो किया करें, ठीक हो जी. हाँ बिल्कुल, ये देखें ये तो मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़रूर आपकी जो रिक्वेस्ट है ना आगे फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है ना,
2: मैनेजमेंट प्रोड्यूसर में ना उसने प्लीज हमें हो जाए कि कोई ज़्यादा शो दिया जाए.
0: चले जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ज़रूर आपकी रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करेंगे. तो क्या कहना चाहेंगे आप शो के हवाले से? कोई ऐसी चीज़ जो आप अपने बारे में एक बदलना चाहते हैं?
2: बस आप ही, मैं अपने बारे में ये बदलना चाहता हूँ.
0: क्या बदलना चाहते हैं?
2: गुस्सा.
0: अच्छा अच्छा, ठीक है, आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है. ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई है. ये थे हमारे बहुत अच्छे बहुत प्यारे से कॉलर मोहम्मद मलिक मोहम्मद आदिल ने हमें ज्वाइन किया है सऊदी अरेबिया से. कहते हैं नंबर वन, आपका बहुत शुक्रिया. एक कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम सलाम
0: जी, वेलकम टू द शो एहसन खान.
3: शुक्रिया जी.
0: देखिए आज मैंने आपको फौरन पहचान लिया जी.
3: बहुत अच्छा शो कर रही हैं और सुबह को भी हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका.
3: बहुत वेलकम, और इनके लिए बहुत सारी दुआएं कि ये भी अच्छे शो करें और मेहनत करें अपने इस पैशन के साथ और लगन के साथ.
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और क्या कहना चाहेंगे आप?
3: की तरफ चलते हैं क्योंकि हम खुद कहते हैं ना छोटी गाल करें तो फिर.
0: हाँ हाँ बिल्कुल.
3: अच्छा, मुझ में ना एक ऐसी है बुरी आदत, जैसे लोग तंग हैं मेरे घर वाले, मेरी फैमिली या करीबी लोग, कि मैं ना ये मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कॉलें बहुत ज़्यादा करता हूँ.
0: अच्छा ये तो आजकल सबको एडिक्शन हो गई है. मैंने कहा ये तो एक एडिक्शन हो गई है ना, जैसे कि इंसान को कि मोबाइल थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक ना किया तो कुछ हो जाएगा.
3: मेरा दोस्त बन जाता है ना, मैं उसको कभी जवाब नहीं करता. जब वो कॉल करता है तो फिर उसकी मर्जी से कॉल काटी जाती है. मैं फिर वो बहाना नहीं लगाता कि आपकी बात कर दें ये वो, या हमारी की मजबूरी है.
0: अच्छा,
3: घर वाले फिर ऐसे बहुत तंग होते हैं. या फिर एक दूसरा इसमें इशू ये भी है कि मैं सब भाइयों से बड़ा हूँ.
0: अच्छा,
3: तो हम इधर लाहौर में रहते थे ना तो घर वाले खुद कहते थे कि फलां को फोन कर लेना, उनका कोई बंदा दिमाग.
0: हाँ हाँ, अच्छा आप लगते तो छोटे से हैं ना.
3: छोटे जो अभी से भी छोटे हैं ना.
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया. सही
3: है, तो मुझे बाबा कहते हैं, आपने देखा हुआ है इस वजह से आप.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ स्टूडियो आए थे. बिल्कुल
3: हाँ, तो वो फिर ना वो फिर लोगों के साथ ना रबते बहुत ज्यादा हो गए हैं कि फिर हमें कोई छोटा सा मतलब फिर लोग फोन करते हैं, फिर हम उनको मना भी नहीं कर सकते. बदलना भी चाहता हूँ और छोड़ना भी नहीं चाहता, कि अगर लोग रबता भी रखते हैं तो नहीं, अगर काम में भी
0: बाउंड्रीज थोड़ी सी सेट करना बहुत ज़रूरी होता है, बाउंड्रीज आपको सेट करनी चाहिए, ठीक है, बस बाउंड्रीज सेट करें, और ये बात नहीं है कि आप उनको इग्नोर करें, बस थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करें,
3: लोग ना अपनी बुरी आदत बता नहीं रहे, वो कहते हैं कि बुरी आदतें छोड़ देना चाहिए, बताया ना भाई आपको क्या क्या मसाले हैं, जैसे मैंने बताया कि मैं ये लोग तंग है मेरे घर वाले, बताया भी करें, गाल पाने का मकसद यही होता है,
0: यही होता है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
3: लोगों को भी पता चले कि ये बात सामने भी है, जितने बहन भाई सो मैं उनको रजा भाई के लिए दुआएं,
0: बिल्कुल बिल्कुल, पिछली दफ़ा आपकी दुआ कबूल हो गई थी और रज़ा भाई की कॉल मिल गई थी। चले जी, आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें आज जो है 23 सितंबर को आलमी योम इशारों की ज़बान इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाता है, और ये हमें मैसेज किया है मंजर महमूद मंजर ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़ाहिर बात है और इस दिन का मकसद समाज से महरूम अफराद के हकूक़ शमूलियत और इशारों की ज़बान की अहमियत को उजागर करना है, और ज़ाहिर बात है बहुत जगहों पे ऐसा ही होता है कि आपको जो आप कोई भी डिबेट चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, तो वहाँ पर साथ एक साइन लैंग्वेज के लिए इंसान ज़रूर खड़ा किया जाता है, और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, शर्त यह है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हों जो हकीकी मायनों में इंसान हों। ये हमें मैसेज किया है अलहमदुलिल्लाह मल्ला खैल ने, और आज मैंने जितने भी हमारे साथ जो मैंने कॉलर्स जो शामिल किए हैं उनका सबसे बड़ा मसला यही है कि उनको गुस्सा बहुत आता है और ये आदत वो अपनी बदलना चाहते हैं, और मोहम्मद उर्सलगारी ने हमें मैसेज किया है अस्सलाम वालेकुम, और मोहम्मद हफीज़ उर रहमान ने हमें मैसेज किया है और उन्होंने सलाम कहा है, और उन्होंने हमें शेखुपुरा से ज्वाइन किया है, अब्दुल हमीद बर्फ़ी वाले, एहसन खान लाहौर से, एम रज़ा चौधरी मुल्तान से, गुल यासीन नाज, और सकरदू से इकबाल मेहंदी। सकरदू में कैसा मौसम है आजकल, सुना है बहुत जो ऑटम सीज़न स्टार्ट हो गया है और रंग बिरंगे जो पत्ते हैं ना उसके मैंने पिक्चर्स देखी हैं, क्या ही बात है, और सियालकोट से वसीम अहमद ने हमें ज्वाइन किया है, उन्होंने सबको सलाम भेजा है मोहम्मद हफीज़ रहमान बखर ने, तूबा नवाज़ ने भी कहा है नाइस शो, और रियाज़ भट्टी हैं हमारे साथ, इसके साथ रियाज़ भट्टी ने कहा है बल्ले बल्ले क्या ही बात है, और उनका है खूबसूरत अंदाज़, आपका बहुत बहुत शुक्रिया रियाज़ भट्टी, और मंजर महमूद ने कहा है माई फेवरेट सॉन्ग बल्ले बल्ले भेजे हैं रियाज़ भट्टी ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
4: हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, खान बाबा बोल रहा हूँ।
0: जी जी, पहचान लिया आपको, वेलकम टू द शो, क्या कहना चाहेंगे?
4: हाँ भाई, मैं तो इस वक्त क्वार्ट में हूँ, एक दो महीने के लिए।
0: अच्छा,
4: तो ट्रांसमिशन नहीं आ रही है, तो आप टॉपिक बता सकती हैं?
0: हाँ हाँ, हम आज मेरे लिसनर से पूछ रहे हैं कोई ऐसी चीज, कोई एक ऐसी आदत जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं, या आप चाहते हैं, आपको लगता है काश जिंदगी में ऐसा ना हुआ होता।
4: हाँ, झूठ।
0: क्या आपने झूठ बोला था? आप चाहते, आप सोचते हैं क्या शायद ना बोला होता, काश ना बोला होता।
4: हाँ, यही बात है, काश मैंने झूठ ना बोला होता ताकि मैं इसको फेस करना ना पड़ता।
0: अच्छा, सही बात है, सही बात है, झूठ का सहारा जिंदगी में नहीं लेना चाहिए ना।
4: हाँ हाँ, झूठ का सहारा जिंदगी में नहीं लेना चाहिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
4: हाँ, ये जो बच्चे हैं ना, ये एक नारा मारना चाहते हैं, सुने सुने।
0: जी जी,
4: पाकिस्तान।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने तो आज बच्चों की अच्छी फौज इकट्ठी की हुई है।
4: हाँ, बच्चों की फौज इकट्ठी की हुई है।
0: क्या बात है, क्या बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद।
4: फिर पाकिस्तान।
0: वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या ही बात है। अब मुझे यही बच्चों का जोश और वलवला है जो देख के हमें बहुत खुशी होती है और सुकून मिलता है कि अपने मुल्क के लिए यही बच्चे आगे जो है ना कुछ कर दिखाएंगे।
4: भाई, यही बच्चे जो है ना इसे मुल्क के पाकिस्तान को चलाएंगे ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इनके जो है ना, जो इनके इसी तरह से ही जज्बे जो है ना हाई रहने चाहिए।
4: पाकिस्तान।
0: चले जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
4: ओके ओके, अल्लाह हाफिज़।
0: अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।
4: इंशाल्लाह अगले महीने में हम आएंगे लाहौर इंशाल्लाह।
0: चले जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया,
4: अल्लाह
0: अल्लाह हाफिज़। जी, थे हमारे बहुत प्यारे से, बहुत अच्छे से कॉलर, जल्दी से कॉल कॉल लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल प्ले द सॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है
0: जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही है, कहाँ से?
5: मैं अमारा बात कर रही हूँ, तोबा को वेलकम, खुश आमदीन कहते हैं आपके शो में।
6: बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
5: शमीम आपी को वो जो रिक्वेस्ट की थी ना शमीम आपी में, वो नदीम अब्बास लोने वाला का गाना है मैं बेवफा हाथ से टूटी।
0: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी ठीक है, हम कोशिश करेंगे प्ले कर सके।
5: आदत में अपनी ये चेंज करना चाहती हूँ कि मैं जज्बाती बहुत हूँ, अपने जज्बात को कंट्रोल करना चाहती हूँ, और इसके अलावा एतबार दूसरे पे बहुत जल्दी कर लेती हूँ, ये मैं चाहती हूँ कि ना करूँ।
0: ठीक हो गया।
5: और सबके लिए मैसेज ये है कि दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बहन खलौन, तू होवे ते हसन सारे तू जावे ते रोन। और एक दूसरा मैसेज ये है मेरा कि उन लोगों से बचे जो रिश्ते और जो ताल्लुक है ना वो लिबास की तरह बदलते हैं, उन लोगों से बच के
0: रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
5: और सब सुनने वालों को मेरा सलाम और शमीम आपी को स्पेशल सलाम। हम लोग मिस करते हैं शमीम आपी, आया करें चाहे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो फरी आपी का इंतजार है, फरी आपी अभी तक नहीं आई है कि हमेशा जल्दी कॉल मिल जाती है।
5: बहुत सारी दुआएं इनके लिए, सलामत रहें, अल्लाह ताला इनको सेहत सलामती वाली लंबी जिंदगी दे और हमारे सर पे हमेशा सलामत रहें।
0: आमीन आमीन आमीन।
5: बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह।
0: अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यहाँ प्ले करने जा रही हूँ एक ज़बरदस्त सा ट्रैक और इसके बाद आपकी फरमाइशी गीत भी शामिल करूँगी।

0: जी वेलकम बैक। हमारे साथ इस वक्त तुबा मौजूद हैं स्टूडियो में और मैं कोशिश करूंगी अपने लिसनर्स की ना ज़्यादा से ज़्यादा फरमाइशें पूरी कर सकूं। एक कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू द शो। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? कौन बोल रहे हैं?
2: कह रहे हैं पहचाने मैं कौन बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, रजा चौधरी? एजाज अहमद, ठीक होंगे। वेलकम कहते हैं आपको शो में।
1: आप तो कह रहे थे कि मैं सारे कॉलरों की बात
0: करूं। आज देखिए मैं कोशिश कर रही हूँ ज्यादा से ज्यादा सबको पहचान सकूं, ठीक है ना? अगर ना पहचान सकूं तो माजरत कबूल करें।
1: माजरत क्यों, तुसी चैलेंज कीता है, माजरत हो ही
0: सकती है। नहीं देखिए आज मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना? अगली दफा इंशाल्लाह।
2: वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ।
0: जी तो शो के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं तो ये कहूँगा कि आप नॉर्मल आके शो किया जाए।
0: ठीक है जी, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हैं जो आपके दिल में आप कह सकते हैं। नहीं, देखें आपकी जब कॉल मिली है तो आपको हक है, आप अपने दिल की जो बात चाहे करें।
2: हाँ, हर एक के पास इख्तियार है कि वो अपनी राय का इजहार करे।
0: बिल्कुल,
1: मेरा ख्याल ये है कि आपके लिए दुआओं की जरूरत है, आपको बहुत
0: ज्यादा। ठीक है जी,
1: अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।
0: चले जी, थैंक यू। और अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहेंगे तो दें शो के हवाले से।
1: मैं कुछ भी
0: नहीं, मतलब आप चाहते हैं कि ना टॉपिक रखे बगैर कोई शो करें?
1: क्योंकि मैं हूं अपने ज़हन का मालिक, मैं सिर्फ ये नहीं कि टॉपिक पे बात नहीं करता, मुझे शो के रेडियो पे कॉल करने का।
0: ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जी जी,
1: अगर मैं बात कर जाता हूँ तो वो मेरा एक माल नहीं है, मेरे अल्लाह ताला की नेमत है मेरे
0: पास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखें जब आपकी कॉल मिली है, हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो यू हैव अ राइट जो आपके दिल में आप कह सकते हैं।
1: मेरे ख्याल से बात ये है, यहाँ पे देखो ना कि हम यहाँ आके कोई भी नहीं कहेंगे कि मैं अपनी बुराई बताऊँ आप।
0: जी जी जी जी जी जी,
1: क्योंकि हमने अपनी सही बताएंगे तो हमारा नंबर होगा ना यार, ये बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन जो बुराई है वो दिल से निकाल देनी चाहिए कि ये बुराई है मुझे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: मैं अपनी बात करता हूँ, मुझ में ये बुराई है कि मुझसे भूख नहीं बर्दाश्त होती है।
0: क्या नहीं बर्दाश्त होती?
2: भूख बर्दाश्त नहीं होती है मुझसे।
0: अच्छा, सही है।
1: जब मैं जाता हूँ ना लाहौर से वापस जाता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि जब मैं जाऊँ तो मेरे लिए खाना तैयार हो।
0: सही है। वैसे भी अब खाने का टाइम होना ही वाला है।
1: नहीं वो होने वाला, लेकिन अभी वो क्या कहते हैं कि अभी तैयार ही नहीं है, सीटें बज रही हैं प्रेशर की।
0: चले जी, ठीक हो गया। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, तो देखिए खाने का टाइम हो गया और सबको भूख लगी हुई है, और नो डाउट, और जो है ना जो माएँ उनकी कोशिश होती है कि इस टाइम तक ना खाना तैयार हो। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है, कहाँ से?
3: मैं बिस्मा बात कर रही
0: हूँ। हाँ बिस्मा, क्या कहना चाहोगी?
3: मैं ठीक हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी आपकी आवाज़।
0: अच्छा, हमें आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है, प्रोग्राम के टाइम बहुत कम है, जल्दी जल्दी से बता दो क्या कहना चाहती हो।
3: अच्छा, मैं ये कहूँगी कि बस मुझे ये वाली आदत अच्छी लगती है, और जिस तरह इंसान को पुरसकून रहना चाहिए, जो लोग पुरसकून रहते हैं, जल्दी जज्बाती नहीं होते, और अपना भी बीपी नॉर्मल रखते हैं दूसरों का भी। मैं तो इस तरह की हूँ कि मतलब मुझे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो अपना बीपी भी हाई हो, फिर दूसरों का भी हाई कर देते हैं।
0: अच्छा,
3: आदत मुझे अपनी पसंद नहीं है।
0: अच्छा,
3: ये बस किसी तरह खत्म हो जाए और पुरसकून बंदा रहे कि प्रॉब्लम तो आती पर उसको सॉल्व करे अच्छे तरीके से। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे हैं तो हर सिचुएशन में अपने आप को इतना मतलब काम डाउन रखते
0: हैं। हाँ, बहुत कंपोज्ड रहते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
3: हाँ, नहीं ये नहीं कि बिल्कुल पुरसकून हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। हाँ, वो मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते हैं पर इतने अच्छे तरीके से, पुरसकून तरीके से, ना खुद तंग होते हैं ना किसी को तंग करते।
0: एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो थैंक यू बिस्मा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, यहाँ एक ज़बरदस्त सा ट्रैक प्ले करने जा रही हूँ, आई विल बी टेकिंग मोर कॉल्स आफ्टर दैट, अ ब्यूटीफुल ट्रैक कमिंग योर वे, हियर यू गो।

this music. There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ

सुनते रहिए FM 101, सुनते रहिए FM 101, 101, 101.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: सुपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आमिर हाशमी से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीन बनाने के लिए पाकिस्तान का गैर मुतज़लज़ल अज़्म जाहिर किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी ताउन तंजीम के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वह बैन-अल-क़ौमी फोरम्स पर जम्मू कश्मीर के मामले पर मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ बरकरार रखें। पाकिस्तान और अमरीका ने दो तरफा ताउन के फरोग के लिए बाहमी राबते मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान ने आज सुबह अफगान सरहद की जानिब से अपनी फजाई हदूद में दाखिल होने वाले 8 ड्रोन्स को मार गिराया है।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then this magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: शाम के 5 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। रिजवाना मेहताब से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामी तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो बैन-उल-अक़वामी फोरम्स में जम्मू कश्मीर के मामले पर मुत्तफ़िक़ा मौक़िफ़ बरकरार रखें। हुकूमत ने बिजली चोरी और सिस्टम लॉसेस का अंदाज़ा लगाने के लिए बिजली की तमाम तकसीम कार कंपनियों का तकनीकी ऑडिट कराने का फैसला किया है। और सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्तूम में फित्ताल ख्वारिज के 9 दहशतगर्द हलाक कर दिए हैं।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

मैं भी ठीक ठाक हूँ जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। हर्ष पे वादा आप लोगों के साथ एक बार फिर से हूँ मौजूद। After a long, long, long time, उम्मीद करती हूँ जनाब इस तमाम टाइम में, इस तमाम अरसे में आप ठीक ठाक रहे होंगे, खैरियत से रहे होंगे, खुशियों से रहे होंगे, अपनों के साथ रहे होंगे।

जनाब, आज है बुध का दिन और 23 सितंबर है, और 23 सितंबर का दिन बड़ा यादगार है कि आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है। चलिए जनाब, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। किस तरह से सुन सकते हैं जनाब? फेसबुक पर एफएम 101 लाहौर के ऑफिशियल पेज पे मैंने पोस्ट लगा दी, आप उसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जनाब मैसेजेस के थ्रू, 4471 हमारे मैसेजेस का जो नंबर है। इसके अलावा मुझे कॉल कर सकते हैं 111-111-111-00-01 पर। 042 का इजाफी कोड आपने लगाना बिल्कुल नहीं भूलना। और जो लोग जनाब मुझे ड्राइव करते हुए सुन रहे हैं, आपसे मेरी गुजारिश है जनाब, अपनी लाइन और लेन का बहुत ख्याल रखना है, ड्राइव करते हुए नहायत एहतियात से काम लेना है, अपने सीट बेल्ट का इस्तेमाल कीजिए, और मोटरसाइकिल चलाने वाले हजरात जनाब हेलमेट जरूर पहनिए, नहीं तो जिम्मेदार आप खुद होंगे। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, जिम्मेदार तो इंसान अपने कर्मों का खुद ही होता है, लेकिन अच्छा होता है आगाही रहे, और आगाह करते रहना भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा एक काम है, तो सोचा मैं ये अच्छा काम मैं कर ही दूँ। एनीवे जनाब, बड़ा ही खूबसूरत सा मौसम है, और मैं मुझे याद है कि जब मैंने लास्ट टाइम प्रोग्राम किया था तो बड़ी गर्मी थी, और हमने यही वाला शिकवा किया था कि इतनी गर्मी है और इस तरह के बड़े बोर से दिन हैं। लेकिन जनाब, वक्त का काम यही है, वक्त की खूबसूरती यही है कि वक्त गुजरता चला जाता है, और आता है जो हमें नहीं भी पसंद होता है वो भी गुजर जाता है, और जो हमें बहुत पसंद होता है वो भी गुजर जाता है। और मौसम की ये जो ट्रांजिशन है ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर की इन महीनों में जो हो रही होती है, गर्मी ख़त्म हो रही होती है और ट्रांजिशन हो रही होती है ना, वो एक सर्दी की तरफ हमारे मौसम के जो कदम वो बढ़ रहे होते हैं, बड़ी खूबसूरत सी चेंजेस आ रही होती हैं जी। हमारे इर्द गिर्द जो दरख्त हैं, पौधे हैं, फूल हैं, उनमें भी चेंजेस आ रही होती हैं, मौसम में भी चेंजेस आ रही होती है कि बिल्कुल एकदम कड़कती गर्मी से आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो शामें हैं वो ठंडी होना शुरू हो रही होती हैं। बड़ी वो एक खुशबू सी होती है सर्दियों की ना, एक ठंडक और एक अरोमा सा होता है, वो शामों में आना शुरू हो जाता है। हमारे इर्द गिर्द के जो दरख्त होते हैं, पौधे होते हैं, वो मुख्तलिफ सब्ज रंग छोड़ के मुख्तलिफ और तरह के रंग ओढ़ना शुरू कर देते हैं, जैसे पीला है, जर्द है, नारंगी है। और लोग कहते हैं कि ये खिज़ां का मौसम है, कुछ लोगों को खिज़ां का मौसम अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर देखा जाए हर मौसम की अपनी खूबसूरती है, हर तब्दीली की अपनी खूबसूरती है, और जब ये रंग हम अपने इर्द गिर्द बिखरे हुए देखते हैं तो बहुत ही आँखों को बड़े भाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। और इन अच्छी अच्छी बातों के साथ जनाब प्रोग्राम का हम आगाज़ कर चुके हैं, और प्रोग्राम में शामिल करते हैं जी बिल्कुल प्रोग्राम में शामिल करने जा रही हूँ जी बो काटा गर्ल की आवाज़, बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक है जनाब, मिलके सुनते हैं, वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर, मुझे कहते हैं जी रिहाल ताफ़।

0: This is FM Bhopal.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

वेलकम वेलकम बैक, खुश आमदीद जी आन सत बिस्मिल्लाह व खैर। अगले जनाब प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस। आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 लाहौर, और मुझे कहते हैं रिहाल ताल। प्रोग्राम आपका अपना जी शाम किनारे। बड़े ज़बरदस्त ट्रैक सुन रहे थे ढोला साडी कदर ते जान, और बिल्कुल जनाब कभी कभी हमसे ही हो जाता है कि हमें जिन लोगों की कदर करनी चाहिए, जिन चीज़ों की कदर करनी चाहिए, हम नहीं कर पाते हैं। पर कोई नहीं जी, इंसान आ। और जनाब मेरे पास ना मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं, और मैं बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़्यादा डर भी गई हूँ और मोहताज भी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस नज़र आ रहे हैं वो कुछ बड़े ही कोई सवाल और जवाब वाले हैं। और आई नो इतनी गैर हाजिरी के बाद आपने मुझसे मेरी क्लास तो लेनी ही है, लेकिन जनाब मैं भी बिल्कुल प्रिपेयर होके आई हूँ, आपको जैसा सवाल वैसा जवाब मिलेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि आप मुंतज़िर थे, आप मैं जैसे ही मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया है आप तमाम लोग मेरे साथ शामिल हैं, मुझे सुन रहे हैं, और शिकवा बनता है जनाब, बिल्कुल बनता है। और कहते हैं कि शिकवा भी वहीं होता है जहां अपने होते हैं, जहां अपनाइयत होती है, जहां प्यार होता है। तो आप लोगों के शिकवों का भी बहुत शुक्रिया। बाकी मैं हमेशा कहती होती हूँ कि मैं कहीं भी चली जाऊँ मैंने वापस 101 ही आना होता है। ज़िंदगी है जी, ज़िंदगी में कुछ ना कुछ इस तरह का चलता रहता है, उतार चढ़ाव, कुछ चीज़ें, कुछ मसरूफियात। लेकिन वो परवीन शाकिर ने क्या खूब कहा है, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया। तो हम भी जहाँ कहीं भी जाते हैं लौटते हैं तो 101 के पास आते हैं। जी तो जनाब आपका और मेरी बातों का जो सिलसिला है वो ठीक 2 घंटे के लिए यानी 7 बजे तक इसी तरह से जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन बग़ैर ताखीर के हमारा जो आज का टॉपिक है जिस पे आज हम बातचीत करने वाले हैं वो मैं अनाउंस कर देती हूँ, ताकि आप ज़रा अपने दिमाग पे जोर तो देना, मैंने अकेले तो नहीं ना बोलते चले जाना। बहुत बहुत आराम कर लिया है जनाब आप लोगों ने, फिलहाल मैं भी। और आज का जो टॉपिक है ना वो बड़ा ही मज़े का है। मज़े का इस तरह का है कि जब भी मैं कभी इस तरह का टॉपिक रखती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ अब हमारे अंदर के जो छुपे हुए इंसान हैं ना वो बाहर आएंगे और पता चलेगा कि अच्छा जी कौन कैसा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों के सामने और तरह के होते हैं, लेकिन जब हम अकेले में होते हैं हम ज़रा और तरह के होते हैं। तो आज मैंने आपसे ये पूछना है कि आप मुझे ये बताएंगे, क्या आप लोगों के सामने मुख्तलिफ और अकेले में मुख्तलिफ होते हैं? लोगों के सामने और अकेले में कुछ और। ये है जनाब आज का सवाल। आज पता चलेगा किसने कितने मास्क लगाए हुए हैं जनाब चेहरे पे, आज पर्दे हट जाएंगे। अच्छा वैसे ये कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। अब इस पे हम जाहिर है आगे फर्दर डिस्कशन करेंगे तो पता चलेंगे हमें

इसको कंक्लूड करेंगे, क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है कि हम जो है वो अकेले में और तरह से बिहेव करते हैं लेकिन लोगों के सामने और तरह से बिहेव करते हैं. बेसिकली सोसाइटी के, हमारे माशरे के जो मरवजा असूल हैं, हमें उसके हिसाब से, उसके हिसाब किताब से चलना होता है. तो उसमें ज़ाहिर है वक्ता फ़वक्ता हम अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी ज़ात में, अपनी चीज़ों में चेंजेस करते रहते हैं, विच इज़ गुड आई थिंक.

वेलकम वेलकम वेलकम बैक, खुश आमदीद जी आन सत बिस्मिल्लाह पखैर अगले जन्ना प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस एफएम 101 लाहौर के टाइव स्टूडियो से। आप सुन रहे हैं रिहा अल्ताफ को अपने प्रोग्राम शाम किनारे में। ज़बर से ट्रैक सुन रहे थे जनाब और ट्रैक सुन के आ चुके हैं वापस। और मैंने आपसे पूछा है कि क्या आप लोगों के सामने मुख्तलिफ और अकेले में मुख्तलिफ होते हैं। और मेरी ऑफ एयर कॉल पे बात हो रही थी तारिक साहब से। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आप प्रोग्राम सुन रहे थे और आपने कॉल की और उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। मैंने वैसे उन्हें कहा कि आप, मैं चाहूँगी कि आप ये बात ऑन एयर आकर कहें। अच्छा, अगर मैं बात करूँ ना कि हम लोगों के सामने मुख्तलिफ होते हैं और अकेले में मुख्तलिफ होते हैं, तो इनहेरेंट एक होता ना कि साइकोलॉजिकल आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इंसान अकेले में और तरह का बिहेव कर रहा होता है, लोगों के सामने और तरह का बिहेव कर रहा होता है। और इसमें कोई इतनी बुरी बात नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हम, हमारे जो माशरे के जितने असूल हैं, चीज़ें हैं, हम इस दुनिया में रहते हैं और लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, तो ज़रूरत के तहत हमें जिस तरह से ज़रूरत पेश आती है कि हमें किस तरह से बिहेव करना चाहिए, तो हम उस तरह से बिहेव करते हैं। और बेसिकली इसको हम इस तरह भी देख सकते हैं ना कि जैसे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेस होती हैं, वो स्टेज के ऊपर परफॉर्म कर रही होती हैं और बैक स्टेज पे वो जो परफॉर्मेंस होती है उनकी, वो नहीं होती है, वो जो ओरिजिनल होती हैं, रियल होती हैं, वो होती हैं। तो अगर हम फ्रंट स्टेज की बात करें कि हम जब लोगों में हैं, हम जब लोगों के साथ बात कर रहे हैं, हम अपने काम काज कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, अपनी नौकरियों पे हैं, हम जो भी कुछ करते हैं वो अगर हम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं, हर इंसान ये चाहता है कि उसके बारे में अच्छी राय रखी जाए, उसे अच्छा समझा जाए, उसके बारे में अच्छा ख्याल किया जाए। तो इसलिए हम एक अच्छी सी महजब सी मुस्कराहट, अच्छा इखलाक है ना और तहजीब का मुजाहरा करते हैं, चाहे अंदर से हम ऐसे ना हो। तो कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि हम उन असूलों में फिट बैठ सकें, उन असूलों के, अच्छा फिट बैठना कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग बॉदर करते हैं और कुछ लोग बॉदर नहीं करते हैं। अच्छा, ये भी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको कुछ चीज़ें जो है ना नहीं भी पता चलती। आप हर चीज़ अगर फील कर लेते हैं ना, तो फिर ज़िंदगी वबाल जान हो जाती है। जब अगर कहीं आपको ये लगे ना कि आप मिसफिट फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन में आप मिसफिट हैं और आपको ये पता चल जाए, भाई बस वहाँ तो कयामत है, तबाही है। और अगर आपके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, तो वहाँ जितने भी मौजूद लोग हैं ना, उनको बड़े आराम से पता चल जाएगा कि जनाब ये जो बंदा है या ये जो बंदी है ना, ये ऑकवर्ड फील कर रही है या सिचुएशन में या इन हालात में मिसफिट फील कर रही है या मिसफिट फील कर रहा है। और जो जिनको पता नहीं चलता है उनका तो वो कहते हैं ना कि नहीं पता, बस ठीक है, मज़े हैं, इंजॉय है, चिल है। और बैक स्टेज पर यह है कि जब हम उस सिचुएशन से निकलते हैं, हम अपने अपने घरों में आते हैं, जब हम अकेले होते हैं, ख़ुद के साथ होते हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो इंटायरली डिफरेंट होता है। आप कह लीजिए कि जो स्टेज है ना, उसका पर्दा गिर गया है, जहाँ हमें कोई देख नहीं रहा होता है, हम थक जाते हैं तो हम सो जाते हैं, नहीं सोते हैं तो हम, मतलब कैसे बैठे होते हैं ना, मतलब हमें दुनिया का, इर्द गिर्द का कोई अता पता नहीं होता है। वो बातें हम बड़े इजीली सोच सकते हैं जो लोगों के सामने हम सोच नहीं सकते या बोल नहीं सकते हैं। और कुछ फीलिंग्स इंसान के अंदर इस तरह की होती हैं जो हम चाहते हैं कि कोई हमें उसमें ना देखे। क्यों? क्योंकि लोग जज करते हैं ना कि अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आपको रोने को दिल कर रहा है किसी भी सिचुएशन की वजह से, किसी इंसान की वजह से आप हर्ट हुए हैं और आप रोना चाहते हैं, लेकिन आपके कहीं माइंड में ये चीज़ भी है कि अगर मैं लोगों के सामने रोई या मैं लोगों के सामने रोया तो लोग ये समझेंगे कि कितनी कमज़ोर है या कितना कमज़ोर आदमी है ये। तो हम क्या करते हैं कि हम कहीं ना कहीं कोई कोना, कोई अकेलापन का कोई गोशा हम ढूंढते हैं कि हम वहाँ बैठ के रो सकें, हम अपना जो दिल का गम है उसको थोड़ा हल्का कर सकें। क्योंकि हमारा दिल जो चाह रहा होता है ना, अगर हम वो करते रहें ना, अगर हम वो करना चाहें और कर भी गुजरें, तो फिर बड़ी तबाही हो जाती है ना कि तुहाडा दिल कर रहा है कि किसी ने चुक के तुसी वट्टा मारो हैं, पर फिर देखें ना उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए अच्छा है कि कभी कभी गोशे नशीन हो जाना चाहिए ऐसी सिचुएशन में।

हम आपकी मेरी बातों का सिलसिला चलता रहेगा इसी तरह से ठीक 7 बजे तक। और मैं ज़बरदस्त ट्रैक आप लोगों के लिए प्ले करने जा रही हूँ। ट्रैक के बाद हम आएंगे वापस और क्या करेंगे, आपके शामिल करेंगे मैसेजेस। मैसेजेस शामिल करने के साथ साथ ऑफर कॉल्स हमें आ रही हैं जनाब, उन कॉल्स का भी तذکرہ करना बहुत ज़रूरी है। और कॉल्स के साथ साथ जनाब आपके लिए कमर्शियल का डोज भी है मेरे पास, तो मेरे ख्याल से पहले मैं वो दे देती हूँ और उसके बाद हम सुनेंगे एक ज़बरदस्त सा ट्रैक। ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर।

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: Now you're tuned into
1: FM 101.
2: This is FM 101.
3: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

वेलकम बैक जनाब, खुश आमदीद प्रोग्राम में आ चुके हैं वापस और सुन रहे थे आप बड़े ज़बरदस्त सा ट्रैक। और अच्छा, आप अपबीट सा ट्रैक सुनते हैं ना, साथ ही आपका जो मूड है वो भी अपलिफ्ट हो जाता है। जी जनाब, बिला ताखीर हम प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं आपके मैसेजेस और मैं कुछ पढ़ लूँ ताकि मेरी बचत हो जाए जी जनाब हमारे साथ मौजूद हैं जी रमज़ान गुजर साहब, बहुत शुक्रिया रमज़ान साहब, आपने मैसेजेस किया, प्रोग्राम को सुन रहे हैं। कहते हैं जी आदाब अर्ज़ करते हैं, डॉक्टर साहब आपकी सेहत तबीयत ठीक है और खुश आमदीद भी कहते हैं। वैसे डॉक्टर साहब आप किस मुल्क में शो ऑफ करके 3 मंथ बाद बहुत सी दुआओं के साथ सुपरस्टार डॉक्टर रेहा अल्ताफ साहिबा को रेडियो पाकिस्तान हिट एफएम 101 पे दिल से 7 करोड़ बारी सत बिस्मिल्लाह। जी जी बहुत शुक्रिया, तो अनु भी जी अनु जी बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और शिकवा शिकायत बजा है जनाब। और आप ये भी पूछ रहे, अच्छा मैं आपको बताती चलूँ, मेरी ना थोड़ी सी याददाश्त बड़ी कमज़ोर है कहते हैं आपको वैसे याद है कि आपका शो होता है वैसे मुझे याद आ गया था, देखिए मैं आ भी गई हूँ। हमदुल्ला मलाखेल हैं जनाब हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब, वालेकुम सलाम, और मैं हूँ रेहा अल्ताफ हमदुल्ला और जान के अच्छा लगा कि हमदुल्ला आपकी सवारी आजकल लाहौर में ही है, आप क्वेटा नहीं है। मदनी महमूद हमारे साथ मौजूद हैं जनाब, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग जनाब और वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। नज़ीर खोसो हमारे साथ मौजूद हैं सोबतपुर बलूचिस्तान से, हमें सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया नज़ीर खोसो, आप बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं। इस्लाम गुजर हैं हमारे साथ, सलाम रहा आपी, पहली दफ़ा आपको सुन रहा हूँ, आई एम इंटर्नी ऑफ रेडियो पाकिस्तान लाहौर, वाह जी वाह, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया इस्लाम, आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं, खुश आमदीद कहते हैं आपको रेडियो पाकिस्तान एफएम 101 की फैमिली में। और सुनिए सुनिए, गौर से सुनिए, हो सकता है कल को हम भी आपको सुने

सुहाना खान भक्कर से हमारे साथ मौजूद हैं जी, और बहुत शुक्रिया आप हमें भक्कर से सुन रही हैं। और भक्कर से हमारे और भी कुछ लिसनर्स हैं जो अभी तक एब्सेंट हैं, अभी बहुत टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी प्रेजेंट लगवाएं।

0: They sucked.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: This is FM 101.

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

खूबसूरत है, दिल करता है कि बंदा उसको ना स्क्रीन से निकाल ले। तो जनाब न्यूज़ कुछ यूं है कि एक नई किस्म की ब्रांड न्यू बिल्ली लॉन्च हुई है और इसकी कहानी कुछ यूं है जनाब कि ये टाइगर स्पीशी है, टाइगर कैट है, और ये पहली बार कहीं 1923 में कहीं नज़र आई थी और उसके बाद अब 2026 में यानी 1.4 मिलियन ईयर्स अगो हुआ कुछ यूँ कि ये बिल्ली जैसे स्ट्रे कैट्स होती ना ऐसे गली में चलती फिरती इस तरह से किसी एक बंदे को नज़र आई और बड़ी ये सुना है पढ़ने में आया है कि ये आम बिल्लियों से कद में स्टेचर में ज़रा छोटी है, तो वो उस बिल्ली को ना रेस्क्यू करके घर ले आया और घर ला के उसने जैसे हम बिल्लियों को पालते हैं खाना वाना खिलाना, वो जो भी खाता था नूडल्स खाए जो भी खाया उसको खिलाया, बट ये है कि उसका जो बिहेवियर था बिल्ली का वो बाकी कैट्स से थोड़ा सा डिफरेंट था। कोई 6 महीने या साल उसने उसे अपने पास रखा, उसको टेम करने की ट्रेन करने की कोशिश की, लेकिन उसका जो थोड़े से कुछ ना वाइल्ड बिहेवियर होता है वो आना जब स्टार्ट हुआ तो उसने उसे वेलफेयर जो सोसाइटीज़ हैं इन एनिमल्स की उनके हवाले कर दिया। और जब उन्होंने उसका डीएनए एनालिसिस किया तो पता चला जनाब कि ये तो टाइगर कैट है जो कि बहुत एक होता है ना नायाब स्पीशी है और बहुत सालों पहले कहीं एक बार कहीं नज़र आई और उसके बाद अब ये दुनिया में आई है, दुनिया में नज़र आई है। और इसका जो नाम उन्होंने रखा वो रखा है ल्यूपिडस टेलिकाय। मैं ये न्यूज़ सुन के और इस बिल्ली को देख के ना मेरा बड़ा दिल किया कि मेरे पास इस तरह की होनी चाहिए, जब इंसान है ना दिल कर ही पड़ता होता है। हालांकि बड़ी सख्ती से ममानियत है हमारे घर में कैट या डॉग या कोई भी किसी भी तरह का पेट रखने पे, मतलब पेट अगर घर में आ गया ना तो फिर हम घर से बोरिया बिस्तर समेत बाहर। लेकिन ये इतनी कोई क्यूट थी, इतनी कोई क्यूट है, मतलब छोटी सी टाइगर होते ना बिल्कुल छोटू सी है और बड़ी अच्छी लगती है। अच्छा शौक का भी वैसे कहते हैं कोई मोल नहीं होता, चाहे वो बदला आपकी जान ही क्यों ना हो। मैंने देखा है कि लोग, ये तो चलिए मैं बिल्ली की बात कर रही हूँ या डॉग्स की बात कर रही हूँ, ठीक है हम इनको टेम करते हैं तो ये मान जाते हैं बात कि अपनी वो जो वाइल्ड इनकी हरकत है वो छोड़ जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने टाइगर और पता नहीं शेर और एक तो मैं कहीं देखी थी कुछ सांप किसी ने पेट रखा हुआ है और अपने बेड साइड वो जो साइड टेबल होती है ना उसमें बॉटल में डाल के रखा हुआ। मैंने कहा हैं, मतलब इतनी बहादुरी। आप जो मर्जी कर लें, सांप तो सांप है ना, अगर बोतल से बाहर आके उसने आपको चा कर लिया तो फिर आप उसकी चाह का जवाब कैसे देंगे? पता नहीं आप देने के लिए होंगे भी कि नहीं, उन्हें तो दस के थोड़ी ना चाह करनी है। तो जनाब पेट्स रखें, जरूर रखें, लेकिन ऐसा कोई पेट रखें जिसमें आपकी सेफ्टी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप भी जिंदा सलामत रहेंगे तो अपने जो पेट है उसका ख्याल रखेंगे। जी जनाब प्रोग्राम को आप सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, और अपने ही प्रोग्राम सुनने का जो एहसास है वो हमें कॉल्स के थ्रू मैसेजेस के थ्रू दिलवा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम प्रोग्राम करके, आप लोगों से बात करके, आपके मैसेजेस शामिल करके। अमृता चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, जनाब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, बहुत शुक्रिया जनाब, वालेकुम सलाम, हम भी आपको खुश आमदीद कहते हैं। कहते हैं जी शमसी रेडियो लिसनर्स क्लब लाहौर की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं हम आपको, खूबसूरत शो करने पर FM 101 रेडियो लाहौर की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं जो हमारे लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम तरतीब देते हैं, और FM 101 के सब लिसनर्स का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, आप हमें सुन रहे हैं। और एक जी लंबी लिस्ट है शमसी रेडियो लिस्टर्स क्लब लाहौर पाकिस्तान, शमसी साहब, अमृता चौधरी, एहसन खान, साहू वीर, एम एजाज अली, फ़ायज़ा नसीर, सज्जाद अली लाडला, वारिस गुजर, सनी चिन्योट, फ़ायज़ा नसीर, रुबीना जट्टी, जूनी, कंवल नाज, फरी आपी और अमानत गार्ड, अब्दुल हमीद बर्फी वाले, आहा क्या बात है और जाहिद हुसैन सियालकोट रेडियो लिसनर्स क्लब,

बहुत शुक्रिया जनाब, आपका सलाम, आपका प्यार तमाम दोस्तों तक पहुंच गया है। और ये बर्फ़ी वाले, और ये बड़ी गलत बात है, पहले तो मैं सुन रही थी ये जो कमर्शियल है ना सूफी वाला, खाने पीने की बातें हो रही हैं, ऊपर से अब ये मीठे की बातें कर रहे हैं, बड़ी गलत बात, नॉट फेयर।

कमल नाज ने हमें ज्वाइन किया है जनाब, बहुत शुक्रिया कमल, आप हमें सुन रही हैं, आपको वॉइस अच्छी लग रही है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कहती हैं जी मुख्तसर और पुरसर, मतलब ये टॉपिक है, और कहती हैं सबसे मज़बूत ताल्लुक बंदे और रब्बे करीम का होता है, इसके बाद वालदैन का अपनी औलाद से, इसके बाद के सारे ताल्लुक खरबूजे की तरह होते हैं, मीठा निकले तो फल समझ कर खा लें, फीका निकले तो दवा समझ कर पी लें क्या बात है, हकीकत है लेकिन थोड़ी कड़वी है, वो कहते हैं ना सच थोड़ा कड़वा लगता है, लेकिन जनाब यही दुनिया है, यही हकीकत है और ऐसा ही है बस।

शामिल करने जा रही हूँ जनाब एक ज़बरदस्त सा ट्रैक, और ट्रैक के बाद हम जाएंगे इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हम न्यूज़ ब्रेक है हमारे पास, न्यूज़ सुनेंगे, कुछ खैर खबर लेंगे जनाब दुनिया की और वापस आएंगे। और उसके बाद आपको पता है कि क्या होगा प्रोग्राम में, क्योंकि फर्स्ट हाफ हमारा ख़त्म हो जाएगा और सेकेंड हाफ में यस ट्रैक शामिल करने जा रही हूँ, बड़ा ज़बरदस्त सा मुझे क्या हो गया है ज़बरदस्त सा ट्रैक सुनते हैं जनाब और मिलते हैं ब्रेक के उस पार।

0: रीज़न आप ट्रैक सुन रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त सा छलड़े छलड़े बाल, और मेरे ख्याल से ये वो जो होते हैं ना थोड़े जंगल जैसे बाल, जंगल थोड़े करली करली बाल, मेरे ख्याल से इसको कहते हैं, ज़बरदस्त ट्रैक है। जनाब कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: खुश आमदीद एहसन खान
1: जी। अच्छा पहचान भी कर लिए।
0: बस देख लें।
1: अच्छा मैं बहुत चंगा लगे
0: पहचानना।
1: हाँ
0: चलें जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया।
1: अच्छा छलड़े छलड़े वाल बहुत अच्छा सॉन्ग है।
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छा सॉन्ग है।
1: वैसे मुझे 99% लगता है कि ये हमारा की रिक्वेस्ट।
0: तुसी बड़े चलाक हो जी, बहुत शुक्रिया, ऐसा ही है।
1: नहीं नहीं किसे मौके ते अगर संदीप शान साहब टक्कर गए थे, ऐसे उन्हें रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारा वास्ते वो कुछ स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करें।
0: बात तो है,
1: फैन
0: फैन मोमेंट बन जाए। ठीक हो गया जनाब। और एहसन खान सब खैरियत है, प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
1: अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका शो सुन रहे हैं,
0: बहुत शुक्रिया।
1: मैं सोच रहा था कि मैं किस किस मौके पे अपने आप को बदलता हूँ।
0: बिल्कुल बताइए बताइए, पता लगना चाहिए आज हमें।
1: मैंने सोचा कि जब कहीं ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, बाहर के लोग जो होते हैं जो बिल्कुल नहीं जानते, उस जगह पे मैं अपने आप को थोड़ा ना ऐसे ही सीरियस होके बैठता हूँ और ज्यादा फ्री फ्री नहीं होते, बिल्कुल आराम से।
0: क्यों उन्होंने तो पैसे मांगने ने?
1: बस जी बंदा यही सोचते नवे लोग के पता नहीं साढ़े बारे की कहेंगे। और बाकी जो घर के और जो रिश्तेदारों वगैरह में होते हैं इलाके में, उस जगह पे मैं कभी इस तरह नहीं देख सकती है।
0: उनको हम उनके सामने कर भी नहीं सकते, घर वालों को पता होता है।
1: घर के अलावा भी काफी कहेंगे। और बाकी जो घर के और जो रिश्तेदारों वगैरह में होते हैं इलाके में, उस जगह पे मैं कभी इस तरह नहीं देख सकती है।
0: उनको हम उनके सामने

0: ठीक हो गया, वाह, ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया एहसन खान
1: भाई, आपका शो सुन रहे हैं
0: जी जी
1: और लाइन में लगे हुए हैं, काश एक एहसन खान के बाद मेरी कॉल मिल जाए।
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह जनाब, बहुत शुक्रिया एहसन खान, आपने
1: आपको इतने अच्छे बाद आई हैं तो आपको एक दफा वेलकम,
0: बहुत शुक्रिया।
1: आप फिर कितनी छुट्टी पे जा रही
0: हैं? बता दूंगी
1: सर, पूछ लूं मैं थोड़ा सा,
0: नहीं सर
1: पेश की बता दे बस,
0: ठीक है ठीक जी, ठीक है, नहीं अभी नहीं, अभी पेश की ये सवाल है, बता दूंगी इंशाल्लाह, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया एहसन, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, हमारे साथ मौजूद थे एहसन खान, और एहसन कितनी छुट्टी, मतलब खुदा खुदा करो अल्लाह अल्लाह करके तो मैं आई हूँ, और साथ ही पूछने लगे हो कितनी छुट्टी। कॉलर है हमारे साथ मौजूद, देखते हैं जनाब कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वेलकम, खुश आमदीद
0: जी। वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, आप कैसी हैं? और बड़ी लंबी उम्र पाई है आपने जनाब, अभी अभी आप ही का जिक्र हो रहा था।
2: अच्छा, पता नहीं, मैं नमाज पढ़ी थी एहसन भाई की कॉल के दौरान, मैंने एंड पे जब वो अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं ना, मैंने टोटी कान को लगाई है, साथ ही मैंने
0: साथ अल्लाह हाफिज़ हो गई,
2: साथ ही मौके कर दिया, तो मेरी कॉल मिल गई, तो थैंक यू जिन्होंने याद किया। और आपकी और जैनब आपी की ना परमानेंट एक आदत है कि ऑफियर कॉल नहीं उठानी,
0: साढ़े रोले बड़े ने थे ऑफियर
2: कह रहे थे ना कि बट्टा मारना है वो बट्टे मारने वाली कोई बात कर रहे थे,
0: हाँ जी हाँ जी,
2: तो अगर हम किसी को बट्टा मारेंगे आगे से आस पास कोई नहीं हो तो फिर एक ही जात है उससे बात करती हूँ, उससे मुखातिब होती हूँ, अगर कोई है पास तो फिर मेरा दोस्त है रेडियो, बस उसी, मैं बहुत कम हूँ, सिर्फ फोन की हद तक बात करती हूँ, वैसे अगर मेरे कोई आस पास जितने मर्जी लोग बैठे हैं ना, मैंने इतनी बात नहीं करनी उनसे।
0: तो मतलब हमारा आप लोगों के सामने मुख्तलिफ होती हैं और अकेले में मुख्तलिफ होती हैं?
2: नहीं, मैं सेम ही हूँ,
0: जैसी हो वैसी ही हो।
2: हाँ,
0: तो ये जो बट्टे वाली आपने बात की, अगर मिसाल के तौर पे आपका दिल चाहे कि किसी को आप कुछ सुना दें, कुछ दो चार खरी खरी,
2: तो
0: और
2: मैं सुना देती हूँ, मैं कोई नहीं डरती,
0: ओके डेंजरस गर्ल,
2: हाँ ना, मैं नहीं दी सकती, वो चाहे, वो कहते हैं ना गलत बात बर्दाश्त नहीं होती, उससे गलत लोग बर्दाश्त नहीं होते, गलत बात तो बर्दाश्त करना पड़ती है।
0: ओके ओके ओके, डर गई मैं, थैंक यू हमारा, बहुत शुक्रिया,
2: आपसे डरती हूँ,
0: थैंक यू हमारा साथ ही, बहुत शुक्रिया
2: नहीं इतनी भी मैं बुरी नहीं हूँ, लेकिन बुरे के साथ बुरी हूँ, अच्छे के साथ अच्छी।
0: चल जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, और ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको इस चीज की रियलाइजेशन है।
2: हाँ जी, और बहुत जबरदस्त शो, बहुत कमाल का शो, बहुत अच्छे गाने प्ले कर रही हैं आप,
0: बहुत शुक्रिया,
2: और जबरदस्त प्ले लिस्ट भी है, और आपकी जो अंदाज नहीं बोली आप वैसे अपना, दो माह बाद आए, तीन माह बाद आए, तो रमजान अनवर गुज्जर हो गया स्कूल
0: ठीक हो गया हमारा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो, सलामत रहो जी जनाब, बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, सलामत रहिए। और ऐसा कैसे हो सकता है जनाब, हम भी बस ऐसे ही हैं कि जैसे हैं वैसे ही हैं, तो अंदाज़ हमारा कैसे बदल सकता है। और वो कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ा याद किया जाता है, फिर सामने आ जाए तो भूल जाते हैं, और मुझे मेरी मुझे याद रहती हैं चीज़ें। अभी ऐसे ने कहा कि मेरा नाम आपको याद है, तो जनाब बड़ा ही खूबसूरत सा मुझे शेर याद आया इस पर, क्या कयामत है कि सौ बार के सोचे हुए लोग, क्या कयामत है कि सौ बार के सोचे हुए लोग सामने आए तो ताखीर से पहचाने गए। तो जनाब बिल्कुल ऐसी बात नहीं है कि मतलब आप आए और मैं यू नो एक गैप के बाद आऊँ और मैं पहचानूँ ना, गल एंजी नहीं जनाब। अस्सलाम वालेकुम।
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम, रेहा बेटा मोहम्मद तारिक अस्कर,
0: खुश आमदी तारिक साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
3: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं हैं आप सब के लिए और करम है।

0: For home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

जी जनाब, मेरे पास कमर्शियल मौजूद था और मैंने उसे प्ले किया है, क्योंकि कमर्शियल का डोज बड़ा ज़रूरी है मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। और जनाब, सॉन्ग बड़ा ज़बरदस्त मेरे पास लाइन अप मैंने किया है, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल लेते हैं जनाब, देखते हैं किसने हमें ज्वाइन किया है और क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, जी जनाब, ट्रैक शामिल करती हूँ आप लोगों के लिए और ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं। जनाब, आपने कहीं नहीं जाना है, स्टे ट्यून रेडियो पाकिस्तान FM 101 लाहौर।

0: वाह, क्या ज़बरदस्त ट्रैक है. और सुन रहे हैं जनाब हम एक साथ ज़बरदस्त ज़बरदस्त, ये बड़ा एक मज़े का फ्यूजन है पाकिस्तानी और टर्किश जो म्यूज़िक है उसका. कॉलर है हमारे साथ, मैं देख रही हूँ कि मुसलसल बीप जो है ना वो हो रही है, तो मैंने कहा कॉल ले लेती हूँ. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम
0: जी, खुश आमदीद कहते हैं आपको. कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: वसीम बात कर रहा हूँ मैम, आपका बात है.
0: जी वसीम साहब, खुश आमदीद.
1: और मैम सब क्या रहा है, तकलीफ है?
0: जी अल्लाह का बिल्कुल एहसान. आप सुनाइए, प्रोग्राम सुन रहे हैं, क्या कहिएगा प्रोग्राम के हवाले से?
1: और मैम सब, मैं तो पहले सुनता रहा हूँ, लेकिन आज अभी आया हूँ क्योंकि मैं ड्यूटी पे आया हूँ, तो बस इस वजह से रेड बांध किया, तो आपका प्रोग्राम लगा हुआ था. माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, और डेली आपका प्रोग्राम सुनते हैं.
0: अच्छा जी, चलिए बहुत शुक्रिया. मैंने आज सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दे दीजिए फिर मुझे, कि आप लोगों के सामने मुख्तलिफ होते हैं और अकेले में मुख्तलिफ होते हैं या सेम होते हैं?
1: मैम साहब, लोगों के सामने तो बंदा मुखलिस होना चाहिए, और लोगों को भी पता चलना चाहिए कि वाकई बंदा ठीक है, ओके है. जी, तो अकेले में तो बंदा होता ही होता है ना.
0: हाँ हाँ बिल्कुल
1: जी,
0: सही सही. चले साहब, तो गो हैं, बड़ी अच्छी बात.
1: सुनने वाले सबको सलाम मैम सर, आपको भी देर फला सलाम है.
0: बहुत शुक्रिया जी वसीम साहब, बहुत शुक्रिया.
1: ओके मैम, अल्लाह
0: अल्लाह हाफिज़.

0: ऐसा भी होता है जनाब कि कुछ लोग आके कहते हैं कि रोज़ सुनते हैं, जबकि अच्छा मुझे रोज़ सुनते हैं, मैंने तो आप नहीं पता मैंने तो खुद रोज़ खुद को नहीं सुना है जनाब, लेकिन बहुत शुक्रिया जनाब आप प्रोग्राम में शामिल हुए। देखते हैं जी मेरे साथ कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम सलाम, खुशामदीद
0: जी। थैंक यू सो मच, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। रजा चौधरी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं?
1: तो आज मुझे इतना वट था, वट क्या मतलब, वट क्या होता है?
0: वट बहुत सारे, वट बहुत सारे होते हैं, माथे पे भी वट होता है, जमीन में
1: हर कालों के हर कालों के बाद मेरी काल हो जाती है, कोई जादू टूना कर दिया किसी मेरे ऊपर। तो आप आए, अच्छा लगा, वेलकम टू द शो।
0: बहुत अच्छे
1: बात आए, लेकिन आपने मुझे ना पहचान लिया बहुत जल्दी, हम आपको पहचान लेते हैं
0: जी बिल्कुल।
1: तो एक मुझे बात समझ नहीं आई, महाराणी अभी कहा कि मैं बुरे के बंदे साथ बुरी बन जाती है, लेकिन नहीं, मैं बुरे के साथ अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसको भी कोशिश करें कि अच्छा बनने की बंदा कोशिश करे, ट्राई करे। बुरे का बुरा तो पहले बुरा है, हम क्यों बुरे बने?
0: सही,
1: हम अच्छे हैं तो हम बुरे को अच्छा करने के लिए कोशिश करें।
0: वो ऐसा होता है ना, कुछ लोग वो, अब एक जुमला है, पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, कहते ना लातों के भूत, लातों के भूत बातों से नहीं मानते,
1: जुमले के पीछे जाएंगे आप ट्राची पत्ती के पीछे लग जाएंगे, वो बुरे के बुरे में और आप में कोई फर्क नहीं।
0: सही, ठीक हो गया जनाब।
1: तो मैं जैसे जैसे हूँ वैसा नहीं हूँ। तो वो मेरा भाई है छोटा, वो कहता है यार ये जो बंदा है ना इसका पता नहीं चलता, ये एक मिनट में कुछ, दूसरे मिनट में कुछ,
0: अच्छा
1: लेकिन बाहर में कुछ और हूँ, घर में कुछ और हूँ। लेकिन वो घर वाले कहते हैं तू बड़ा संजीदा है, लेकिन मैं इतना संजीदा भी हूँ और नहीं भी हूँ।
0: सही,
1: जैसे पार्टी मुझे मिले, जैसे दोस्त मिले, वहाँ
0: जैसा देश वैसा बेस, वो कहते हैं जैसा आपको माहौल मिले आप उस तरह का रंग ढंग
1: अपना पड़ता है, होना पड़ता है। लेकिन बुरे के साथ मैं अच्छा करने की कोशिश करता हूँ कि बुरे को बुराई से निकालूं, वो जो काम करते हैं उसे हटाए। तो मेरी तरफ से आसमान भाई का फ्लोट है 21 तोपों की, कि वो मुझे बार बार कहता रहा तेरी कार लग जाएगी, मैं कहता नहीं कार नहीं लगनी, बड़े बड़े कार वाले कार में मेरी नहीं लग रही, लेकिन मुझे खुशी है कि आज 6 दिन बाद मेरी कार लगी।
0: बहुत बहुत अच्छा हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया।
1: आपको एक दफा फिर अल्लाह पाक आपको खुश रखे, पूरी टीम को हमेशा सलामत रखे और मजीद तरक्कियां दे। अगर मेरी किसी को बात अच्छी लगी तो मेरा कोई कमाल नहीं, अगर बुरी लगी है तो हार करके तालियां बजाएं,
0: तो तुम्हारा ही कमाल है सारा। बहुत शुक्रिया रजा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा रजा की बात मुझे भी बड़ी अच्छी लगी है कि बुरे के साथ आप बुरे ना हो, आप अपनी जो वैल्यूज हैं आप उसको क्यों छोड़े। लेकिन बाजो का ऐसा होता है कि कुछ लोग ना, मतलब मैं हमारा की बात को भी सेकंड करती हूँ, कुछ लोग होते हैं ताड़ा पीछा ही नहीं छोड़ देना, वो उनको अपना उनको अपना असल दिखाना ही पड़ता है कि ठहर जाओ मैं बताती हूँ आपको। कुछ लोग आपका अच्छा देख के ना अच्छे बन जाते हैं या आपके साथ बुरा करना छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कभी समझ ही नहीं आती कि आप उनको समझते हैं कि हम बड़े तेज, हम बड़े चलाक हैं, कि अगला बंदा हमारे साथ नाइस है और हम उनके साथ इस तरह से इविल प्रिटेंड कर रहे हैं या बिहेव कर रहे हैं। एनी वेज जनाब, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: सलाम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी। रमजान गुजर साहब,
2: बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। अर्ज किया है बदला जो रंग उसने हैरत हुई मुझे, बदला जो रंग उसने हैरत हुई मुझे, गिरगट को मात दे गई फितरत जनाब की। बहुत सी दुआओं के साथ आवाज़े पाकिस्तान, रेडियो पाकिस्तान, हिट एफएम 101 की खूबसूरत और औसम बलोसम समातों को रमजान अनवर गुजर आदाब तफीमत गुड इवनिंग वन हो वन कहता है। फन और इंफॉर्मेशन के सब रंग मकबूल तरीन आरजे, किसी तारफ की मोहताज नहीं डॉक्टर रेहा अल्ताफ साहबा के संग खुश आमदीद कहता हूँ। लाहौर और उसके मजापात में ऑनियर काल का वक्त हुआ चलता है, जल्दी जल्दी आए और सभी पूछ लें आप ही आके कि डॉक्टर रेहा अल्ताफ इतनी रेस्ट पर क्यों जाती हैं। खुश आमदीद कहता हूँ, कैसे मिजाज?
0: बहुत शुक्रिया अल्लाह का एहसान, मेरे मिजाज बिल्कुल बखैर है जनाब, आप बताइए आपके मिजाज कैसे हैं, आप खैरियत से हैं?
2: अलहमदुल्ला डॉक्टर साहब आपकी दुआ से, आप मेरी मेंटोर हैं, आपसे सीखते हैं, अल्लाह पाक आपके इल्म में अमल में जिंदगी में बरकत अता फरमाए। आप कुछ लोग ना दुआ में बसते हैं, उनमें से आपका एक नाम है अल्लाह पाक, आप जिधर भी रहे जिस जब जितना भी टाइम अता करे रेडियो पाकिस्तान स्टेफन 101 को, मैं आपका इंतजार करूंगा, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा, मैं आपका रावा च नैन बिछावा, मैं आपका दिल से इंतजार करूंगा, आप आएंगी मैं आपको कभी भी नहीं भूलूंगा।
0: बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, बहुत शुक्रिया रमजान साहब। ए तुसी इंज करो कि आ जाओ वन वन से प्रोग्राम करो, मेरे लगते मैं चुप ही हो जावा।
2: इस काबल नहीं है वो वजह है ना कि आप आई बहुत दिनों के बाद।
0: जी बिल्कुल ऐसे ही, बहुत शुक्रिया।
2: और अल्लाह करे, खुदा करे कि रहे यूं ही सलामत, खुदा करे कि रहे यूं ही सलामत, एक तू और दूसरा मुस्कुराना तेरा। और दूसरा आपने एक एक गाना लगाना है, शैल छबीला लगता है तेको फुल्ला आला चोला, शादी खुशी की आवाज में है, ये डेडिकेशन आपको है और इसके जो आपको डेडिकेशन कर रहे हैं उनके नाम है अली रजा सुपरस्टार आरजे और आरजे क्या नाम है उसका पंजाबी शो की बेस्ट आरजे
0: रमजान मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे बताएं। ठीक है मैं सॉन्ग प्ले कर देती हूँ, मुझे टॉपिक के हवाले से बताइए। आप प्रोग्राम सुन रहे थे तो आप लोगों के सामने और होते हैं या जैसे हैं वैसे ही होते हैं?
2: मैं लोगों के सामने और होता हूँ, उसकी वजह ये है कि एक हम हमारे फैक्ट्री में तरीकी साहब है, वैसे तो मेरा दिल करता है उठ बिल्लिया उठे चलिए जिथे सारे अन्ने, ना कोई साड़ी जात पहचाने ना कोई सानू मन्ने, मेरी कोशिश होती है मैं चुप रहा खामोश रहा, लेकिन कृषि साहब की ये आदत होती है मैं कभी भी ना चुप रहा, मैं मजाक वो करते हैं तो फिर मैं जवाब देता हूँ, फिर ऐसा ही है, फिर हर बंदे के साथ अलग अलग वो होता है हमारा वास्ता, जो संजीदा हो उसके साथ संजीदा रहते हैं, जो मजाक करे उसके साथ मजाक करते हैं, जो अच्छी बात करे उसके साथ अच्छी बात करते हैं, जो फनी बात करे उसका फनी तरीके से जवाब देते हैं, फिर इसी तरह ही है ना दुनिया, जैसा देश वैसा भेद।
0: ठीक हो गया रमजान साहब, बहुत शुक्रिया।
2: टाइम कम मुकाबला सकते
0: हैं, ऐसे ही
2: अल्लाह आपको चौदह बाद रखे, मेरा गाना लाजमी लगाना है और डेडिकेशन ये आपको है, शहर छबीला लगता है तेकू फुला आला चोला, 100 साल विच एक जमदा है तीकू जिया डोला, अल्लाह हाफिज पाकिस्तान पाइंदाबाद।
0: बहुत शुक्रिया जनाब।

0: अच्छा, म्यूज़िक की भी क्या ही खूबसूरती है कि आपको लैंग्वेज, बाज़ों का ज़ाहिर ऐसा होता है कि हमें ज़ुबान समझ नहीं आती है जो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन म्यूज़िक आपको ऐसा कनेक्ट कर देता है इतनी खूबसूरती के साथ आपके इमोशंस को, कि आपको अगर वो लिरिक्स समझ नहीं भी आ रहे हैं तो भी आप उसे इंजॉय करते हैं। सिमिलरली ये वाला ट्रैक है जनाब, पश्तो सॉन्ग है, बड़ा ही खूबसूरत सा है, होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे। कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं जनाब कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम
1: जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? ठीक ठाक है जी आप?
0: जी अल्लाह का एहसान, बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? कौन सा, आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: तो आपने नहीं मुझे पहचाना, आप सबको पहचान, ये मुझे नहीं पहचानना, ये क्या बात?
0: मेरी दिमाग की बैटरी खत्म होने वाली है।
1: तो, चार्जर नहीं, साथ रखा हुआ
0: चार्जर। चार्जर वो क्या है ना, वो आजकल सोलर का जमाना है, तो बस सूरज ढल गया ना तो चार्जिंग बंद हो गई।
1: अच्छा चले, बहुत अच्छा, माशाल्लाह आपका शो है। तो मैं मोहम्मद शहजाद शाहबाग से बात कर रहा हूँ
0: जी। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमें ज्वाइन किया शाहबाग से। जी जनाब
1: जी, तो देखे जी, जो आदमी घर में होता है ना वो बाहर नहीं होता जी। तो अपना बदलना भी पड़ता है, कई जगह ऐसी होती है बदल के जाना पड़ता है, और जैसी गुफ्तगु हो गए ना
0: जी जी जी,
1: जैसी बात करनी पड़ती है, जो मीठी बातें होती है वो मीठा ही जवाब देना पड़ता है, जो सख्त बात हो जाए फिर सख्त जवाब देना पड़ेगा।
0: बिल्कुल,
1: यही मकसद होता है। और आप इतने भी मीठे बनेंगे, अगला जो है ना वो फिर चढ़ाई कर देगा, बुरी बात है, जो इसको डांट लेना चाहिए, रोक लेना चाहिए। तो जैसे घर में हम सादगी में रहते हैं ना, वो एक अलहदा बात है, लेकिन बाहर सादगी में नहीं रहा जाता, वो महफिल में जाना हो तो फिर उस तरह ही जाना पड़ता है।
0: बिल्कुल, महफिल के आदाब के हिसाब से जाना पड़ता है। ठीक
1: जी, बिल्कुल।
0: तो
1: माशाल्लाह, बहुत बहुत दुआएं आपके लिए,
0: बहुत शुक्रिया,
1: आपको मेरा सलाम, सब भारतीय को मेरा बहुत बहुत प्यारा प्यारा सलाम।
0: बहुत शुक्रिया जनाब, खुश रहिए, अल्लाह
1: हाफिज।
0: कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, दिमाग काम नहीं करता। मेरे ख्याल से आपकी मेरी बात भी बहुत कम हुई है कॉल पे, तो जनाब दिल आजारी ना हुई हो आपकी कि मैंने आपको पहचाना नहीं। देखते हैं जनाब कौन है कहाँ से हमारे साथ मौजूद कॉल पे। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कमल दास बात कर रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से।
0: जी वालेकुम सलाम कमल, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? और पंजाब यूनिवर्सिटी के नाम पे बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई एकदम से, सामने बहुत सारे मनाजिर आ गए पंजाब यूनिवर्सिटी के।
2: हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और फिर अच्छी बात है ना, मैंने आपको आपका माजी याद दिलवाया।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा खूबसूरत खूबसूरत टाइम।
2: हाँ जी,
0: जिसको हम आज भी होता है क्रेविंग होती है आपको कि उस वक्त में हम वापस चले जाएं, तो बड़े अच्छे बड़े साल गुजरे पंजाब यूनिवर्सिटी में, बड़े अच्छे गुजरे अल्हम्दुलिल्लाह।
2: अच्छा सही, अच्छी बात है
0: जी कमल,
2: मुझे बहुत खुशी हुई है आपके साथ बात करके, फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही है।
0: बहुत शुक्रिया,
2: बड़ा जबरदस्त शो है आपका, बहुत अच्छा प्यारा अंदाज है बोलने का।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कमल।
2: पर मैं टॉपिक पे यही कहूंगी कि कभी कभी इंसान को वक्त और हालात के मुताबिक खुद को ढालना पड़ता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम किसी की खुशी में जा रहे हैं तो हमारा अंदर से हम सैड हैं, बड़ा दिल नहीं है खुश होने को, तो जाहिर है हम किसी की खुशी में जा रहे हैं तो फिर हमें वहाँ पे अपने आप को खुद तो जाहिर करना पड़ेगा ना।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
2: तो
0: बिल्कुल,
2: हमें वहाँ माहौल के मुताबिक खुद को ढालना पड़ेगा। अगर हम किसी दुखी जगह पे जा रहे हैं और अंदर से हम बड़ा हैप्पी फील कर रहे हैं तो हम उस दुख के टाइम पे हमने अपने आप को उधर अपने आप को दुखी जाहिर करना है कि हम उसके दुख में शामिल हुए हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे,
2: वो पंजाबी में कहावत है ना कि अगर रोना नहीं आता तो रोन वाला मुंह
0: बना लो। बिल्कुल बिल्कुल।
2: हाँ जी, तो इसलिए इंसान को जरूरी नहीं है कि इंसान जैसा हो वो हर टाइम पे वैसा ही रहे, नहीं ऐसा नहीं होता। इंसान जो है ना वो वक्त लिहाज और माहौल के हिसाब से ना अपने आप को चेंज करता रहता है, और इंसान के अंदर जो है ना वो तब्दीलियाँ आती रहती
0: है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बहुत शुक्रिया।
2: मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को, जितने भी सुनने वाले हैं आपके FM 101 को, और आपको और तमाम लिसनर्स को और शक्ति ग्रुप वालों को बहुत बहुत सलाम और सेहत तंदुरुस्ती की दुआ। अल्लाह हाफिज़।
0: बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच कमल। अच्छा कमल, बात कर रही थी, बहुत बड़ी बजा बात की है आपने कि बाज़ औक़ात हमारा जो दिल होता है ना, बड़े हम नाराज़ तो नहीं, मतलब आप कह लीजिए कि सैड होते हैं, लेकिन अगर कोई खुश है, हमारे घर वाले खुश हैं, हमारे दोस्त अहबाब खुश हैं, तो हम अपनी जो उदासी है उसकी वजह से दूसरों को नाखुश नहीं करते हैं, उनके ऊपर नहीं थोप देते हैं अपनी उदासी, क्योंकि आपकी उदासी आपकी अपनी प्रॉब्लम है, आपकी वजह से हो सकती है। हम सिमिलरली हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन कुछ किसी ऐसे सिचुएशन में आ जाते हैं, हमारा अपना कोई बहुत दुखी होता है, तो हम उसकी दिलजोई में लग जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जो चेंज होता है, थोड़ी थोड़ी सी जो तब्दीली है आपके बिहेवियर की, इसको बेसिकली हम लोग इमोशनल रेगुलेशन कहते हैं, कि हम इसको अपने जज्बात को काबू में रखते हैं, अब रख सकते हैं या उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ है ये। इस तरह से अगर हम ना करें ना, तो आप तो रोज़ किसी न मतलब बंदे को रूटीन में, कभी ऑफिस में है ना, आप किसी रूटीन से आप तंग आ जाते हैं, किसी बंदे की बात से आपको गुस्सा, आप ऑफेंड हो जाते हैं, दिल करता है कि बंदा एक ला देवे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आपने दुनिया के अंदर रहना भी तो है ना, अगर आप इस मिजाज के साथ रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका किसी जगह पे रुकना, रहना, लोगों की ज़िंदगियों में है, या आपका वर्क प्लेस है, या कुछ भी है। तो जनाब इस, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि आप अकेले में कुछ और हैं, लोगों के सामने कुछ और हैं, तो इसको मुनाफ़त कहते हैं। मैं समझती हूँ कि मुनाफ़त नहीं, बड़ी अच्छी एक स्ट्रेटजी है, एक हिकमत अमली है, कि आप बेहतर चीज़ों को बेहतर रखने के लिए अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं सिचुएशन के हिसाब से, विच इज़ गुड। कॉलर हैं हमारे साथ मौजूद, देखते हैं कौन कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, लियाकत बात कर रहा हूं,
0: धन्यवाद जी। खुश आमदीद लियाकत साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
3: जबरदस्त प्रोग्राम,
0: बहुत शुक्रिया।
3: अभी अभी लगाया तो अच्छा लगा, आपकी बात सुनी तो अच्छा लगा, मैंने कहा चले मैं कॉल करने की कोशिश करता हूँ।
0: नहीं बहुत शुक्रिया, आपकी कोशिश कामयाब हो गई।
3: कामयाब हो गई ऐसे। अच्छा वो कहते हैं ना, आसानियाँ बांटे तो आसानियाँ मिलेंगी, ठीक है, और खुशियाँ वैसे भी जैसे इंसान होता है ना, किसी की खुशी में खुश हो ना, तो अल्लाह पास भी जो है ना वो नेमत देता है,
0: बेशक।
3: तो किसी के दुख में भी शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी है, ये खुशी और गमी ये ऐसे ही है, साथ साथ ही है जिंदगी के।
0: सही,
3: तो बस यूँ होता है कि बस अपना मूड अच्छा होना चाहिए, और अंदाज अच्छा होना चाहिए, और मिलने का तरीका परफेक्ट होना चाहिए, तो इंसान कामयाब है मेरे साथ।
0: सही लगता है। मुझे ये बताइए कि हमारा आज का जो सवाल है वो ये कि आप लोगों के सामने मुख्तलिफ और अकेले में मुख्तलिफ होते हैं, या सेम ही होते हैं, जैसे हैं बस वैसे ही होते हैं?
3: बात तो असल में मैं अपनी बात करूँ, मैं अकेले में, जी जी आ रही है बात?
0: जी जी जी जी बिल्कुल।
3: हाँ मैं ये कह रहा हूँ, अकेला जब मैं होता ना, तो फिर मैं अकेला ही होता हूँ, तो जब कोई साथ हो जाए तो फिर उसके साथ ही हो जाता हूँ,
0: मतलब
3: उसके रंग में रंग जाता हूँ।
0: सही,
3: ये क्वालिटी है इसमें ना।
0: अच्छा वो तो ये तो वो वाली बात होगी, जी मैं तू डोला तेसी भी हम ही खुश हैं, तो ये तो गलत बात हो गई ना। अच्छा गलत बात होगी, चले ठीक हो गया लागत साहब, बहुत शुक्रिया, टाइम बहुत कम है जी, बहुत शुक्रिया,
3: ओके जी ओके,
0: अल्लाह हाफिज। ये मैंने कहा कि जी मैं तू ढोलाते हुए मैं, तो वो कह रहे हैं हाँ जी ठीक बात है। लियाकत साहब मुझे लगता है बस आपने अभी ट्यून इन किया था, लेकिन फिर भी जनाब बहुत शुक्रिया, आपने सुना और आपने कॉल की हमें। टाइम बहुत कम रह गया है जनाब, मुकाबला बड़ा सख्त है, एक कॉल लेते हैं उसके बाद चलेंगे एक ट्रैक की जाने, और मेरे पास कमर्शियल ब्रेक भी है, तो शामिल करते हैं जनाब अभी एक कॉल। अस्सलाम वालेकुम
4: जी। अस्सलाम वालेकुम आप।
0: वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कौन कहां से?
4: अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूं अब्दुल हमीद फरुखाबाद हर चांद से।
0: खुश आमदीद कहते हैं जनाब अब्दुल हमीद,
4: बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, हां ना कमल आपी ने जड़ी गल की थी ना, मैं भी वह गल करनी थी। देखो बिहार घर जाइए ना,
0: जेहो
4: जा माहौल होना हसी शरीफ है, जेहो जा माहौल हो जिवे आप कमल नाथ ने बोलिया, जेहो जा रोन आला ना ना आवे रोन आला मुंह ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਅਦਾਬ ਹੁੰਦਾ ਬਈ, ਮੋਜ ਕਰ ਖਮੋਸ਼ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
0: ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ।
4: ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਮਿਲੀ, ਰਮਜਾਨ ਬੱਜਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਲ ਮਿਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪੀ ਆਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਲਿਆਗਤ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹਟੇ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
0: ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਸਾਹਿਬ,
4: ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਰਜਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਸੰਕਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਸਲੀਮ ਦਰਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਲਾਮ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ,
0: ਰੱਬ ਰੱਖਾ,
4: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼,
0: ਅੱਲਾ
4: ਨਬੀ ਵਾਰਸ,
0: ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।

0: home delivery, dial 111-77-9977. Simply Sufi Express.
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

वेलकम बैक जनाब, खूबसूरत सा ट्रैक सुन रहे थे। और टाइम स्टूडियो जो है ना, स्टूडियो की जो घड़ी है वो बता रही है कि हमारे पास बड़ा ही कुछ चंद मिनट रह गए हैं। और मैं तमाम लोगों का जनाब शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो भी प्रोग्राम सुन रहे थे, जो प्रोग्राम में शामिल हुए मैसेजेस के थ्रू, कॉल्स के थ्रू, और कुछ बड़े प्यारे और लिसनर्स रह गए हैं जिनका नाम मैं शामिल करना ज़रूर चाहूँगी। हमें फरत सुन रही हैं जनाब, बहुत शुक्रिया फरत प्रोग्राम सुनने के लिए। इसके अलावा मैं ओमान से सुन रही हैं, फाइका बहुत शुक्रिया, फिरा हमें सुन रही हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ऑफ एयर जनाब हमें कॉल आई थी और वो कॉल किसी वजह से ड्रॉप हो गई, बात हो नहीं पाई, बट उनका जो नाम है वो मैंने अपने पास लिख लिया था। मोहम्मद मलूक शाह दरबार अल्लाहू खानेवाल से उन्होंने हमें ज्वाइन किया था, प्रोग्राम आप सुन रहे थे और मैसेज आपका नहीं ले पाई मैं क्योंकि कॉल ड्रॉप हो गई आपकी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और आप खानेवाल से मुझे सुन रहे थे। हिदायत सालार जई हमें सुन रहे हैं, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम फ्रॉम कराची, कराची से आपने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया कराची से हमें सुनने के लिए, ट्यून इन करने के लिए FM 101 लाहौर को।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

मैं आइटम नंबर।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
1: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरयार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क से पोलियो का खात्मा यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म का इजहार किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर और बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक मुकालमे, सिफारतकारी और तनाज़ात के पुरम हल की अहमियत पर जोर दिया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखने वाले 19 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पाकिस्तान ने आज सुबह अफगानिस्तान से अपनी फिजाई हदूद में दाखिल होने वाले 8 ड्रोन्स मार गिराए हैं।
2: We'll be back after the short commercial break.

0: कहां।
1: इसके अलावा आप मुझे SMS कर सकते हैं अगर आपकी इंटरनेट तक रसाई नहीं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, 01 लिखें, स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम लिखें और इसको भेज दें 4471 पे। और मेरी पोस्ट FM 101 लाहौर एंड FM 101 चैनल पाकिस्तान, दोनों जगह यू कैन हिट मी विद योर कमेंट्स एंड लाइव। अभी थोड़ी देर तक शुरू करेंगे लाइव के लिए, भी फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं RJ Space DOX डॉक्स। Here you go, मैं ना आ रहा है मस्ताना।

0: जाओ, उसने दूसरे को भी तो कहा बदल जाओ, उसने बात मान ली आपने नहीं मानी, तो इसका मतलब ये हुआ बदल तो बंदे ही गए ना फिर।
1: नहीं नहीं, हमें वो बदल रहे हैं, हमें वो कह रहे कि तुम बदलो,
0: हमें वो बदल रहे हैं लेकिन हम नहीं बदल रहे, हम बदल रहे हैं लेकिन हम नहीं बदल रहे, हम बदलते रहेंगे लेकिन हम मानेंगे नहीं। आप ये कहना चाह रही हैं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, थैंक यू वेरी मच फॉर योर
1: फीडबैक।
0: इसको कहते हैं पंजाबी में मेरा कान चिट्टा है, मैं नहीं मानूंगा। इसको कहते हैं कि मैंने हाथी को उड़ते हुए देखा, मेरे जैसा भी कहता हाँ मैं तो कल दो कट्ठे देखे थे। फिदा राजपूत आई हैं, थैंक यू वेरी मच जी। सलाम किया, वालेकुम सलाम। अगर यूनिवर्सिटी के कॉलेज से आउटसाइड बंदा पसंद आ जाए तो इसका मतलब है आपकी आंखें खराब हैं, आपको पूरे इंस्टीट्यूट में कोई नहीं पसंद आया, कमाल की बात है, हैरत की बात है। ओके किंजा, हमारी मैडम किंजा प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच जी। आपको मैसेज आया आबिश सरताश, लोग बदलते नहीं बस वक्त के साथ इनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, और जब कोई आपके खलूस की कदर नहीं करता तो शायद उम्मीद ख़त्म होने से रिश्तों के तकाजे बदल जाते हैं, और वहाँ वो दोनों एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं। वेल, इंटरेस्ट अगर एक साइड से ख़त्म हो जाए दूसरी साइड पे बरकरार हो ना, तो फिर इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होता, फिर चल जाता है। क्योंकि मैग्नेट की थ्योरी आपने देखी है, एक है नफी और एक है पॉजिटिव, और चलता ही सिलसिला तब है, जुड़ते ही तब है, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, एक एफर्ट करता रहे ना ताल्लुक ख़त्म नहीं होता, जब दोनों तरफ से एफर्ट्स ख़त्म हो जाए ना तब ख़त्म होता है। तो एक का इंटरेस्ट होना नहीं, दोनों का इंटरेस्ट अगर ख़त्म होगा तो ताल्लुक ख़त्म होगा। जासर जरगार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, श्रीनगर से मेरे भाई ने ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं? कवल नाज है पंजाब यूनिवर्सिटी, अस्सलाम वालेकुम। आप यूनिवर्सिटी में अकेली बैठी रहती हैं, चुड़ैल तो नहीं है इस वक्त, आप पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठी होती हैं रात को इस वक्त, और मैंने बड़े किस्से वहाँ के सुने हैं, वो ये आपके बारे में तो नहीं है। अच्छा जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आपको क्यों इंस्टीट्यूट पसंद नहीं आया? कौन सा इंस्टीट्यूट पसंद नहीं आया? क्या कह रही हैं आप? हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर,
2: शहरयार बात कर रहा हूँ पाकिस्तान।
0: शहरयार पाकिस्तान से?
2: पाकिस्तान आर्मी से सर।
0: अच्छा पाकिस्तान आर्मी से, कैसे हैं मेरे भाई?
2: अल्लाह का करम सर, आप सुनाए ठीक है?
0: फिट फिट फर्स्ट क्लास, सुनाए कैसे चल रहे हैं मामलात? अच्छा है सब?
2: अल्लाह का करम सर, हम फाइन।
0: आप आपका सुन के ना मैं साथ ही अपना टेम्पो बदल लिया, यकीन करें। कैसे हैं? अच्छा है, एंजॉय कर रहे हैं? मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप में से कोई भी फोन करे ना पाकिस्तान आर्मी से, मुझे बहुत अच्छा। हाँ ये तो है, इसके लिए मैं मदद खाऊँ, जितने भी मेरे भाई हैं पाकिस्तान आर्मी से जो डायल करते हैं और कॉल नहीं मिल पाती उनसे मैं मदद खाऊँ। जी जी भाई,
2: मैं लाहौर से ही बेसिक।
0: अच्छा लाहौर से है, जबरदस्त जबरदस्त।
2: लाहौर से
0: अच्छा पिंडी कह रहे हैं, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा है। कोई बताएं मौजू है कि रिश्ते एक्चुअली बदल जाते हैं, वक्त बदल देता है, वक्त के तकाजे उनको बदल देते हैं,
2: वक्त के तकाजे से सारी चीजें बदल जाती हैं। देखिए जब जब इंसान के अंदर बदलाव आता है ना, अब देखिए मेरी तो पहले मैं कुछ नहीं था, अब मैं देखें मेरे पास कुछ नहीं था,
0: ठीक है,
2: पहले मेरे पास समझ ले कि 10 मैट्रिक पहले मैं कुछ नहीं था,
0: बिल्कुल ठीक है।
2: अम्मी कहते थे कि चलो तेरी रिश्तेदारी के साथ, तेरी यहाँ इधर रिश्तेदारी कर देते हैं, तेरी यहाँ उधर रिश्ता कर देते हैं। अब उनको उनका कहना है कि यार तेरे मुंडे ने एक कुड़ी डोबनी है।
0: अच्छा
2: अपनी अपनी अपनी बात बता रहा हूँ। हाँ अभी

0: हैदराबाद में एक मेरे रियलिटी थे। अभी वो रिसेंट ये हुआ, अभी मेरी अलहमदिल्ला नौकरी भी लग गई है, मेरे पास 10 हुनर है अलहमदिल्ला डॉक्स भाई।
1: अच्छा,
0: हुनर है मेरे हाथ में 10 हुनर,
1: माशाल्लाह।
0: तो शुक्र अल्लाह की जात का, और बोलने का हुनर है मेरे पास ये आरजेस का।
1: नहीं, आपकी बात से आवाज से लग रहा है आप कर सकते हैं।
0: 88.6 में कर चुका हूँ सर।
1: अच्छा, नहीं, आप अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा बोल,
0: मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा, मैं इतना बड़ा, आप बड़े लोग हैं सर, मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो मैं उस दिन, उसके बाद मेरी अभी मुलाकात हुई रिसेंटली 2024 में।
1: अच्छा,
0: तो मेरी सिस्टर्स, मेरी सिस्टर के पास आई वही लड़की।
1: अच्छा जी,
0: मेरा भरा।
1: अच्छा,
0: वाइट सूट पहना हुआ, वाइट सूट पहना हुआ, यकीन माने खेड़ी पहनी हुई है कि मेरा भरा है।
1: अच्छा,
0: अभी अभी वो जो मेरी खाला आई थी,
1: हाँ हाँ,
0: अभी तो वो जो जितने रब रिश्ता पूछना था वो क्या कह रही है।
1: अच्छा,
0: मेरी अम्मी भी लगता अम्मी थी।
1: अच्छा,
0: अभी अभी वो लड़की कह रही है मेरी अम्मी भी लगता अम्मी थी।
1: अच्छा,
0: लगता मम्मी नहीं थी हूँ देख माशाल्लाह वे कितना सोहना ही।
1: हाँ,
0: वक्त, हर चीज़ वक्त
1: तो आपकी बात से फिर ये हुआ, तकाजे जो होते हैं वो बदल लेते हैं ना फिर।
0: जी जी, वक्त का तकाजा है ये, वक्त का चलन चलान जो है ना, वक्त, वक्त,
1: हाँ, उन्हें पहले लगा कि नहीं ये किसी काम का नहीं है,
0: काम का
1: उनका तकाजा और था, और अब उनके तकाजे से बात आगे बढ़ गई। अब वो कहते हैं हूं इन्हें साडू काबू नहीं आना साढ़े।
0: अभी वो खुद रिश्ता दे रहे, अम्मी मेरी कहती है ना ना ना ना मेरा मुंडा दे नकारा है, कुछ नहीं करता है।
1: अच्छा, ठीक है जी, जबरदस्त है, जबरदस्त।
0: मैं ये कहता हूँ कि परखो, सब कुछ करो, मगर कहते हैं कि जो आ रहा है ना उसको कबूल कर।
1: सर, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छी आपने बात।
0: सर जी, मैंने मुलाकात करनी है आपसे डॉक्टर भाई, और जैसे आपकी जो आरजेज आती है ना उनके साथ बैठने का मौका मिल जाएगा।
1: जरूर जरूर, क्यों नहीं, क्यों नहीं जी, जरूर जरूर।
0: मैं खुद बोलने का शौक रखता हूँ आपके साथ बैठने का।
1: जी जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं तो जी अवामी सा हार दे हूँ, बिल्कुल हाजिर।
0: खामोश रहकर मैंने जिंदगी गुजारती है डॉक्टर सारी।
1: हाय हाय,
0: खामोश रह के जिंदगी गुजारती है डॉक्स मैंने सारी।
1: वाह वाह,
0: अब तेरे वक्त के साथ मैंने वक्त गुजारना है।
1: आहा हा हा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
0: तो डॉक्टर भाई एक रिक्वेस्ट है, अगर
1: जी जी
0: कर दे तो
1: बताएं बताएं।
0: इना नसरुल्लाह का एक कलाम है, अगर वो पेशे खिदमत करते हैं तो अपनी नजर।
1: कौन सा जी?
0: ढल दे सूरज।
1: अच्छा,
0: ढल कलाम है। अब हाँ, ये कलाम है काइंडली, बहुत
1: मेरा ये फिर मेरा ख्याल है एंड पे लगाते हैं। ठीक है जी, एंड पे फिर मैं आपको डेडिकेट कर। ठीक है जी, चढ़ दे सूरज ढल दे वेखे।
0: हाँ जी,
1: एंड पे जी, इंशाल्लाह। डन सर, डन,
0: कोई मसला नहीं
1: सर, डन। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान आर्मी से थे भाई, बड़ा अच्छा लगा जी। इस्लाम साहब हैं, इस्लाम गुज्जर, हेलो सर, हाय, हाउ आर यू? ओके, इस्लाम भाई कैसे हैं आप? काफ़ी टाइम बाद आपको सुन रही हूँ, नाइस शो। सलमा फ्रॉम पिशावर, सलमा कैसी हैं? पिशावर में मौसम कैसा है? चिरागों वाला कलंदरी मलंग उस्मान टाउन, अगे भजन पूरा एड्रेस ही लिख दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो जी? मैं ठीक हूँ, आपके प्रोग्राम का इंतज़ार रहता है। बहुत शुक्रिया भाई, एक शान कलंदर में कसीदा सुना दे, मेहरबानी। अच्छा, उस दिन भी मैंने शान कलंदर में एक बात की थी। बहरहाल, आज एंड पे कलाम लगाऊंगा, ये आपने सुनना है आपके लिए। असमा है, सलाम मोहब्बत। चंदा कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताएं चंदू, क्या हाल है? सिद्रा हनीफ, सर तकाजे बदल देते हैं। अच्छा, कैसे बदलते हैं? जस्टिफिकेशन भी दें। आबिद अली सियालकोट कैंट से, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम। नाराज ना भवें ते एक गल आखां, तेरे नाल मोहब्बत थी गई है। अच्छा, बड़ी मेहरबानी। रिजवान सदीक, सदीकी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, लव यू सर, लव यू टू ब्रो। वक्त के तकाजे बदल जाते हैं, उन तकाजों के साथ इंसान समझदार समझौता कर लेता है लेकिन किसी भी चीज़ की फितरत नहीं बदलती। वेरी वेल सेड जी। आप लोग भी जहाँ तक मेरी आवाज़ आती है, अगर आपकी कॉल नहीं मिल पाती तो आप मुझे बिल्कुल SMS करें। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, आपने 101 लिखना है, स्पेस देनी है, अपना नाम और पैगाम लिखना है और इसको भेज देना है आपने 4471 पे। और इसके अलावा आप मुझे कॉल कर सकते हैं 0421100101। और फिर फेसबुक पे अगर आपके पास इंटरनेट की रसाई मौजूद है, मेरी पोस्ट है FM 101 लाहौर, सर्च कीजिए और वहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हैं मेरी पोस्ट पे। और FM 101 चैनल पाकिस्तान पे भी पोस्ट है, वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं। और RJ Space DOX डॉक्स लिखें, सर्च कीजिए, मेरी लाइव वीडियो स्ट्रीम है, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। सजाद अली लाडला ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम जी, उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, आपको सुन के अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया जी। शौर हक से बस मस्तूर हूँ, शौर हक से बस मस्तूर हूँ, मैं हूँ तहरीर, मैं अगर तासीर तो ही दिल पे असर करती है, है मस्तूर। अच्छा, शौर हक से बस मस्तूर हूँ मैं, हो तहरीर में अगर तासीर तो ही दिल पे असर करती है। बिल्कुल सही कहा, बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू वेरी मच जी सजाद भाई, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, ढेर मेहरबानी। I am Ikra, I am RJ Docs, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, शो अच्छा है, आपका मैसेज भी अच्छा है, बातें बहुत अच्छी हैं ना, बातें ही बस आती हैं और आता ही क्या है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो
0: हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब? ओहो भाई की आवाज़ नहीं आई, सही, दोबारा कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो,
0: अस्सलाम वालेकुम,
1: वालेकुम अस्सलाम,
0: आजे दो भाई साहब,
1: जी जी सर, कौन है हमारे साथ?
0: साजिद, साजिद बोल,
1: साजिद भाई कैसे हैं?
0: सर ठीक ठाक, खैरियत, टॉपिक बहुत अच्छा है
1: सर।
0: और मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, घड़ी होती है ना घड़ी, ये सेकंड भी बढ़ती है, बलती है, मिनट भी बलती है, घंटा में भी आ जाती है, फिर आगे चलती रहती है।
1: बजा फरमा रहे हैं सर।
0: हाँ, तो जिंदगी जो है इंसान की, ये भी इसी तरीके से ये तब्दील होता रहता है इंसान,
1: घड़ी की तरह से बदलते रहते हैं।
0: हाँ, इंसान तब्दील होता रहता है, इसकी सोच बदलती रहती है, इसका जहन तब्दील होता रहता है, ठीक है। ये देखें, बच्चा होता है कुछ और होता है, बड़ा होता है कुछ और, जहन में कुछ हो जाता है, जब बड़ा होता है तो सुन में।
1: तो फिर आपके मुताबिक आपको हासिल होने वाले तजर्बात बदल देते हैं,
0: बदल जाते हैं, ठीक है ना, वक्त के साथ साथ इंसान तब्दील, बहुत ज्यादा तब्दील हो जाता है। फिर कुछ लोग होते हैं, जैसे आप बात कराते हैं, आंखों में हया नहीं होती किन लोगों में, और कुछ मतलब और तरह के होते हैं, उनका जहन बुराई की तरफ होता है, पर कभी कभी वो सही रास्ते पे भी आ जाते हैं। देखा है आपने, वो हज भी बन जाते हैं, नमाजी भी बन जाते हैं, और जो शराब पीने वाला इंसान होता है, देखा है आपने, वो भी सही रास्ते पे कभी कभी आ जाता है, तब्दीली आ जाती है।
1: जी बिल्कुल, बजा फरमा रहे, इंसान तो बदल जाता है वक्त के साथ साथ, इंसान बदल जाता है। तो आपका कहना ये है, तकाजे बदल देते हैं,
0: तकाजे बदलते जो रिश्तेदारी हैं, कभी एक बस ये भी बहन भाइयों में होते हैं, कभी एक पेज पे होते हैं, कभी कभी उसमें भी
1: सर। बिल्कुल ठीक है, आपकी आवाज़ मुसलसल कट रही है, बहरहाल आपकी बात मुझे बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत आपने बात की, बहुत अच्छी मिसाल दी, और मुझे मिसाल इनकी बहुत पसंद आई साजिद साहब की। एम रजा चौधरी साहब ने सलाम किया, वेलकम टू द शो, वालेकुम अस्सलाम जी। हुमैरा फयाज ने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। कैसर महमूद, सर मैं कितने शो में कॉल करने की कोशिश कर रही, बट अच्छा मुंडे का ना है, नहीं मिलती, क्या करूँ, आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मिलाए ना जी। डॉक्स, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? वैसे वेल आई लव वाइट एंड ब्लैक, मुझे पसंद है, दोनों कलर पसंद है, इसमें आई लव देम, कोई मसला नहीं है, हर कलर पहन लेता हूँ वैसे मैं। और क्या है, आई एम मिस मारिया फ्रॉम रावलपिंडी, ओह माय गॉड मिस मारिया, नाइस टू नो यू, जुगनू जूनियर हैं, माशाल्लाह एक लंबी लिस्ट है और जिनमें सारे कॉलर्स के नाम लिखे हैं और उन सारों को आपने सलाम दिया, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सजाद अली लाडला, बहुत शुक्रिया जी। कभी खाक हुए उनके कदमों की, कभी दिल को बिछा कर रक्स किया। ये सॉन्ग प्ले कर दें मैक्स स्टूडियो। अच्छा, पहुँच गई हैं आप वहाँ पे, ठीक है, डन करें। ओके, FM 101 के लिए आप जो काविश कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत शुक्रिया जी, आपकी मेहरबानी। आपकी निगाह अगर वहाँ पर भी है, नादान इंसान 100 साल जिंदगी के लिए जी लगन से मेहनत करता है मगर हजारों साल कब्र में पड़ना है हमेशा कि आखिरत है मगर कोई फिक्र नहीं। बहुत अच्छी थॉटफुल बात की आपने। अल्लाह ज़िया अंजुम साहब को सेहत वाली ज़िंदगी दे। थैंक यू जुगनू भाई। और एम हफीज, बहुत शुक्रिया जी। और ओहो, मैंने कहा आप लोगों के मैसेजेस पढ़ लूँ। कहानी ठीक बनती है, नज़ारे ठीक मिलते हैं, अमूमन वक्त अच्छा हो तो सारे ठीक मिलते हैं। वजह एक दोस्त ये भी है ताल्लुक को बढ़ाने की, हम दोनों के आपस में सितारे ठीक मिलते हैं। तुम्हारा ये मुकर जाना, अचानक यूं बदल जाना, तो मतलब मुझको ख्वाबों में इशारे ठीक मिलते हैं। अच्छा, अहमद हसन सर जी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बहुत अच्छी पोइट्री है, बहुत अच्छी। वो जज्बों की तिजारत थी ये दिल कुछ और समझा था, उसे हंसने की आदत थी ये दिल कुछ और समझा था। मुझे उसने कहा आओ नई दुनिया बसाते हैं, उसे सूझी शरारत थी ये दिल कुछ और समझा था। हमेशा उसकी आंखों में धनक से रंग होते थे, ये उसकी आम हालत थी ये दिल कुछ और समझा था। वो मेरे पास बैठा देर तक गजलें मेरी सुनता, उसे खुद से मोहब्बत थी ये दिल कुछ और समझा था। मेरे कांधे पे सर रख के कहीं पे खो गया था वो, एक वक्ती इनायत थी ये दिल कुछ और समझा था। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस, वेरी नाइस। चाह गए हो, मैंने भी मैसेज पढ़े तो दिल कुछ और ही समझा था। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो।
0: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल है डॉक्टर भाई?
1: अच्छे हाल हैं जी, आप बताइए।
0: बड़े दिनों बाद आपसे बात हो रही है।
1: कैसे हैं? बस वो बात नहीं करनी जो आपने भेज दी, वो बात नहीं करनी आपने।
0: नहीं, वो मैं ऑफ़ आपसे करूंगा बात। अच्छा, और रिया भाई का क्या हाल है?
1: अल्लाह का शुक्र है, बस दुआ कीजिए।
0: एडमिट है कि घर में ट्रीटमेंट हो रहा है?
1: आना जाना पड़ता है जी उन्हें हॉस्पिटल। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं नाम बता रहा हूँ जी।
0: मैंने भी बता दिया। बहरहाल
1: अच्छा।
0: आपने हुजूर ने फरमाया कतई रहमी करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो हालात जो है ना, जैसे भी हो, ये आपका कैरेक्टर होता है, किरदार होता है। जैसे भी हालात हो जाएं, चाहे आप गरीब हो जाएं, चाहे अमीर हो जाएं, या आप दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शामिल हो जाएं, लेकिन जो आपकी नेचर है ना, जो खानदानी बंदा है, वो अपने रिश्ते निभाएगा।
1: बिल्कुल ठीक है जी।
0: जैसे भी हालात हो जाएं।
1: बिल्कुल ठीक है।
0: तो ये काफी लंबा टॉपिक है। जाते जाते मैं एक लाहौर के गुमनाम शायर थे,
1: पूनम
0: इलाहाबादी
1: सर सर सर सर,
0: उनकी एक कवाली भी बड़ी मशहूर
1: है। अब्दुल्नूर हाशमी साहब के बारे में मैं तारुफ करवाता जाऊँ, इनका माशाल्लाह शोरा के हवाले से असमा और रिजाल में इनका बहुत ज्यादा काम है और इन्हें बहुत ज्यादा इस पे अच्छी गिरफ्त है और अक्सर ये आगे बताया करते हैं फलां शायर की बरसी है फलां का।
0: मुझे झोली मेरी या मोहम्मद।
1: अच्छा अच्छा,
0: लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। इलाहाबादी से ये पैसा अखबार में रहते थे और अब उनकी डेथ हो गई है 2009 में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
0: तो उनकी बगल में से चांद
1: जी जी बिस्मिल्लाह।
0: बेवफा से भी प्यार होता है, यार कुछ भी हो यार
1: होता है।
0: साथ उसके जो है रकीब तो क्या, फूल के साथ खार होता है, जब वो होते हैं सहने गुलशन में, मौसम में नौबहार होता है। काश होते हम उसके फूलों में, उस गले का जो हार होता है। दोस्त से क्यों भला न खाते फरेब, दोस्त पे इतबार होता है। ये आपके टॉपिक पे आई है,
1: बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
0: दोस्त से क्यों भुला ना खाते फरेब, दोस्त पर इतबार होता है। जब वो आते नहीं शबे वादा, मौत का इंतजार होता
1: मौत
0: है,
1: मौत का इंतजार होता है।
0: दो चार शेर और।
1: बसर
0: में भी ख्याल हिजर से दिल बेसकून बेकरार होता है।
1: बहुत अच्छा।
0: हम बड़े खुश नसीब हैं, वरना आपको किससे प्यार,
1: किससे प्यार होता है। बहुत
0: तीर, वो तीर नीम कश तो नहीं, दिल के जो आर पार होता
1: दिल
0: है,
1: दिल के जो आर पार होता है। बहुत
0: इखलाक ए अरुसे हयात, सबसे अच्छा श्रृंगार होता है। और मकता है
1: जी,
0: इश्क की कायनात का पूर्णम हुसन परवतगार होता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह,
0: बेवफा से भी प्यार होता है। यार कुछ भी हो, यार होता है, दुआओं में याद रखें।
1: बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। What a lovely listener, what a lovely person. एक अरसे से आप इस सरताज कहती हैं, वक्त इंसान को बदलता नहीं बल्कि इंसान की असल हकीकत सामने ले आता है। हज़रत अली का कॉल ये है कि इख्तियार के आ जाने के बाद, जिसका मफहूम ये है, दौलत, इख्तियार, पावर, ताकत हासिल हो जाने के बाद इंसान बदलता नहीं, इंसान असली यानी उसकी हकीकत सामने आती है। हाँ जी, वो ये है। तो ये जो मिसाल है ना, वक्त इंसान को बदलता नहीं बल्कि उसकी असल हकीकत सामने ले आता है, ये सिर्फ कहानियाँ हैं, बातें हैं, ऐसे नहीं होता अनलेस के कोई मेजर चेंज ना आए। अगर उसी तरह है ना, आप मज़ीद उसको डिप्राइव देखेंगे, मज़ीद उलझा हुआ परेशान भी देखेंगे, अगर वो डिक्लाइन में है फाइनेंशियल सोशल, आपको ज़्यादा परेशान और अपसेट नज़र आएगा। अगर वो इमोशनल डिक्लाइन में, सिर्फ ये नहीं कि आपको अगर कोई चीज़ किसी जगह पे हिट कर रही है फॉर टाइम बीइंग, या किसी और तरह से आपने किसी की कोई एक्शन देखा और उसे और तरह से अंडरस्टैंड किया और उस पर फिर आपने कायम कर दी एक राय, और फिर कर आपने कहा कि हाँ जी वक्त ने बदला नहीं, उसकी हकीकत सामने ले आया है, तो ये मेरा ख्याल है थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करने की ज़रूरत है, माजरत के साथ। सुफियान हैदर हैं, इस्लाम किया, वालेकुम सलाम। डॉक्टर सर कैसे हैं? मैं ठीक, आप बताइए। अहमद बिलाल कहते हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं सर। हाँ, मैं थोड़ा जहा बाल बदा के ना आहिस्ता आहिस्ता हेयर स्टाइल बदल लेना मैंने हेयर स्टाइल। अभी यहाँ पे गाना सुनते हैं, काफ़ी गपशप हो गई और उसके बाद वापस आता हूँ। जैसे आज डॉक्टर सर गुफ्तगू चल रही है, क्या वक्त के साथ रिश्ते वाकई बदल जाते हैं या तकाजे बदल देते हैं रिश्तों को? बहरहाल अहमद बिलाल खुद एक प्यारा लड़का, सारे जितने इंटर्न आए थे सारे बड़े अच्छे प्यारे लड़के थे माशाल्लाह। कुड़ियों के बारे से कमेंट करांगा तो कुट पै जाएगी। ओके, आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक, डोंट गो एनीवेयर, एंड यू कैन कॉल मी आफ्टर दिस ट्रैक 0422111001. If you don't have the internet access, you can send me SMS अपने मोबाइल के रेड मैसेज ऑप्शन में जाएं, 101 क्लिक SMS करें और अपना पैगाम लिखें, इसको भेज दें 4471 पे। मुझे एक मैसेज आया है बाजोड़ एजेंसी से। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? वहीद रखीदुल्ला, आपका नाम शायद पता नहीं, अगर मैं गलत पढ़ गया माजरत, कहते हैं सर इश्क के मामले में अपनी जान की कुर्बानी करने को तैयार हो, जाती लेडीज धोखा देती हैं। आपका मैसेज यहाँ पे कट गया। अच्छा, बंदे तैयार हो जाते हैं, खवातीन धोखा देती हैं, ये तो नहीं कह रहे आप? आपने मुझे बताना बोला वैसे करके, मैं भी मजा लेना चाहता इस बात के, बहुत मजा लूंगा।

0: ऑलराइट जी, वेलकम बैक। वक्त हो चुका है जी 11:46 और FM 101 रेडियो पाकिस्तान के लाहौर स्टूडियो से आप सुन रहे हैं नाइट थेरेपी विद आरज डॉक्स, जिसमें आपका मेरा साथ होता है जी बुध जुमेरात की शब 10 से 12 बजे तक। एंड आई टेलिंग यू अगेन के फ्रॉम नेक्स्ट मंथ मैं मंगल वाला शो करूँगा 12 से 2, और फिर बुध को करूँगा 10 से 12। जुमेरात की मैं स्लॉट अपनी छोड़ दूँगा, ठीक है जी। एंड मोहब्बत देख ली मैंने जमाने भर के लोगों की, सजाद अली लाडला कहते हैं। अच्छा, किस किस से मोहब्बत करते रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, इतनी कर ली है तुमने। अच्छा, फरा अफजाल कहती हैं डॉग्स में लायबिलिटी नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही, बात यह है कि वक्त के साथ प्रायोरिटी सेट करनी पड़ जाती है। जैसे अभी मैं इन लॉज में हूँ, मुझे मेके की बहुत सारे प्यारों को मिलने की बजाय कॉल तक महदूद करना पड़ जाता है। शायद मैं समझा पाई अपनी बात को। जी समझ गया मैं आपकी बात को। मोहम्मद शकील है, सलाम अलैकुम, कैसे हैं जनाब? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप खैरियत से हैं? आयशा सुल्तान आई हैं, हमारी इंटर्न है। सलाम अलैकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। आप रिश्तों के तकाजे वक्त के साथ बदल जाते हैं, वक्त के साथ लोगों का अंदाज़ा हो जाता है, जैसा हम उन्हें समझ रहे होते हैं वो वैसे नहीं है, कंप्रोमाइज़ भी अपनाना पड़ता है, कहीं कुछ चीज़ें तर्क करनी पड़ती हैं। वक्त के साथ रिश्तों के तकाजे बदल जाते हैं, सब यही कहते हैं। इस्लामाबाद वाले मैसेजेस को शामिल करता हूँ मैं, और जुगनू जूनियर का मैसेज शामिल किया मैंने। मंजूर हुसैन अंसारी फ्रॉम फैसलाबाद, सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम। मानो खान, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी। एंड नौशीन रशीद साहिबा, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम जी। फरकान इब्राहिम, नहीं नहीं ये खबर दुश्मनों ने नहीं दी होगी, वो आए आके चले भी गए, मिले भी नहीं। अच्छा फरकान, कैसे हो सर? मैं कितने शोज हो गए कॉल कर रही हूँ, अब भी करे ना, करती क्यों नहीं है? तुम्हारे ही होने से आबाद है दिल, तुम ही जब ना होगे तो वीरान होगा, तुम्ही से ही हसरत, तुम्ही से है आरमा, ना हसरत होगी ना आरमा होगा। मेरा दिल फिदा तुम पे और जान कुर्बान, तुम्ही हो मेरी जिंदगानी का सामा, तुम्हारे ही जब काम आई ना ये जान, तो फिर जान का क्या मेरी जान होगा। अच्छा है जहां जे बता। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, हरबंसपुरा लाहौर से सुनते हैं सर। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग जी, गोना टेक द कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हेलो, वालेकुम अस्सलाम।
1: हिरा बात कर रही हूँ कराची से।
0: हिरा, फरा
1: जी, हिरा,
0: हिरा कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, यकीन करें, मुझे लगता है,
1: मुझे भी लगता है,
0: है ना, हम दोनों को ही गलत लगता है। कहिए, हेलो। अच्छा, गलत नहीं लगता?
2: नहीं, आपको बिल्कुल ठीक लगता।
0: मैंने फोन बंद कर दिया है, बात सुनते ही लगता बुरी बात कर दी मैंने,
2: नाराज हो गई हैं,
0: नाराज हो गई। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम।
3: भैया कैसे?
0: मैं ठीक, कौन है जी?
3: सिद्रा कुरैशी मंदरा से।
0: सिद्रा कुरैशी मंदरा से कैसी है सिद्रा?
3: बिल्कुल भाई,
0: मंदरा से ना, जब मैं जीटी रोड से कभी जाता था ना इस्लामाबाद, तो पकोड़े खाया करता था वहां से। आपने खाए हैं कभी?
3: हाँ, मैं बचपन में
0: गोबर छोटी, आप जब छोटी होगी, मैं तब भी इतना ही था। हाँ सही कह रहा हूँ मैं। अभी आप बड़ी हो गई हो?
3: मैं
0: अब आज भी उतना ही हूँ। कल जब आप मेरी उम्र की हो जाओगी, तब भी मैं इतना ही होऊंगा।
3: अच्छा, पक्की बात।
0: ऐसे ही है जी, क्या कहेंगी, वो हो गया, इसी का शोर आ रहा था। ये क्या है,
3: अभी भी आ रहा है,
0: है?
3: अभी भी शोर आ रहा है,
0: सेल्फ अप्रेड करेगा,
2: बहुत बेटर।
0: अच्छा हाँ जी, अच्छा क्या कह रही हैं
3: जी, क्या कह रहे हैं भैया आप?
0: हाँ जी, वक्त के साथ तकादे बदल जाते हैं या रिश्ते बदल जाते हैं?
3: रिश्ते बदल जाते हैं,
0: रिश्ते बदल जाते हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। तो तकादे रिश्तों के नहीं बदलते, वक्त की वजह से।
3: हाँ, जमाना देखे, जमाना वही है जिस तरह 1400 साल पहले का था, जमाना एक ही है, लेकिन हम लोग बदल जाते हैं, हमारी रस्म रिवाज बदल जाते हैं और हमारी सोचें बदल जाती हैं, तो हम खुद भी बदल जाते हैं।
0: ओके, बिल्कुल ठीक है। तो आप किसके साथ बदली हैं ताज़ा ताज़ा?
3: मैं अपने फियांसे के साथ।
0: बदल गई?
3: हाँ मैं बदल गई, उन्होंने मुझे बहुत चेंज किया।
0: तंग किया?
3: चेंज किया नहीं, मुझे बहुत
0: चेंज किया। अच्छा वाला?
3: अच्छा वाला।
0: हाँ अच्छा वाला कहे ना। मैं कह शायद आपने कह दिया जाओ मैंने शादी नहीं करनी तुमसे।
3: नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
0: अच्छा, वो सुन रहे हैं?
3: वो सुन रहे जी, यकीनन सुन रहे हैं।
0: यकीनन सुन रहे हैं, देखें। हेलो भाईजान, आपकी फियांसी क्या कह रही है? आपने बदल दिया उन्हें, खुश हो जाए आप।
3: नहीं उन्हें पता है, वो मुझे ना, मैं बचपन से, मतलब ना, वो
0: बचपन से आपकी फियांसी हैं?
3: हाँ मैं इनकी बचपन से मंगेतर हूँ।
0: बचपन से बदल रहे हैं आपको?
3: नहीं अभी बदली हूँ, पहले मुझे नहीं पता था ना कि मैं बचपन से उनके नाम मतलब हुई हुई थी।
0: जैसे ही पता चला तब से बदल गई?
3: हाँ, मतलब उन्हें
0: फिर जैसे ही पता चला फिर उनसे शर्म भी आने लगी।
3: हाँ ऐसे ही,
0: पहले नहीं थी आती?
3: नहीं पहले मैंने इनको देखा हुआ नहीं था, वो ना।
0: आप फिर जब वो सामने आते हैं मुंह पे दुपट्टा लेके देखती हैं?
3: नहीं वो ही नहीं है ना, एक एक बार भी नहीं आया।
0: वो शरीफ आदमी
3: है। नहीं वो हमारे गाँव के साथ, गाँव था ना हमारे घर, नहीं वो आते थे पहले, भाई के साथ आते थे, फिर भाई फोत हो गए तो फिर उनके बाद नहीं आए, दोस्त थे दोनों।
0: अच्छा चले, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुश रहें, थैंक यू वेरी मच।
3: भैया एक बात,
0: जी जी,
3: आप मेरी शादी पे आ सकते हैं?
0: हाँ बुलाएं, कब है?
3: रमजान के बाद।
0: इस रमजान के बाद? ठीक है, डन करें। मैं उधर आ तो जाऊं, ये ना हो बाद में मुझे उधर तुसी बन के छितर ही ना मारो। मैं एक तो है, मैं कहां, मैं कुड़ी ले आऊं, वो कह नहीं, उन्होंने तो बुलाया नहीं, वो कह मुंडे हाल वो दोनों ही डाल के मारन, ऐसे ना करना।
3: नहीं भैया मैंने अब्बू से पूछ के आपको बुलाया, बाकी किसान भाई भी आएंगे, सारे आएंगे, आप भी आइएगा।
2: अरे मुझे याद है आपने मुझे ही बुलाया।
0: डन जी डन, जरूर जरूर।
3: हाँ सब भाई आएंगे मेरे, हिजाम भाई आएंगे, नुमान भाई आएंगे, सारे आएंगे
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी नहीं आएगा इनमें से।
3: जी नहीं मेरे साथ में बिल्कुल भी नहीं।
0: चले
3: ठीक है,
0: चले जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू फॉर योर कॉल जी,
3: शुक्रिया
0: भैया, अल्लाह हाफिज़। आओ जी, क्या हाल है? हेलो,
4: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, कैसी हैं नीला जी आप?
4: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ।
0: बड़ी गल है, कॉल मिल गई ताड़ी
4: है ना? नहीं मिल रही थी, मैं जो फर्स्ट कॉल थी उसके बाद से मैं मिला रही हूँ।
0: बड़ा ही दुख हुआ आज आपकी कॉल मिली है। अच्छा क्या कह रही हैं आप?
4: ओहो आप दुख में चले गए,
0: शदीद शदीद
4: हाय अल्लाह
0: अशदीद,
4: बस इसी चीज से मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: वेरी गुड।
4: अच्छा सात दीवार पे बैठे आपको, उनको बहुत सी दुआएं।
0: थैंक यू वेरी मच। मुझे बताएं रिश्ते, रिश्तों के तकादे बदल जाते हैं या वाकई रिश्ते बदल जाते हैं वक्त के साथ साथ?
4: अब जो रिश्ते हैं कोई चीज तो है नहीं ना,
0: नहीं बंदे ही होते हैं ना वो, रिश्तेदार हाँ, होते हैं ना।
4: हाँ तो इंसान में वक्त के साथ साथ चेंज,
0: बल्कि ऐसे कर लेना इंसान बदल जाता है या वक्त के तकादे बदल जाते हैं जिसकी वजह से रिश्ते बदलने लगते हैं?
4: वक्त के तकाजों हालात की वजह से इंसान बदलते हैं।
0: अच्छा बिल्कुल,
4: फिर रिश्तों में भी चेंजिंग आनी शुरू हो जाती है।
0: अच्छा,
4: हालात बदल देते हैं ना इंसान को, मजबूर कर देते हैं हालात कुछ ऐसे आ जाएं तो, मगर फिर भी कहते हैं ना कि मजा तो तब बनना कि कुछ भी हो जाए हम ना बदलें।
0: हाँ
4: लेकिन हम बदलते हैं।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आप बदल जाती हैं।
4: वक्त और हालात के साथ साथ इंसान बदलता है, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ना बदलें। अब मैं नहीं चाहती कि मैं बदलूं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिस पे खामोशी या जैसे कहते हैं ना पहलू तो ही करनी पड़ जाती है।
0: नहीं मैं तो बदलता रहता हूँ जी, सीधी गल है, ऐवें मैं कहूं मैं नहीं बदलता, मैं सीधा बदलता, मेरा कभी चिट्टा कहां होता है कभी काला होता है।
4: चिट्टा कहां होने में सुनिया
0: ना, मेरे तो नीले पीले भी होते ने, लोगों के तो सिर्फ चिट्टे और काले ही होते हैं, मेरा कहां नीला भी होता है, पीला भी होता है, हरा भी होता है, वक्त के साथ साथ बदलता रहता है मौसम के मुताबिक, हालात के मुताबिक।
4: ओहो
0: हाँ, मेरे तो हाथी, मेरा तो हाथी उड़ भी लेता है।
4: बहुत तरक्की करो,
0: नहीं ऐसे ना के आप कहें कि बहुत अग्गे जाओगे।
4: हाँ बस फिर वो कहेंगे अग्गे जाओगे अग्गे।
0: हाँ नहीं फिर मैं फिर अगली गाल भी करता ना मजा फिर आता ना।
4: अग्गे अग्गे जा रहे हो जड़े। नहीं जी नहीं, जैसे जैसे बस अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, जितनी जितनी जिसको जरूरत है उसी हिसाब से बहुत आगे ही ना निकल जाना जी, जन्नत तो आगे कुछ नहीं जाएगा।
0: हाँ नहीं ये भी है, बाहर जाना तो है ही है, आज नहीं तो कल
4: चलेगा। अल्लाह खैर रखे और सबके लिए आपके लिए बहुत सी दुआएं। टॉपिक बहुत गहरा था, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू, आप डिफाइन भी करेंगे तो बहुत खूबसूरत करेंगे।
0: थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। वजीहा आसिम, रिश्ते बदल जाते हैं, आरजे वजीहा आसिम, कैसी हैं आप? फिजा राजपूत, बड़े हंस रही हैं आप। हिरा फातिमा, मेरी भी शादी है। अच्छा हूँ मैं शादियां तक आना शुरू कर दूँ, ये भी गल ठीक है। ठीक है, तू तो बुलाना नहीं, तेनू ही ऐसी बुला ली है, ये भी गल ठीक है। चलो ठीक है हिरा, मैं तुम्हारी शादी पर भी आऊँगा। ठीक है, निमरा शाह है, इंसान बदलता है चाहे अपनी बात ही की जाए, वक्त नहीं बदलता। हाँ हमारी प्रायोरिटीज बदलती हैं, हम बदलते हैं, और जब हमारे रवैये किसी बेस पर लोग हमें वैसे ही ट्रीट करते हैं तो हम कहते हैं लोग बदल गए हैं, आखिर हम भी तो लोगों में ही शुमार होते हैं। निमरा बहुत अच्छी बात की है, वेरी वेल सेड, यही बात मैं भी कहता हूँ। अच्छा जी भाई, बदलता वो है जिसको शैतान बहकाता है, ऐसे तो ना कहें अब आप कौन सी तरफ ही ले गए बात को। इकरा आपको बताया, इस्लामाबाद कॉल करने के लिए आपने 042 के बजाय 051 लगाना, 051-111-0101। लाहौर के लिए 042-111-0101 लगाते हैं, कॉल मिलती है। बिलाल न्याजी हैं रावाली से, किसी शाम हमें भी याद कर ले या कर दोस्त, पुराने सही पर जिंदा तो हैं, हाय हाय
5: क्या बात।
0: अभी यहाँ पे मेरे पास आए हैं, तशरीफ लाए हैं, अहमद बिलाल आए हैं, बड़ी मेहरबानी, और इनके साथ हैं नयान अब्बासी। दो बंदे जो हैं मेरे तो खैर टारगेट पे हैं, एक तो ये बेटा शहीद और एक नयान। नयान की जबान पे इसको कंट्रोल नहीं है, खैर इसे ये भी नहीं पता होता किसके सामने क्या बात करनी है और क्या नहीं, कहाँ पे कौन सा लफ्ज बोलना है और कौन सा लफ्ज नहीं बोलना,
5: किसको कौन सा बोल।
0: और ये शहीर जो है ये वो है कि आपके साथ बैठेगा लेकिन आप में ही नुक्स निकाल के किसी दूसरे को अच्छा कहेगा, है ना। ये दो चीजें मैंने नोटिस कर ली दोनों में, और ये चेक भी करना, बाकी मामलात भी ऐसे ही इसके जिंदगी के मुझे लगता है कुछ होंगे। हाँ अच्छा जी, बारी बारी जरा अपना ओपिनियन दें आप लोग। रहमान अनवर साहब तो अभी तशरीफ नहीं लाए जी, आप बताएं लोग बदल जाते हैं या वक्त के तकाजे बदलने पे मजबूर कर देते हैं, लोग खुद से बदलते हैं?
2: आई गेस जो आपके साथ
0: एक्चुअली बेसिकली
2: लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको बदलने पर मजबूर कर देती है, डेट इज माई पर्सनल टेक, क्योंकि समटाइम्स एक सर्टन टाइम स्पैन में लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और होती हैं, बट जब वो एक डिफरेंट टाइम जोन में जाते हैं तो वो कुछ और बन जाती हैं. एंड व्हेन यू लव समवन, व्हेन यू वांट समवन इन योर लाइफ, तो उनके जो तकाजे हैं बेसिकली यही हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस उनकी हैं आप उन पे पूरा उतरने की कोशिश करते हैं. एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न जो आपको बदलने पे मजबूर करती हैं.
0: ओके हाँ जी बिलाल, आपका क्या ओपिनियन है? तुमने तो आना था मेरा ख्याल है 10 बजे. वैसे तो मैंने कहा था आज के शो में ना किसी को मेरे साथ बिठाया कर.
6: नहीं वो मैं इस पे डिस्कस करता हूं. सर मुझे ऐसा लगता है कि
0: जो मर्जी कर ले.
6: मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त के तकाजे होते हैं,
0: माइक के पास आ गए,
6: वक्त के तकाजे वो बदल जाते हैं. हम जब मैच्योर होते हैं हमें बहुत सी चीज़ें हम ऐसी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मतलब इन मैच्योरिटी में ना आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ठीक लग रही होती हैं. हमें लगता है कि यार ठीक है ये चल रहा है चलने दो. टाइम के साथ साथ हमसे जब लोग ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट करना शुरू हो जाते हैं तो वो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है. तो वो तकाजे ही होते हैं. तो मेरा ख्याल है तकाजे बदल जाते हैं, इंसान नहीं बदलता, इंसान वैसे ही रहता है, उसकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं समटाइम. उसकी जैसे फैमिली आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही होती है तो उस टाइम आपको थोड़ा सा मैच्योर होकर सोचना पड़ता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान बिल्कुल नहीं बदलता वक्त के तकाजों के साथ. वो थोड़ा सा चेंज उसमें ये आ जाता है कि वो बहुत सी चीज़ें जो एक्सपेक्ट कर रहा होता है वो जब नहीं होती तो वो थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है.
0: ओके वेरी नाइस, वेरी नाइस. बख्तावर कयानी 1 2 3 4 आपने दिल भेजे हैं. चार ही बंदे बैठे हैं इधर. आपको कैसे पता था? हेरा फातिमा ज़रूर सर वेलकम. शादी की फ़ोटो तो आपकी डीपी पे लगी है, ये क्या है? अच्छा अब रुखसती होनी होगी. वैसे पकाएंगी क्या पहले ये बताएं फिर आने का सोचा जा सकता है. ऐसे थोड़ी आना है मैंने. हेलो
7: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम
7: सर, क्या हाल है?
0: अच्छा है.
7: वो जो मैं साजिदा बात कर रही हूँ.
0: मैं आज डॉक्स बात कर रहा हूँ.
7: हाँ जी मुझे पता है,
0: मुझे भी पता है.
7: इतनी खूबसूरत स्वीट आवाज हमारे आरजे की होनी है.
0: जाहिर है आप सारों की ऐसी तारीफ करती हैं.
7: ना करें. किसकी मैंने की है?
0: सारों की. और अच्छी बात है, खुश करना चाहिए लोगों को.
7: सबकी अपनी अपनी जगह पे और अलग अलग होती है.
0: नहीं नहीं इसमें कोई मजाक़ा तो नहीं है, तारीफ करते.
7: नहीं नहीं मेरी बात सुने सबकी. देखिए जितने आरजे है ना सबकी अपनी जगह और अपनी तारीफ.
0: नहीं जाहिर है आप कट्ठे तो रहते नहीं, अपनी अपनी जगह पे ही रहते हैं सारे.
7: हाँ ना बिल्कुल.
0: अगर कट्ठे रहते होते रूममेट होते फिर आप कहते सबकी अपनी अपनी जगह नहीं है. लेकिन फिर
7: नहीं फिर भी हटके है अलग.
0: हाँ अपनी अपनी जगह नहीं लेकिन बेड सारों के अपने अपने लगे हुए.
7: तारीफें थोड़ी चेंज हो सकती है लेकिन होती है सबकी होती है लेकिन चेंजिंग होती है फिर.
0: अच्छा अच्छा आप तकाजे के मुताबिक बदलती रहती है.
7: और सब रिश्ते के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन मेरी नजर में देखा जाए ना तो रिश्ते बदलते तो हैं लेकिन वक्त ज्यादा बदलता है.
0: आपने अपनी आंखें इस शो के बाद भेजनी है क्योंकि मैं आपकी नजर से देखना चाहता हूँ.
7: मैं बताती हूँ ना आपको. देखिए रिश्ते है ना, रिश्तों को हम कुछ गलत बात करेंगे कुछ कहेंगे तो वो चेंज होंगे. तो वक्त और टाइम एक ऐसी चीज है भागता ही जाता है और ये दोनों चेंज होते हैं वक्त भी और इंसान भी. हमें सबक दे के जाते हैं, मजबूत करते हैं. हम इन दोनों की वजह से ना मजबूत होते हैं. अगर ये वक्त यानी कि हम ना सबक दे तो हम मजबूत कैसे हों?
0: तो विटामिन D3 से नहीं मजबूती आती?
7: हाँ जी कुछ ऐसा ही है
0: ना. उसे कहते हैं हड्डियों में मजबूती आती है. कैल्शियम भी रोज लेना चाहिए, उससे भी बड़ी मजबूती आती है आपके.
7: लेकिन सब कह रहे हैं ना रिश्ते बदलते हैं, बदलते वो भी है लेकिन मेरे नजर में या मेरे अंदाजे से ना ज्यादा वक्त बदलता है.
0: वक्त बदलता
7: है. हाँ जी हाँ जी ज्यादा ये वक्त यानी कि टाइम बदलता है. जैसे हम एक होता है ना आप एक कमरे में जैसे रिश्ते जो भी रिश्ते 2-4 रख लो
0: जो बैठा दो मैं कट्ठे रख
7: तो
0: एक फूफी है
7: तो वो देखे
0: एक खाला है
7: अगर हम
0: एक मामा है.
7: हाँ जी बिल्कुल
0: एक चाचा है हुन दसो
7: हाँ जी
0: की करना कठी लड़ा दी है या बारी बारी
7: नहीं नहीं लड़ाना क्यों है
0: अच्छा आपने कठे रख दी है ना
7: नहीं मेरा मतलब सबको ना कठा
0: खुला छोड़ दिए
7: बिठाओ बात तो सुने ना
0: अच्छा सुनाए सुनाए
7: तो अगर हम उनको कुछ कहेंगे वो चेंज आए होंगे तो जो वक्त है टाइम है वो निकलता ही जाता वो भागता ही जाता वो नहीं रुकता और ना ही रुकेगा ना वो पकड़ा जाता टाइम और ये रिश्ता हाँ जी लेकिन मेरी नजर में दोनों बदलते हैं दोनों चेंज होते हैं
0: बिल्कुल ठीक अच्छी बात हाँ जी वक्त के
7: और जैसा आपका टॉपिक है ना इस टॉपिक के हिसाब से ना एक सॉन्ग लगा देंगे
0: जी जी बताएं
7: मेरे दिल में रहने वाले रिश्ते नहीं बदलते
0: मेरे दिल में रहने वाले रिश्ते नहीं
7: हाँ जी ये नहीं डॉक्टर का है और नहीं डॉक्टर का
0: ओके
7: हाँ जी और ये सब मेरे दोस्तों के नाम लगा दे आपके लिए बहुत ज्यादा दुआएं और अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज
0: अल्लाह हाफिज साजिदा थैंक यू वेरी मच हीरा फातिमा कहती है जो आप कहेंगे सर वो बना लेंगे अड्डे तुझी चंगे रहने नहीं ताड़े शरीका नहीं चढ़ना जिन्होंने जंज लैके आनी है उन्होंने रुस जाना है मैं जो कहूंगा हूं रोटी तुझी दाल चावल पकाओ मैं खाना है अब बरात आएगी उसे दाल चावल खिलाएंगे आप है बूफे लगा हुआ ऐसे करके उठा रहे हैं थलो दाल निकल रही है तड़के वाली पीली ऐसे साथ उबले हुए चावल मैं कह रहा हूं मैं तो बड़ा खुश होऊंगा अगे दा मैं पता नहीं की होएगा है ना I like the combination जी अस्सलाम वालेकुम
8: जी बिस्मिल्लाह वालेकुम सलाम क्या हाल है जी ठीक है आप
0: जनाबे अली शहजाद साहब
8: माशाल्लाह जी बहुत अच्छा प्रोग्राम और आपकी बात बहुत प्यारी अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे
0: जी
8: बहुत ही दुआएं आपके लिए जी और हमारे भाई नहीं आ रहे जी आज ये जो
0: रहमान आ रहे हैं नहीं आए
8: रहमान नहीं वो अरे आप तो ये ठीक है उनकी जिया भाई की
0: नहीं आप दुआ करें अल्लाह जिया कुछ
8: अल्लाह ताला बेहतर करेगा हमारी दुआ है उनके साथ तो ये देखे जो आपका मौजू है ना
0: जी मेरा मौजू
8: ये ये हमारा मौजू है माशाल्लाह जी ये देखे जो जिसने गुर्बत देखी है ना गुर्बत में आके सब सब का पता चलता है कि कौन हमारे साथ है कौन नहीं है
0: बहुत अच्छी बात है
8: कौन रिश्तेदार है कौन भाई है कौन दोस्त है पता फिर चलता है जी
0: बिल्कुल
8: जब पैसा कौन हो फिर कोई रिश्तेदार सब मेरे लगते
0: घर दाने उन्होंने कमले भी सियाने
8: क्या बात है जी साड़ी
0: माशाल्लाह
8: हां जी बिल्कुल इंजी गल है जी ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ
0: ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਪਾਣੀ ਚ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ
8: आपने
0: बहुत अच्छी बात की है पता गुर्बत वाली अल्लाह के हजूर की हदीस मुबारक भी है मुफलिसी जो इंसान को बड़ी आगे की हाथ पर ले जाती है
8: सफर
0: के करीब ले जाती है पता मुफलिसी कि आपका अकीदा आपके ख्यालात आपके तसव्वुरात सब बदल जाते हैं अक्सर मुफलसी की वजह से है ना बहुत अच्छी बात की शिजात साहब खुश रहे थैंक यू वेरी मच
8: बहुत मेहरबानी आपके लिए बहुत बहुत दुआएं सब आरजे के लिए
0: बहुत शुक्रिया थैंक यू जी थैंक यू स्टाइलिश पख्ताना अस्सलाम वालेकुम टू ऑल वालेकुम सलाम आई एम योर पठान सिस्टर फ्रॉम केपी के मुझे क्यों नहीं पता था मुझे तो आज पता चला है मेरी केपीके में बहन भी है आपने पहले क्यों नहीं बताया इतने साल किधर ही कितने साल की हो गई बताए ना जरा रहमान भाई कैसे हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो
9: वालेकुम
0: वालेकुम अस्सलाम जी
9: सर क्या हाल है ठीक है
0: अच्छे हाल है जी कौन साहब है हमारे साथ जी हेलो हेलो, दाल चावल बन जाएंगे सर, हुक्म सर, सद जाने जान दे यार, दाल चावल बन जाएंगे। मुझे हीरा कहती है आप मेरी शादी पे आए, मैं कहा ठीक है क्या बनाओगी, कहती जो आप कहें, मैं कहा दाल चावल बना लो। बारात आएगी बूफे चुकेगी, एक दाल एक चिट्टे चावल, मैं कहा मैं तो राजी जाऊँगा, बाकी का पता नहीं। एनीवेज जी, रहमान अनवर आ चुके हैं और मौजू ये था कि वक्त के साथ साथ रिश्ते बदल जाते हैं। डेफिनेशन इज़ वेरी सिंपल, इंसान बेसिकली बदल रहा होता है ना। और मैंने फिर ये बात, दूसरी क्वेश्चन ये था कि तकाजे बदलते हैं, और इस पर बड़ी अच्छी बात की शहीद ने भी, बड़ी अच्छी बात की, और फिर अहमद बिलाल ने बड़ी अच्छी बात की, और इसके अलावा हमारे पास नयान भी है यहाँ पे। नयान आप क्या कहते हो इसके बारे में?
10: इंसान बदलता है वक्त के साथ साथ, आपकी तरजीहात, आपकी प्रायोरिटीज़ बदलती हैं, आपकी पसंद बदलती है, आपकी नापसंद बदलती है, आप चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं।
0: मतलब आज जिसको पसंद करते हो, दो साल बाद किसी और को कर लोगे,
10: ये भी डिपेंड करता
0: है। ये मैसेज आ रहा है जो भी है, जहाँ भी है, नयान के ख्याल ऐसे हैं, ठीक है, तो वो वक्त के साथ साथ अपनी पसंद भी बदल लेंगे, तो आप पहले से ही मोहतात रहे।
10: हाँ जी, अच्छा। लेकिन जिसको आप पसंद करते, जरूरी नहीं है कि आप और चीजों से रिलेटेड में बात कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, जो नहीं, आप पसंदीदा शख्स है उससे रिलेटेड तो ये बात नहीं हो सकती, ऐसे नहीं होता कि वो भी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है,
0: ऐसे नहीं होता।
10: यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान, जाना तो पसंदीदा शख्स जरूरी नहीं है बदले,
0: मन भी गया नाल मौसम की अदा देख के याद आया किस कदर जल्दी बदल जाते हैं इंसान। आए आए जाना सर, क्या जाना, चल निकल जाना जी, बताएं बताएं
6: सर मुझे।
0: हाँ ये जनाब ए आर नासर, कैसे हो जी, बताएं
6: सर। मुझे ऐसा लगता है कि जो वक्त है वो इंसान को बदल देता है, और बदला हुआ इंसान रिश्तों को बदल देता है, तो मुझे ये लगता है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है,
0: वक्त इंसान को बदल देता है।
6: हाँ, और बदला हुआ इंसान रिश्ते बदल देता है।
0: ओके, अच्छा जी, वजीहा आसिम कहती है आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम टू हैदराबाद। वजीहा आप कहाँ कहाँ जाना चाहती हैं, हमारी बड़ी अच्छी आदत है, इनको घूमने फिरने का बड़ा शौक है। हैदराबाद आना है आपने सर, आप ऐसा करें मेरे हिस्से के पकवा के भेज दें। यार नासिर कैसे हो?
11: सर ठीक ठाक सर, आप सुनाएं कैसे?
0: बड़ा यार तुम लोग गलत है, तुम लोगों की रविश है, मैंने हिसाब लगाया टाइम पे नहीं आते।
11: नहीं बस सर, अभी मेरा टाइम मुझे ये मिला हुआ था 12 से 2 का,
0: तो 12 तो आए नहीं आप लोग,
11: बस थोड़ा सा आपको
0: आपको कैसे पता चला रहमान लेट है?
11: आपको सुन रहा था मैं लाइव।
0: नहीं वो तो मुझे सुन रहे थे, ये कोई तरीका नहीं है, अगली दफा लेट कोई आए ना रहमान भाई,
11: बस
0: ना बिठाना, सामने बिठाना पूरा एक घंटा, उसके बाद फिर बुला लो।
12: हेलो
0: जी, हेलो
12: हेलो
0: हेलो

0: अच्छा, हम बात कर रहे हैं, आप अपना ओपिनियन दो।
1: बिल्कुल सर, मैं सुन रहा था आपका, आपकी बात भी मैंने सुनी है, तकरीबन डेढ़ घंटे से आपको सुन रहे हैं, गर्मी भी सारे आपको ही सुन रहे हैं, और
0: मजबूरी है, उन्होंने कहा आज हमारे बेटे ने आना है तो आज रेडियो तो सुनना पड़ेगा।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: उस चक्कर में मुझे भी सुनना पड़ेगा।
1: एट टाइम्स लगाते हैं आपका शो वेनसडे और थर्सडे को, जो रात को 10 से 12 होता है।
0: अच्छा, तो ओपिनियन
1: मेरा सर ये है कि हकीकत में ऐसा है कि इंसान की फितरत में लिखा है कि उसने बदलना है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है।
0: इट्स डीप, इट्स डीप।
1: कोई ये नहीं कह सकता कि बदल नहीं सकते, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी में एक चीज़ है, जो चीज़ आप हर दिन खाते हो ना,
0: रोज़ नहीं खाई जाती,
1: तो रोज़ नहीं खाई जाती, तो जो आदत आप हर दिन कर रहे हो ना, अगले दिन आप कहते हो आज कुछ चेंज करूँ,
0: आज कुछ बदल देना चाहिए।
1: मेरा ये टेक है सर, लेकिन आपको बेहतर इस बारे में अंदाज़ा होगा।
0: बहुत अच्छी बात की आप सारों ने, मेहर का एक मैसेज है वो शामिल करता हूँ, फिर मैं कंक्लूड करूँगा। सर, आपने थर्सडे को बोला कि मिस क्या होता है, तो मैसेज क्या होता, आरजे रहमान ने खफा का ओएसटी
1: ऐसा होगा।
0: बहुत अच्छी बात की आप सारों ने, मेहर का एक मैसेज है वो शामिल करता हूँ, फिर मैं कंक्लूड करूँगा। सर, आपने थर्सडे को बोला कि मिस क्या होता है, तो मैसेज

0: को पहला मैसेज भी मुझे याद है। अच्छा, बात यह है कि आप सारों की राय अपनी जगह पर मुकद्दम है। और कैसर महमूद, ये कौन है? अच्छा जी, अब ये भी कह रही है मेरी शादी पे आए मारिया मेरी बात सुने मेरी बात सुने, मतलब मेरी शादी पे आए, मेरी शादी पे आए। बंदा ये कह देता मेरे से शादी कर ले
1: बाद
0: में फिर आगे लिख देता है, मैं मजाक कर रही थी तो खुशी हो
1: तो यार आप मतलब
0: है ना। हाँ, बंदा किसी को कह रहा हो, लाजमी थोड़ी है आपको कह रहा हूं मैं। हाँ, किसी और को कह रहा भी हो सकता हूँ कि यार बंदा ऐसा मैसेज ही कर देता है जब इतने लोग मुझे बुला रहे हैं शादी पे। एनीवेज,
1: एक से रिक्वेस्ट है आपसे,
0: हाँ जी,
1: थोड़ी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे भाई हैं बड़े
0: जी,
1: जो कि अभी क्वेटा में जो है अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं पाक फौज में, तो उनके आज बर्थडे है।
0: That's good, that's
1: तो वो मुझे उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि काइंडली जो है ना अगर वो मुझे बर्थडे मैसेज कर दें, लाइव रेडियो पे सुन रहे हैं आपको वो भी, तो इट वुड बी ग्रेट। लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला,
0: जबरदस्त,
1: तो उसको सर आप काइंडली विश कर दें।
0: हाँ ना, करते हैं, चलो इकट्ठे करेंगे
1: जी।
0: 1 2 3 गो। लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला।

0: अब आपने ना वहां से आते वो कुछ लेके आना बस खाली
1: ठीक है
0: आप तक हमारी विश पहुंच गई है
1: जी जी बिल्कुल हम तक पहुंच गई होगी अभी
0: बहुत सारी दुआएं आपके लिए और इसी तरह से खुश रहें और इसी तरह से ये हमारे जो है ना यकीन करें सीने फखर से बुलंद रहते हैं एंड आई लव इट कि जब मुझे पता चलता है कि यार ऐसे ऐसे लोग यंग जनरेशन दे आर स्टिल हैप्पी दे आर वेरी मच एक्साइटेड टू जॉइन पाकिस्तान आर्मी दे आर रेडी टू सर्व द कंट्री बड़ी खुशी होती है थैंक यू वेरी मच जी FM 101 की तरफ से भी आया मैसेज हैप्पीएस्ट बर्थडे लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला के लिए सलमा राशिद साहिबा ने सलाम किया वालेकुम अस्सलाम बड़ा शौक है शादी का बच्चे लग पता चलेगा छोड़ दिया शौक खत्म आपका मैसेज पढ़ते ही खत्म नहीं है कोई नहीं है यकीन करें ऐसे ही कह रहा था मैं आपके लिए महीन आपकी ब्राइडल है महीन ये कौन है ये कहां से है मुझे नहीं बताया तुमने हीरा महीन नाम आ गया ब्राइडल का अच्छा चलो ठीक है एनीवेज हम बात कर रहे थे जी रिश्ते या तकाजे होता ये है बहुत सारी चीज़ें होती हैं तकाजे नहीं बदलते ना आप बदलते हैं आपको एक जो बाहर से कहा जाता है ना जी फलां चीज़ का तकाजा था उसने मुझे बदल दिया फलां मजबूरी हुई उसकी वजह से मैं बदल गया ऐसे होता नहीं है आप जब तक ना चाहें कोई शय आपको नहीं बदल सकती आज मैं बात करता हूँ या मेरे सामने बैठे हुए हैं यंग जनरेशन है एंड इंशाल्लाह ये आगे हमारी जगह को जल्दी फिल करेंगे हमें रिप्लेस करेंगे इनमें से कुछ यहाँ पे रुकेंगे कोई आगे जाएंगे हर किसी का अपना शौक है कुछ आरजे बनेंगे चाहेंगे तो बनेंगे मैं अपने अम्मा अब्बा की बहुत इज्जत करता हूँ मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी गुफ्तगू क्या है मैं करता हूँ और मेरा दिल करता है यार मैं सबको खुश देखूं अपने गिर्द मेरा दिल करता है मैं चाहता हूं उसकी आंख में कभी आंसू ना आए मैं चाहता हूं वो मेरी चाहत है अनलेस कि मेरी अगर चाहत नहीं होगी तब तक इफेक्ट नहीं करेगी कोई चीज़ वरना लंबे लंबे भाषण रोज दिए जाते हैं जब हम यूनिवर्सिटी कॉलेज में थे तो तब भी मुझे बिठा के बड़े लोगों ने समझाना पढ़ो ये करो वो करो ऐसे होगा वैसे होगा मैंने समझने की बजाय साल पूरा पढ़ाई छोड़ दी मैं फ्रीज कराया सेमेस्टर में अगर खसमानू खाओ तुसी की तंग कीता रोज समझाना चाहते मैं पढ़ना ही नहीं मैं आपसे

राइट वर्स अगेन, वेलकम बैक। तमाम सुनने वालों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं रहमान अनवर आपके साथ साथ। 12:30, टाइम हमेशा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, लेकिन क्या करें, क्या करें भाई, है ना। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम नाइट थेरेपी आरजे डॉक्स के साथ आप सुन रहे थे, उनके साथ इंटर्न्स भी हमारे मौजूद, और इस इनको हम ऐसा कह सकते हैं कि अपकमिंग आरजेज। यस, सो जल्दी ही आप इनकी आवाज़ सुनेंगे। मैं बस थोड़ा सा ना एक प्रॉब्लम में आ गया हूँ, चीज़ें बिखरी हुई हैं, समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही कुछ चीज़ें सिमट जाती हैं तो मैं फिर आपसे बात करता हूँ। वो बातें जो आप सुनने के लिए हर बुध की रात 12 से लेकर 2 बजे तक तशरीफ़ लाते हैं, थैंक यू वेरी मच। अधूरी बातें रहमान अनवर के साथ। बाय द वे, एक ट्रैक और है कमली और हदीका क्यानी की खूबसूरत आवाज, प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं, वापस आएंगे। आपने कहीं जाना नहीं है, सुनते रहना है FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर। इस समय हमारी आवाज लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा, हैदराबाद, मुल्तान, सरगोधा, सियालकोट और जाने कहां कहां, जहां जहां तक हमारी 101 की फ्रिक्वेंसी सुनी जा रही है वहां वहां तक हमें सुना जा रहा है। और इसके साथ साथ डिश के ऊपर 70 मुल्कों से जायद ममालिक में हमारी ट्रांसमिशन लाइव सुनी जा रही है। इसके साथ साथ www.radio.gov.pk हमारी ऑफिशियल वेबसाइट का एड्रेस। मैंने अभी तक पोस्ट भी पिन नहीं की, मैं चाह रहा हूँ कि किसी तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो पोस्ट जो है वो अपलोड कर दी जाए ताकि आप वहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपने होने का हमें एहसास दिला पाएं। लेकिन एक ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं, थोड़ी सी चीज़ें ज़रा स्टेबल हो जाएं, और फिर उसके बाद हम वो बातें जो आप सुनने के लिए यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ हमारे इंटर्न्स, हमारे अपकमिंग आरजेस मौजूद रहेंगे और उनसे हम चैट चैट करेंगे, बातें करेंगे, दिल की सारी बातें आज उनसे निकलवाने की कोशिश करेंगे। वो बातें जो जेंजी छुपा कर रख लेता है, ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बताने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन वहाँ जहाँ पे उसे लगे कि हाँ मुझे लगता है कि वाकई में यहाँ पे यकीन से तमाम चीज़ें कही जा सकती हैं, हमें समझने वाले लोग मौजूद हैं। सो ये ट्रैक सुनते हैं, वापस आता है।

0: FM 101, The Sound of New Millennium.
1: सरल संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: और ज़बां पर कच्चे पक्के खाबचों का जायका है। ये सुहाना वक्त जिसमें सब्जांचल ओढ़कर चलती हवा भी खुशबुओं के दामनों पे पांव रखती और दरख्तों के धुले पत्तों शगुफ्ता टहनियों से राज की सूरत गुजरती जा रही है। ये सुहाना वक्त तुझसे गुफ्तगू का वक्त है, लेकिन अभी तक फोन की घंटी पर एक संगीन खामोशी का पहरा है। घड़ी की सुइयां सीने में खंजर की तरह चुभने लगी हैं, वक्त कांटे की तरह हुलकूम में अटका हुआ है बस एक हेलो सुनने के लिए। हाँ हाँ, लज्जत एहसास से कुर्बे यार में डूबी हुई बस एक हेलो सुनने के लिए, जिस्म जहां का हर मसाम अब मुंतजर है, लेकिन है जाने जहां क्यों खामोशी है, क्यों ये धड़कन सीनाए खाली की मेहराबों में टेलीफोन की घंटी की सूरत थम गई है, क्यों तुम्हारे हाथ की पोरों तक आकर मुझसे बात करने की तमन्ना जम गई है, इन गुलाबी पत्तियों जैसी सुबक पोरों में मुझसे बात करने की तमन्ना को जगा, डायल घुमा जाना कि सीने में अटकी हुई धड़कन चले, घंटी बजे, फिर देर तक और दूर तक शबनमों से तर सावन गिरे, डायल घुमा जाना। राइट जी, प्रोग्राम का तो बाकायदा आगाज हम पहले ही कर चुके हैं, लेकिन अभी दिल चाह रहा था कि एक नज़म से थोड़ा सा तसलसल और वो जो यकसुई की कैफियत होती है जब हमारी सारी सोचें मरकूज हो जाती हैं किसी एक निशाने की तरफ, किसी आंखों की तरफ, उसके गालों की तरफ, बालों की तरफ, चेहरे की तरफ, या फिर उसकी और हमारे दरमियान गुजरे हुए उन तमाम गुजर बसर औकात की तरफ। बिल्कुल उसी तरह से यकसुई की कैफियत तारी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप से मिलता हूँ तो फिर आपका आपसे मिलना तय हो जाता है, आसान हो जाता है। अपने आप से मुलाकात करना, अपने आप से बात करना, अपनी ज़ात को समझकर उस नहज तक, उस जगह तक पहुंचना कि हाँ क्या चाहता है मन। हम हमेशा ये दावा करते रहते हैं कि मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। पता नहीं हमारे जहन में ये ख्याल कैसे आता है कि एक पूरी कायनात को कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे ये दावा कर सकते हैं कि तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं ना, हो सकता है आप में से भी बहुत से लोग ऐसा कहते हो, लेकिन मैं आज आपको सच्ची बात बता दूं। हो सकता है कि आप उसे अच्छे लगते हों, आप उसे अच्छी लगती हों, हो सकता है कि उसका दिल चाहता हो कि ये ताल्लुक शायद मैं कुछ ऐसा इमोशनल डिस्कशन करूं, ऐसी इमोशनल बात करूं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाए और पर्सनल भी हो जाए और शायद कहीं ना कहीं उसको टच भी हो जाए। आजकल स्टाइल भी यही तो है ना, कुछ ऐसा कर दो कि जो उसके वहमो गुमान में भी ना हो, फिर हर वक्त तुम उनकी यादों का हिस्सा बनकर रह जाते हो, उनकी यादों में बाकी रह जाते हो। हमारे इंटर्न्स भी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सारी बातें करेंगे आज उनसे, एक घंटा और 11 मिनट, क्योंकि 2 बजे हमें ज्वाइन किया करते हैं आरजे वसीम अहमद, जो कि 2 से 4 तक ऊंचा है शौक, बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम डिज़ाइन किया करते हैं। लेकिन उससे पहले हम 1 घंटा और 10 मिनट में कुछ ट्रैक्स भी प्ले करेंगे और साथ ही साथ आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और अपने इंटर्न से भी जानने की कोशिश करेंगे। अभी अचानक बातों के अंदर ही कोई ना कोई टॉपिक निकल कर सामने आ जाता है, कोई ना कोई बात निकल कर सामने आ जाती है। जैसे अभी मेरे सामने एक टॉपिक आ गया कि हम अक्सर ऐसा क्यों कहते हैं कि मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या वाकई में हम दूसरे इंसान को उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जान सकते हैं? यह सवाल इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं कि क्या, और आसान भी कर देते हैं कि क्या हम किसी इंसान को जान सकते हैं ये सवाल काफ़ी अच्छा रहेगा, क्यों दोस्तों? मैं ठीक कह रहा हूँ?
1: बिल्कुल सर।
0: कौन बोला है ये? शहीर बोला, क्योंकि मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा, और मैं चाहता हूँ कि मुझे नज़र कुछ ना आए ताकि वही वो हर तरफ बिखरी हुई नज़र आए। शहीर बोला है ये?
1: मैं बोलूं सर?
0: अच्छा, इसमें डरने की क्या बात है? खुलकर बोलना है, खुलकर बोलना है।
1: मैं बोलूं।
0: बिल्कुल, ये समझो कि डॉग्स के साथ ही बैठकर आप लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है ना? अहमद, क्या हाल है तुम्हारे? खैरियत से हो?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सर।
0: ये नहीं मैं पूछूंगा, ये तो मैंने वैसे ही कहा था।
1: सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर जो शख्स किसी को समझता है ना, उसे समझने वाला कोई नहीं होता। अगर मैं आपको समझ रहा हूँ ना, या मैं किसी को समझ रहा हूँ, तो मुझे कोई समझने वाला नहीं होगा। मेरी वो बातें कोई समझने वाला नहीं होगा, इतनी गहराई में
0: जाने वाला कोई नहीं। लाइट ऑन करो जरा, देखो क्या कह रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं अहमद? कि मैं अगर किसी को समझ रहा हूँ तो इसका मतलब है मुझे कोई समझने वाला नहीं होगा।
1: कोई भी शख्स किसी को समझता है ना, तो उसे समझने वाला कोई नहीं।
0: अच्छा, ये मैंने तुम्हारे अंदर पिछले प्रोग्राम के अंदर भी नोटिस किया है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम अपने अंदर ना दबाए हुए बैठे हो, तुम उनको खुलकर ना बयान नहीं कर पा रहे हो। शायद तुम्हें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, कोई डर है, कोई खौफ है कि अगर ये मेरा राज या मेरी बात अगर यहाँ हो गई, अगर खुल गई, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल की जाए। बाज़ वक़्त ऐसा होता है ना, हम किसी को बहुत करीब जानकर उसको अपने मन की और अपने आप की सारी बातें खुद बता देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कि यार ये इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है, मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हुआ। और फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जब वो दो लोग जिसको बताया आपने, वो जानी दुश्मन बन जाए, या आपस में कोई लड़ाई छोटी मोटी भी हो जाए, कुछ भी हो जाए,
1: बातें
0: सारी दुनिया को पता चल जाती है। यानी आजकल लोगों का ज़र्फ़ बड़ा गिर गया, बड़ा छोटा रह गया है ना।
1: बिल्कुल।
0: तो क्या इस तरह का कोई खदशा है, कोई ख्याल है मन में कि अगर मैं बता दूंगा? ये वाला एहसास अपने आप में एक सवाल है कि तुम ये कह रहे हो कि मैं अगर किसी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें समझता हूँ, तो मुझे कोई नहीं समझेगा।
1: बिल्कुल।
0: क्यों ऐसा?
1: मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से बहुत बहुत डीपली बात करूंगा या मैं उसे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा,
0: उससे कनेक्ट हैं आप डीपली बहुत ज्यादा
1: सर, वो हो जाते हैं आप विद द
0: टाइम मैच
1: हो जाती है। तो इतना डीपली मैं किसी के साथ बात करूंगा ना, उसे कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, तो वो शख्स मुझे लगता है मुझसे ना दूर होना शुरू हो जाएगा।
0: हाँ,
1: वो मैं नहीं चाहता कि मैं इतना,
0: मतलब ज्यादती तुम्हें लगता है अगर इमोशंस की भी ज्यादती हो जाए तो वो भी नुकसानदेह होती है?
1: बिल्कुल होती है।
0: यानी अगर आप खुलकर उसको सब कुछ बता दें कि यार तुम इतने कीमती हो, इतने अच्छे हो, है ना यार,
1: सर वो फिर वर्थ नहीं रहती आपकी। अगर मैं अभी बता दूंगा ना कि यार तुम इतने कीमती हो मेरे लिए, तो फिर मेरी उसकी नजर में ना वो वक्त नहीं रहेगी।
0: अच्छा, ऐसा कम हो जाएगी। ऐसा क्यों जहन में आ रहा है कि ये कौन से मायार हैं जो हमने सेट किए हुए हैं?
1: सर, ये बेसिकली ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है।
0: हाँ, मैं इसलिए जानना चाहता हूँ। ये तुम्हारा नहीं, ये बहुत सारे लोगों का है कि बस ध्यान से इतना मिलना है, इतना उसके सामने खुलना है, इतना बताना है। लेकिन बात तुम्हारी एक जो मेरे दिमाग में अड़ गई है ना, वो ये वाली है कि अगर हम बहुत डीपली किसी से कनेक्ट हैं, तो फिर हम ये मायार कैसे रख सकते हैं कि यार मैंने बस इतना खुलना है और इतना मैंने उसको बताना है कि मेरी उस इज्जत में भी कमी वाकई ना हो या प्रॉब्लम ना हो। ये हम कैसे तय कर सकते हैं जब हम उससे इतना डीपली कनेक्ट हैं? हमारे जहन में ये ख्याल आ कैसे सकता है? क्या क्या कहते हो तुम अब्दुल रहमान?
2: हाँ, जो एक इस्टेब्लिश हो गई हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। जैसे आपको मैं एक बात करूँगा, हमारी सोसाइटी में, हमारे ड्रामास में एक चीज़ डिपिक्ट की जाती है कि रोना और इमोशनली वीक होना लड़की की खसूसियत है।
0: रोना और इमोशनली वीक होना ये लड़कियों के अंदर पाया जाता है, मर्दों में
2: नहीं पाया जाता।
0: सही,
2: हमें ये डिपिक्ट किया जाता है ड्रामों में कि लड़के और मर्द बड़े इमोशनली और फिजिकली बड़े स्ट्रांग हैं, तो दे हैव नो फीलिंग्स। ऑन द अदर हैंड, छोटी छोटी बात करेंगे तो फीमेल को फील होता है। क्या ये चीज हमारी नेचर के खिलाफ नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि मर्द भी
0: फील कर सकता है, रो सकता है, उसका भी दिल चाह सकता है? शायद उसने ज़माने में इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इतनी सारी चीज़ों को समझते हुए, किसी एक ख़ास मुकाम पे, एक टाइम पे पहुंचकर वो हारा हुआ भी महसूस कर सकता है।
2: बिल्कुल।
0: उसको कोई खौफ भी महसूस हो सकता है, उसकी वजह से वो रो सकता है। नयान, तुम्हारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बात के ऊपर?
3: جیسے رحمان بات کر رہا تھا کہ اگر آپ وہ کسی کے ساتھ ڈیپلی کنیکٹ ہوگا, سب کچھ شیئر کرے گا, تو وہ شخص اسے دور ہو سکتا ہے, اس کو یہ خدشہ لگتا ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ سب ایسے نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے سوچ بھی رکھتے ہیں کہ جب آپ ان سے ڈیپلی چیزیں شیئر کرتے ہو, اپنے ایموشنز شیئر کرتے ہو, وہ آپ کے اور قریب آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہو.
0: ہاں, ان کو یہ احساس ملتا ہے کہ یار یہ میرے اوپر ٹرسٹ کر رہا ہے.
3: ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کا,
0: اور وہ کھل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے. اس کا دوسرا پہلو میرے سامنے ایک آ گیا, کیونکہ زندگی میں بہت سارے معاملات ہماری زندگی میں شہیر ایسے گزرتے رہتے ہیں نا. تو بعض اوقات کوئی ہمارے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے نا, ہم فلی اس کو پورے ظرف کے ساتھ اس کو اپناتے ہیں اور اپنے من کی ساری باتیں اس سے شیئر کرتے ہیں, اور اس کے ٹرسٹ کو کہیں پہ کسی بھی ایک مقام پہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ بریک ہو جائے, وہ ٹوٹ جائے. تو ہم اس کا سارا ہر اس خیال, اس سوچ کا احترام کرتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں اپنے اندر. لیکن کہیں نہ کہیں وہ انسان جو ڈیپلی کنیکٹ ہے نا ہم سے, وہ کسی ایک خاص مقام پر جا کر اپنی اتنی زیادہ عزت اور احترام دیکھ کر, اتنی زیادہ محبت دیکھ کر, یہ میں ریالٹی بیسڈ بات کر رہا ہوں, بالکل تمہاری اپوزٹ بات ہے. تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اگر ساری باتیں بتا دوں تو کہیں میری اپنی وقت اور عزت میں کمی واقع نہ ہو جائے. یہاں پہ بعض اوقات جس نے بتا دیا سب کچھ اور اس نے اپنا لیا, اس نے مطلب انہیل کر لیا, اس نے اس کو اپنے اندر سما لیا اور پھر اس کا راز بھی رکھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس نے بتایا ہوتا ہے نا, وہ ہی اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اگر یہ بات تم تک میں نے پہنچائی ہے نا, تو یہ بات ضرور کہیں نہ کہیں آگے ضرور پہنچے گی, پلیز اس کو بتانا مت. لفظ جب کبھی یہ والا سامنے آ جائے نا کہ اس کو بتانا مت, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تم ٹرسٹ نہیں کر رہے اس کے اوپر, اور بس غلطی سے کسی کمزور لمحے میں تم اپنی ساری باتیں اس کو بتا رہے ہیں.
3: بالکل
0: ایسا ہوتا ہے نا کبھی کبھی ہمارے ساتھ. بہرحال ہم اس ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے اور اس کے اوپر مختلف اینگل سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اس ٹاپک کو. اور جو ہمارے یہاں پہ لائٹ بلنک ہو رہی ہے کالز کی, کالز کو بھی ساتھ میں شامل کریں گے, ان سے بھی پوائنٹ آف ویو جانیں گے کہ کیا واقعی میں ہم کسی کو اس سے بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, جان سکتے ہیں, جبکہ ہمارا اپنے دماغ کے اوپر, اپنی ذات کے اوپر تو 3 یا 10% سے زیادہ ہمارا اختیار ہی نہیں. ہم اپنی ذات کو بھی مکمل طور پر نہیں سمجھ سکتے. شہیر کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
4: رحمان بھائی, یہ جو بیسیکلی بات ہو رہی ہے کہ ہم کسی کو اس سے بہتر جان سکتے ہیں یا نہیں جان سکتے, اس کے لیے بہت ہی یہاں پہ فٹ تو نہیں ہوتی, بٹ ایک صوفی اگزامپل میرے ذہن میں آئی ہے, منصور الحلاج کی.
0: اچھا,
4: منصور الحلاج نے ایک ٹائم پہ آ کے کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں خدا ہوں. بیسیکلی وین یو آر ڈیپلی کنیکٹڈ ٹو سم ون, جب آپ کسی کو اتنا چاہتے ہیں اس کو, لائک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اور اس کی زندگی ایک دوسرے کے بغیر ادھوری ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں اور وہ آپ کی زندگی میں, لائک آپ لوگوں کی جو ٹائم لائن ہے وہ ایک ہی چل رہی ہے. اینڈ کچھ ایسی سچویشنز میں ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ سے بہتر جانتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی کا ان لوگوں کو ایسا حصہ بنا لیا ہوتا ہے جسے ہم لائک چھوڑ نہیں سکتے, جو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. اینڈ ان کی کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں. جیسے بلال نے ابھی ایک بات کی کہ ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ وہ کسی بندے کو بتا دے گا. میں اپنی بات کروں آن مائی پرسنل پوائنٹ آف ویو, کچھ چیزوں میں ایسے بھی ہوتا ہے, لائک ہم اپنے آپ سے سیکھتے ہیں سب سے زیادہ کہ آپ کیسے سوچتے ہیں. سو ہم یہ بات کرتے رہے کہ جو دوسرا انسان ہے وہ کسی کو بتا دے گا, بٹ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے سے, لائک میرے سے یہ ہوا ہے کہ کسی نے بہت ٹرسٹ کر کے وہ بات بتائی ہے, بٹ وین ہی از ناٹ مائی فرینڈ, تو وہ میرے سے انجانے میں یا کسی وجہ سے کسی اور کے سامنے نکل گئی ہے. تو ان تمام سچویشن سے جو ہم نے خود بیئر کی ہوتی ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ وہ دوسرے کو بتا دے گا, اینڈ یہی ریزن ہے کہ ہم شیئر نہیں کر پاتے.
0: ہم شیئر نہیں کر پاتے, ٹھیک ہے. 12:59 ایک بج چکا ہے, آپ کی لائیو کالز بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ ایک ٹریک ہم شامل کر لیں. گلا جو ہے نا, وہ دوستو سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, گلا بڑا خراب ہے یار, اور زکام بھی بڑا شدید ہے. کوشش یہ جاری ہے کسی طریقے سے یہ ایک گھنٹہ باتیں کرتے ہوئے اور اپنے انٹرنز کے ساتھ دیکھتے ہوئے کہ وہ کس حد تک ان تمام چیزوں کے بارے میں پوائنٹ آف ویو کیا ہے, ان کا ریسرچ کیا ہے, ان کا ख्याल एहसास क्या है, ज़माने में जो उन्होंने इतने साल बिताए उसमें उन्होंने क्या सीखा है इमोशनली और प्रोफेशनली। सब चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी एक जगह पर रुका रहे, ऐसा नहीं है। वक्त की ये चाल जो है चलने वाली, ये बड़ी खूबसूरत है, वो कहीं किसी भी लम्हे में नहीं रुकता।
5: यही इसकी अच्छी बात है।
0: 230 किलोमीटर की स्पीड से इस वक्त हमारा निजामे शमसी आगे बढ़ रहा है और किसी एक सितारे की तरफ बढ़ रहा है, नाम जहन से निकल गया। और हर सेकंड में 230 किलोमीटर का फासला इतनी तेजी से हम तय करते चले जा रहे हैं। तो जहां पे हम पहले थे ये एक घंटा पहले, वहां पे नहीं है, वहां से लाखों मील अब दूर आ चुके हैं हम। बहुत स्पीड से ये वक्त गुजरता चला जा रहा है और ये समय इसी तरह से गुजरता है और बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं रहता। तो मुझे लगता है कि रिश्तों के अंदर कहीं ना कहीं ये जो हमारी ज़ात में ना समझने वाले कुछ ऐसे पहलू आ गए, कहीं ना कहीं हम बहुत कुछ समझने की कोशिश में जो चीज़ कोई इंसान बता रहा होता है या सोचों की ओवरफ्लो में उसको भी बहा देते हैं और सब चीज़ें भूल जाते हैं। कोशिश करेंगे उनको रिकॉल करें, समझने की कोशिश करें, उसने उस वक्त जो कहा था क्या वो सच था, या जो इस वक्त मेरे सामने नज़रों के सामने मौजूद है वो सच है। तुम्हारी बातें रहती हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइट दोबारा से ऑन की है, मेरा तुमसे जो सिलसिला है वो ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है, पहले भी कहा था कि बातें किसी से भी रहें तुम्हारा ख्याल ज्यादा रहता। ओ साहेब,
6: यार की
0: जैन जुहेब की खूबसूरत आवाज वापस आते हैं, आपकी लाइव कॉल्स भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे और इस टॉपिक के कुछ और पहलू हैं वो समझने की कोशिश करेंगे।
6: ओ

0: All right, once again, welcome back. मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ. हम बाज़ औक़ात ये दावा कर लेते हैं बहुत सारे लोगों के बारे में, और हमें ऐसा लगता भी है, हम इतना डीपली कनेक्ट हो चुके होते हैं उसके साथ रहते हुए या फिर उसके साथ गुफ्तगू करते हुए, बहुत सारी बातों का हमें ना अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है. बाज़ औक़ात हम अहमद अगर किसी से बात भी कर रहे होते हैं ना, नयान और शहीर, अगर हम किसी से बात कर रहे होते हैं, एक बार या दो बार भी मिलते हैं और उससे डिस्कशन रहती है, गुफ्तगू रहती है, बातचीत रहती है
1: जी,
0: तो कहीं ना हमें अपने अंदर से अपने गुज़िश्ता जो मालूमात हैं हमारे पास, हमारे दिमाग में स्टोर हैं, बहुत सारे लोगों से, ऐसे लोगों से मिलते हुए, गुफ्तगू करते हुए, सुनते हुए, तो हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आइडिया होने लगता है कि ये इंसान अगर ये वाली बात कर रहा है तो शायद इसका ये मतलब है. हम उसके बारे में ना एक मायार और अंदाजे लगाने वैसे ही शुरू कर देते हैं. सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारे जहन में ये ख्यालात आने लगते हैं कि जो ये बात कर रहा है इसका इस तरह का अंदाज है गुफ्तगू का.
1: बेशक,
0: जैसे हम अक्सर बात कर रहे होते हैं ना, मैं और डॉक्स अगर अक्सर आपस में बात करते हैं तो वो मुझे अक्सर आगे कहते हैं. कल एक नज्म उन्होंने शेयर की, यहाँ पे 1 बजे वो प्रोग्राम कर रहा था, तो एक नज्म उन्होंने शेयर की, तो उसने कहा यार ये तुम्हारे वाला अंदाज है बिल्कुल. ये बिल्कुल जिस तरह से तुम पढ़ते हो ना, गुफ्तगू करते हो, वो तुम से बातें करते हो, ऐसे करते हो, ये बिल्कुल उसी तरह की नज्म है, गजल है. तो मैं तुम्हें सुनाऊं या तुम ही पढ़ दो यार, तुम ज्यादा अच्छा पढ़ो. मैंने कहा नहीं, आप पढ़ें, आपका उसमें इमोशन जो है ना वो बड़ा डीप होगा जो आप सोच कर आए. तो बाज़ औक़ात हम अंदाजे लगा लेते हैं लोगों से, उनके लहजों के हवाले से, उनसे बातचीत के हवाले से. पिछले एक प्रोग्राम में भी मैंने शायद ये बात की थी कि जब हम अपनी ज़बान से कोई लफ्ज़ अदा करते हैं, दरअसल हम अपनी ज़ात के बारे में बताते हैं कि हमें क्या सिखाया गया है, हमने क्या सीखा है अपनी ज़िंदगी में, अपने साथ बैठे हुए लोगों के साथ. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें ये अंदाज़ा ज़रूर होने लगता है कि यार ये जो इंसान है मेरे सामने बैठा हुआ, ये इस तरह की सोच रखता है. मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक बात कहा करता हूँ लोगों को कि अगर आप किसी को बहुत बेहतर भी जानते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से भी समझते हैं ना, तो आप प्लीज़ एक काम ज़रूर करें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि आप फिर भी उसके बारे में अगर कोई ख्याल, कोई सवाल आ रहा है आपके जहन में, तो उसको वाज़े तौर पर बिना उससे पूछे हतमी मत मान लें कि यार ये इस तरह का इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे जहन में आया है, इसकी पिक्चर इस तरह की है और ये ऐसा इंसान है.
1: 100%
0: हम अक्सर ये वाली बात करके ना बाज़ औक़ात अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं. उस रिश्ते की पहली टूट की वजह वो हमारी वो वाली सिचुएशन होती है जो हमने सोच ली होती है, जज कर लिया होता है. लफ्ज ये वाला जहन में नहीं आ रहा था मेरे, हम जज कर लेते हैं, अंदाजे लगा लेते हैं फौरन से. मैंने कहा कि अगर उसके साथ वक्त गुजारा है, अगर आपको इतना ट्रस्ट है, तो आपके जहन में जो भी आने वाला ख्याल है, सवाल है उसके बारे में, आप उससे पूछ लें कि यार मेरे जहन में ना इस तरह की बात आई, मुझे लगता है कि तुम जो उस वक्त ये वाली बात कर रही थी या कर रहे थे ना, उसका ये वाला मतलब था.
1: क्या ये सही है?
0: क्या मैंने जो सोचा है, मैंने जो अपने जहन में इस चीज़ को माना है, क्या ये ऐसे ही है, या फिर मुझे बता दो असल क्या है. ये भी बाज़ औक़ात होता है. और कई बार हम लोग इसलिए भी नहीं बोल रहे होते ये तमाम चीज़ें कि हमें बड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि यार जो मैंने सोच लिया है ना, जितना मेरा वक्त गुजर चुका है लोगों के साथ, मुझे सारा पता चल गया है कि जो मैंने सोचा है 101%, 10% ये बिल्कुल इसी तरह से है.
1: बिल्कुल.
0: और कभी कभी यही बात जब हमें उसी की जबान से पता चलती है कि यार मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, मेरे जहन में तो ऐसा ख्याल ही नहीं आया तुम्हारे बारे में, तुम जो मेरे बारे में ये राय कायम कर ली है तुमने, मैं तो ऐसा हूं ही नहीं. आप उसको जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन अंदर से गुस्सा भी हो रहे होते हैं कि यार तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि यार ये क्या वाकई में सच्ची बात है, क्या मैंने तुम्हारे बारे में उसको ये बात बताई थी, क्या तुम्हें ये ऐसा लगा था कि यार तुमने मेरे बारे में बताई होगी क्योंकि तुम्हें पता है मेरी बातों के बारे में.
1: तो सर आपको क्या लगता है कि हमें कभी कभी ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं, जब आप इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं किसी से बहुत ज्यादा, तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं हमें ये छोड़ देनी चाहिए, हमें ये हमें मतलब बोलना चाहिए कि यार चलो ठीक है, अगर ये बात हो गई है या मुझसे कोई बात हो गई है, या अगर मैं किसी इंसान के साथ बहुत रिलेट कर रहा हूँ, बहुत उसके साथ डीपली बहुत कनेक्ट हो चुका हूँ, तो एक डर ऑटोमेटिकली आपके ना दिमाग में आ जाता है अब हर चीज
0: कि यार मेरी वजह से वो डिस्टर्ब ना हो जाए या वो कहीं दूर ना चला जाए।
1: अब आपने अगर हर चीज अपने दिल से पूछ के करना है ना तो फिर दिमाग का कोई काम ही नहीं रहता। तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी टॉपिक हो, किसी किसी चीज़ के ऊपर आप बात करते हैं या आप किसी के साथ कोई डीपली या इमोशनली कनेक्ट होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। आपको हमें डर लगता है ना, अक्सर हमें डर लगता है कि यार अगर मुझे डर लगता है कि यार ये सामने वाला शख्स बदल गया अगर तो ये मेरी बात निकल जाएगी। तो मुझे ये लगता है कि हमें डर उस चीज़ से लगना चाहिए कि वो सामने वाला बंदा बदले ही क्यों। हमने उसे रखना उसके कंफर्ट जोन में है कि हम अगर उसे कोई शेयर कर रहे हैं ना कि बात कर रहे हैं तो वो उसके और मेरे दरमियान में रहे। अगर वो चीज़ें हम दोनों के दरमियान में रहेंगी तो उसे हमारा रिश्ता ऑटोमेटिकली बहुत मजबूत हो जाएगा।
0: कल एक बात हो रही थी अहमद, नयान तुमसे भी पूछता हूँ मैं, कल एक बात हो रही थी बड़ी ज़बरदस्त बात मेरे जहन में आ गई। कल किसी से बात हो रही थी और यही बात हो रही थी कि अक्सर औकात ये जो लड़का और लड़की का ताल्लुक होता है ना, रिलेशनशिप होता है, इसके अंदर ना बाज़ औकात जिम्मेदारी लेने के लिए बाज़ औकात लड़का भी तैयार नहीं होता। यानी कि वो जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा होता अपनी उस चीज़ की। अगर हम शादीशुदा नए कपल्स की बात कर लें जो कि अप्रॉक्सीमेटली हमारे इस माशरे के अंदर 22-24 साल की उम्र में एक लड़का और लड़की की शादी हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 25-26-27 साल तक हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में आकर ना जो ज़्यादातर लड़के होते हैं ना, दूसरी तरफ से मतलब पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि वो ज़्यादातर जिम्मेदारी नहीं ले सकते अपने घर वालों के सामने कि जो मेरी वाइफ बात कह रही है वो सही कह रही है,
1: बिल्कुल,
0: या प्लीज आप उसको डिग्रेड मत करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है, घरों के अंदर लड़ाइयां होती रहती हैं,
1: बिल्कुल,
0: जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे चपकलिश भी साथ साथ चलती है, गुफ्तगू भी साथ साथ चलती है, मोहब्बत भी साथ साथ चलती है, लड़ाई भी साथ साथ ही चलती है। तो जिम्मेदारी लेने वाले लोग बहुत कम रह गए।
1: सर फिर यहाँ पे एक बात प्रायोरिटी भी आ जाती है ना। हाँ। आप अगर अपने माँ बाप को प्रायोरिटी देते हो, आपको अपनी बीवी को भी उतनी ही प्रायोरिटी देनी
0: है। ये तुमने बहुत इंटेलिजेंट बहुत खूबसूरत बात की है वाकई में। ये जो अगर तुम्हें पता चल गया है कि एक लड़की इस मुआशरे में, वैसे तो किसी दूसरे मुआशरे के अंदर ये जरूरी नहीं है कि लड़की सिर्फ आए, लेकिन हमारे इस मुआशरे का ये है कि लड़की अपने खानदान अपने घर बार को छोड़कर लड़के के पास आती है, वो अपने रूम को छोड़कर दूसरे रूम में आती है, अपने पूरे बहन भाई वहां का उठना बैठना माहौल जब उनसियत हो जाती है उस घर से उस कमरे से तो फिर निकल कर वहां पर दूसरी जगह पर जाना होता है। ऐसी सिचुएशन में कम से कम बाकी तमाम बातें तो एक साइड पे हैं, एक ख्याल तो जहन में जरूर होना चाहिए कि इसकी जिम्मेदारी मेरी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अगर ये मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है, मैं अपने वालदैन का तो पूरा पूरा एहतराम करूंगा, लेकिन मैं कम से कम इसके ऊपर कोई आंच भी नहीं आने दूंगा।
1: सर हमारे माशरे में ज्यादातर चीजें ये देखी जाती है कि हमारी शादी होती है, हम बीवी को घर ले आए, हम उसे पहले दिन ही ये कहते हैं कि भाई मेरे माँ बाप की इज्जत
0: इसके ऊपर भी नहीं आने दूंगा।
1: सर हमारे माशरे में ज्यादातर चीजें ये देखी जाती हैं कि हमारी शादी होती है, हम बीवी को घर ले आए, हम उसे पहले दिन ही ये कहते हैं कि भाई मेरे माँ बाप

0: आपके लफ्ज़ आपको लगता है कि आप किसी को समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो दरअसल उसकी तजलील हो रही होती है दूसरे मायने में। लगता बहुत डिफरेंट, आम सी बात है कि छोड़ो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो,
1: जाने दो।
0: एक ही लफ्ज है, एक ही तरह के वो तमाम जुमले हैं, लेकिन उनका मतलब मफहूम चेंज हो चुका है।
1: बिल्कुल।
0: तो आप बात जो कह रहे हैं उनका मफहूम बाज़ुकात आपकी ही बात से चेंज हो जाता है। सो तुम्हारे क्या ख्यालात हैं इस हवाले से नयान?
2: आपने बात की के नहीं स्टैंड ले सकते लड़के,
0: वहाँ बाज़ुकात जिम्मेदारी जो है ना वो नहीं ले पा रहे।
2: इसके एक फैक्टर में भी ये भी समझता हूँ उसके पीछे ये है कि जब आप डिपेंडेंट कर रहे होते हैं ना अपने पेरेंट्स पे,
0: हाँ,
2: तब आप स्टैंड नहीं ले सकते, आपकी आवाज नहीं निकलती उनके सामने,
0: हाँ,
2: मुश्किल होती है आपको। बट इसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बात ही असल क्या, बेशक डिपेंड करो, मेन पॉइंट ये होगा।
0: यार इसने बड़ी प्यारी बात की, जब आप डिपेंडेंट हैं अपने वालदैन के ऊपर खाने के हवाले से, वैसे तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं कहता
1: आप
0: सब लोग इस चीज पे ऑफेंड होके कहें नहीं रहमान साहब ने ये बात कर दी है, मुझे लगता है जब आप इंडिपेंडेंट हो जाए ना
1: जी, आप फिर जिम्मेदारी,
0: कम से कम आप अपनी और एक इंसान की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हो जाए। यानी कि शहीर जो आप अपने लिए ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक और इंसान को भी मुकम्मल इज्जत और एहतराम के साथ खाना और सब कुछ खिला सकते हैं, तो फिर आपको ये वाला डिसीजन लेना चाहिए।
1: सर मैं भी यही बात करने लगा था कि जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते ना,
0: हाँ,
1: आपको किसी दूसरे की जिम्मेदारी नहीं लेनी।
0: बहुत खूबसूरत बात,
1: आपने शादी करनी है ना,
0: हाँ,
1: आपने उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। शादी एक सर बिल्कुल ये वो मामूली रिश्ता नहीं है,
0: हाँ,
1: आपने सारी जिंदगी एक शख्स
0: जिम्मेदारी है मुकम्मल, ये इतनी आसानी से फैसला लेने वाला नहीं।
1: बिल्कुल,
0: हाँ,
1: एक तो सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए,
0: हाँ,
1: और अगर आप ये डिसीजन लेते हैं ना तो आपको इंडिपेंडेंट होना चाहिए,
0: हाँ,
1: आपको अपने माँ बाप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कि यार मैं अगर घर लेकर आ रहा हूँ तो उसका खर्चा आप करो, उसे रोटी आप, चलो खाना घर में बनता है जैसे भी होता है, लेकिन उसका खर्चा वो आपने करना है, वो आपकी जिम्मेदारी है।
0: मैं तुम्हें अपने इनबॉक्स में कुछ लोगों की, कुछ लड़कों की सोच बताऊं
1: जी,
0: लड़के बाज़ुकात अपनी वाइफ के लिए स्टैंड इसलिए भी नहीं ले सकते कि उनका जो ये फैसला है उनके वालदैन ने किया है, और अब कोई अगर मसला हुआ है तो वालदैन को ही पकड़े, मेरे ऊपर ना
1: सर हमारी,
0: मेरे मेरा कोई काम नहीं।
2: वालदेन जब लड़का फैसला ले तो वालदेन कहते हैं कि आप पे है,
0: हाँ, आप पे है।
1: ये जो यस, यस, अभी जेंजीज हैं हमारी, ये जो सोच है ना, ये जो डेवलप हो गई हुई है, हम मजाक में एक बात करते हैं यार चलो घर वाले रिश्ता करा रहे ने, कल नु कोई मसला होगा तो वही जिम्मेदार ने,
0: वही जिम्मेदार ने, यही बात।
1: ये चीज मुझे लगता है कि हमें अपने अंदर से निकाल देनी चाहिए,
0: ये निकाल,
1: हम अगर किसी को लेकर आ रहे हैं तो हमें भाई उसकी जिम्मेदारी उठानी है। आपको इतना इंडिपेंडेंट होना है, फिर उसके बाद आप ये डिसीजन लो, मैं अब शादी करूंगा और मैं अपनी जिंदगी को आगे एक दूसरे शख्स के साथ गुजारने के काबिल हो गए हूँ, हाँ भाई अब मैं ठीक है, अब मैं ये जिम्मेदारी ले सकता हूँ और मैं अब शादी कर लूंगा।
2: साथ इसके अगर आप डिपेंडेंट भी हो सर, डिपेंडेंट भी हो तब भी आप में इतनी, आप दूसरे को इतना वैल्यू करते हो कि आप उसके लिए बात कर सको, ठीक है आप डिपेंडेंट है, एटलीस्ट आप अपने पार्टनर के लिए तो बात कर,
0: जबान तो आपकी बिल्कुल फ्री है, आजाद है,
2: इसको वजह
0: सही और गलत में फर्क तो आपको मालूम है,
1: बिल्कुल,
0: कि कहाँ पे क्या, मेरे घर से कोई गलती तो नहीं हो रही किसी के साथ,
1: बेशक
0: यार कहीं, मतलब मेरे घर में ठीक है, मेरे वालदान हैं, मेरे बहन भाई हैं, सब लोग हैं, तो क्या उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जो एवी बिला वजह किसी वजह से भी किसी भी बात को लेकर वो कोई ऐसी बात कर रहा है कि वो दिल आजारी बन रही है और फिर लड़ाई बन रही है मेरे सामने और तरह से पेश की जा रही, थोड़ा सा ये पता होता है तो फिर उसके बाद जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए आपको, चाहे आप डिपेंडेंट है या नहीं।
1: सर विद द टाइम ट्रेंड चेंज हो जाता है, हम देखते हैं अपने पेरेंट्स को, उनकी शादी हुई, वो इतने समझदार होते हैं, जब शादी होती है वो घर आती हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद ही ना टेक ओवर कर लेती हैं, हर चीज घर की और सारा कुछ टेक ओवर कर लेती हैं, लेकिन जो आज की जनरेशन है ना, इसे समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, समझ जाती है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में, जब तक वो समझता नहीं है तो आपको उसे सिर्फ सपोर्ट करना है,
0: हाँ,
1: अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो ये आपका रिलेशन कभी भी नहीं लॉन्ग टर्म चल सकता।
0: कम से कम आप कुछ देर के लिए जो ये अंदाजे बार बार लगाते हैं कि यार हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ मालूम है, इसको एक साइड पे रख के एक रात अगर आप उस जगह तक पहुंच चुके हैं, उस फैसले तक पहुंच चुके हैं कि अब आप किसी की जिम्मेदारी लेने वाले हैं या आप पर जिम्मेदारी डाली जाने वाली है और आप उस चीज से मुतमईन भी हैं और तकरीबन 19-20 के फर्क में है, वो तकरीबन 20 ही होता है कि यार हाँ ठीक है अब जिम्मेदारी आ रही है तो अब इसको हम अवेल करेंगे, और वो एक जहन में ख्याल भी तो होता है यार वो शादी करनी है, वो भी एक क्रिस्प एक चाम होता है, एक अजीब सी एक्साइटमेंट होती है कि यार एक नए इंसान

0: से मिलना है और फिर वो मेरी जिंदगी जो है ना वो जोड़ों में हमें बड़ा हम बहुत पुरसकून रहते हैं। अकेले अकेले हमारे अंदर ना कुछ चीजें भी रहती हैं जो हमें तंग भी करती हैं
1: सर, ख्यालात की
0: तरफ भी लेके जाती है। यस यस
1: बिल्कुल, वो ख्यालात
0: की हम आहंगी। यस यस,
1: वो जब आप अनमैरिड हैं, सिंगल हैं, सिंगल लाइफ में आपके ख्यालात डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जब आपकी शादी हो गई आपके टोटली आपके ख्यालात
0: उसके साथ मर्ज हो गए। अब आप एक नहीं दो हैं और फिर उनको एक समझकर आपने बात पूरी करनी है कि यार मैंने और उसने दोनों ने, दोनों का फैसला है, दोनों की गुफ्तगू होनी चाहिए, दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, आधा उसका और आधा मेरा हिस्सा होना चाहिए। हाँ सर, तुम्हारा क्या कहना
2: है? अभी जो बात हो रही थी, मेरा इस पे एक पॉइंट ये भी है कि जो हम स्टैंड नहीं ले पाते,
0: हम स्टैंड नहीं ले पा रहे,
2: उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जो नॉर्मली, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हम इतने साल से ऐसे ही फंक्शन करते आ रहे हैं, बहुत सी चीजें हैं, लाइक पेरेंट्स व्हेन दे आर मैरिंग देयर सन, वो इस चीज के लिए रेडी नहीं है कि वो शेयर करें, वो इस चीज को एक्सेप्ट करने में भी टाइम।
0: दोबारा बताना क्या कह रहे हो?
2: मैं कह रहा हूँ कि अक्सर पेरेंट्स जो हैं, घर वाले हैं, बहन भाई हैं, वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होते कि वो अपने जो इंसान है उसको शेयर करें। एंड जब इंसान स्टैंड लेने लगता है, उसके दिन में एक वो चीज़ भी होती है, क्योंकि हमें फंक्शन ऐसे कराया गया है बचपन से, ये दिखाया गया कि इफ़ यू आर टेकिंग स्टैंड, आप एक बंदे के लिए स्टैंड ले रहे हो तो आप दूसरे के खिलाफ हो। बेसिकली मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि इन आवर सोसाइटी, जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे बढ़ रही है,
0: तो हमें पता है, तुमने बातों बातों में बहुत बड़ी और बड़ी खूबसूरत बात कर दी है कि अगर तुम किसी एक के लिए स्टैंड ले रहे हो तो वहीं पे किसी दूसरे के लिए तुम खिलाफ भी हो उसके, ये हमें सिखाया जाता है, वो ये बता रहा है। अच्छा,
2: एग्जैक्टली। सो यही बात मैं कर रहा हूँ कि आप एक के लिए स्टैंड ले रहे हो, आप में कम से कम जब आप एक बंदे को अपने साथ जोड़ रहे हो, अपने साथ उसका नाम जोड़ रहे हो, आप में कम से कम इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आपको पता हो कि अगर वो ठीक है तो यू आर बिहाइंड हर बैक, आपको उसके पीछे खड़े रहना है हमेशा, एंड आपको उसके साथ रहना है, वो वहाँ पे आई है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कंफर्टेबल फील कराएं। मोस्टली क्योंकि हमारी सोसाइटी में इट्स अ जॉइंट फैमिली कल्चर नॉर्मली, तो हमें ऐसा लगता है वो अगर किसी के लिए छोड़ के आई अपना सब कुछ तो वो आप हैं, आपको लग रहा होता है कि बाकी सब को भी उसे कंफर्टेबल फील कराना चाहिए, या बाकी भी सोचें मेरा अकेले का रिश्ता नहीं है, बट इट्स प्राइमरी जॉब फॉर यू कि आप उस चीज़ का इनिशिएटिव लें ताकि बाकी भी उसके पीछे पीछे जाए।
0: अच्छा, आप जेंसीज हैं सारे, तो मैं आपसे ना एक सवाल मेरे जहन में आया है, वो इससे इंटायरली बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है आपका, वैसे इस हवाले से, ये जो जिंदगी है, पहले अकेले होना, फिर उसके बाद दो हो जाना, और शादीशुदा जो जिंदगी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, इस हवाले से आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं इस हवाले से कि किस तरह से होना चाहिए, ये क्या क्या हमारे जहन में सवाल और ख्यालात होने चाहिए इस जिम्मेदारी को अवेल करने से पहले, कि हम अपने आप को किस हद तक दूसरे के सामने प्रेजेंट कर पाएं, चाहे वो अपने वालदैन हों, चाहे वो उसके वालदैन हों, क्योंकि उन्होंने आपको देखना है, आपने उनको देखना है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे फैसला जो होना है। लेकिन उससे पहले आपके जहन में कौन कौन से सवालात होते हैं, आप क्या सोचते हैं कि कैसी लड़की होनी चाहिए आपके नज़दीक, जेंजीज़ के नज़दीक क्या होना चाहिए, इसका क्राइटेरिया क्या है आपके नज़दीक?
1: सर, मेरा इसमें जो ओपिनियन है,
0: हाँ,
1: वो ये है कि हम, अगर मैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ ना, तो मैं डिजर्व करता हूँ कि मुझे वो लॉयलिटी मिले जिंदगी में, ठीक है, क्योंकि आपने, आपका जो पार्टनर है ना, वो लाइफ टाइम आपके साथ है।
0: यस,
1: मैंने ये सोच के चलना, यार अगर मैं, खुदा ना खास्ता कोई दरार आती है रिश्ते में, मेरी साइड से कोई आती है, तो वो मैंने उसे कैसे टेक ओवर करना है, मैंने उसके साथ कैसे रिलेट करना है, उसे कैसे समझाना है कि ये अगर कोई मसले हो गए हैं हमारी ज़िंदगी में, हम दोनों को मिल के वो सॉर्ट आउट करने चाहिए।
0: क्या कभी तीसरे को भी बीच में शामिल करना चाहिए फैसलों के लिए?
1: नहीं,
0: चाहे वो आपके अपने बहुत करीबी, आपके वालदैन हो, आपकी मामा हो, आपके भाई बहन हो, जब दो एक हो गए, एक कमरे के अंदर एक लड़ाई हो रही है, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो क्या वो बाहर से किसी तीसरे को लेके आना चाहिए?
1: बिल्कुल भी नहीं।
0: क्या ये, इसके बारे में जहन में सबसे पहला तस्वुर क्या आता है?
1: मेरा इसमें ये ओपिनियन है कि अगर, सर जाहिर है शादी होती है, 100 मसले होते हैं, लड़ाई
0: हो जाते हैं, होते रहते हैं,
1: बिल्कुल, جو چیز آپ کے ایک بند کمرے میں ہو رہی ہے نا وہ صرف آپ دونوں کے درمیان میں رہنی چاہیے, وہ باہر نہ نکلے. اگر کوئی چیزیں باہر نکلتی ہیں نا وہ ظاہر کر دیں کہ آپ کمزور ہیں, آپ کا رشتہ کمزور ہے. آپ کو وہ جو رشتے ہیں نا وہ آپ کو اسٹرانگ کرنا ہے, اور وہ کمرے کے اندر وہ لڑائی ختم ہونی چاہیے, اور وہ جو بات جو بھی ڈسکشن ہے آپ کی وہ جب آپ کمرے سے باہر نکلے نا وہ پھر آپ دو نہیں, آپ ایک ہی ہیں کمرے میں. آپ
0: اور اس چیز کا خیال دونوں کے دل میں ہونا چاہیے, یکساں
1: بالکل
0: ایک جیسا ہونا چاہیے.
1: بالکل
0: تمہارا کیا پرسپیکٹو ہے, کیا تمہارے ذہن میں کیسی لڑکی ہونی چاہیے, مطلب تم اپنے ذہن میں کیا سوچتے ہو کہ کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے, اس کو کن کن چیزوں کا پاس رکھتے ہوئے خیال رکھتے ہوئے آنا چاہیے نیان؟
3: سب سے پہلے اگر میں کسی سے شادی کروں گا تو یہ دیکھیں گے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کیسی ہے, ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں. جاننے میں اور سمجھنے میں بہت فرق ہوتا ہے. سمجھنا بہت ضروری ہے انسان کو, اس کی نیچر کو, کس طرح سے وہ چیزوں کو ڈیل کرتا ہے, پھر اس کا میچیور ہونا.
0: لیکن اس کا پتہ کیسے چلے گا, کیا یہ پہلے ریلیشن شپ قائم ہونا چاہیے آپ کے نزدیک کہ پہلے لڑکا اور لڑکی کی آپس میں ڈسکشن ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے اس حوالے سے, کیونکہ یہ ذرا میں پوائنٹ اٹھانا چاہتا ہوں, دیکھنا چاہتا ہوں.
3: ڈسکشن بہت ضروری ہے سب سے پہلے. اگر آپ
0: لیکن آج کل ہمارے جو گھریلو معاشرہ ہے یہاں پہ وہ والدین بس خود دیکھتے ہیں, لڑکی کی والدہ اور لڑکے کی طرف سے بھی اس کی والدہ, اس کے والد یا بہن یا بھائی جو بھی اس کا گارڈین ہے وہ جا کے اس کو چیک کرتا ہے, اپنے معیار پہ پرکھتا ہے, اور پھر وہ اس کے بعد آ کے جا کے فیصلہ لیتا ہے کہ یار یہ ہم نے دیکھا ہے ایسا لگتا ہے. اس میں لڑکے کا سوال تو آیا ہی نہیں ابھی تک, کوئی اس کا پرسپیکٹو تو آیا ہی نہیں.
1: یہ والا کلچر تھوڑا سا چینج ہونا چاہیے,
0: ہونا چاہیے,
1: ہونا چاہیے.
0: کہ مطلب بات تو ایک بار ہو جانی چاہیے نا جس سے شادی ہونی ہے. اگر آپ کا یعنی کہ مکمل طور پر خاندان مل لیا, لگا کہ یار خاندان بالکل ایسا ہے جیسا ہمیں چاہیے, خاندان والوں کو ایسا لگا, اب جو لڑکا اور لڑکی ہیں, اب جو دو لوگوں کی آپس میں شادی ہونے والی ہے, کیا اتنا سا تو تھوڑا سا آگے بڑھ جانا چاہیے کہ یار اب ہمارا پورا ہو گیا تھے, اب ان دو لوگوں کو ایک کمرے کے اندر بٹھاتے ہیں بات کرنے کے لیے. سو پلیز اس کمرے کے اندر اس کا بھائی, اس کی بہن, اس کی پھوپھو, اس کی چاچی تائی وہ نہ بیٹھے, کیونکہ ان دونوں نے اپنے ساتھ جب آپ لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ان کی آپس میں کرنی ہے شادی, تو پلیز ان کو ایک بار دیکھ تو لینے دیں, لاسٹ ایک چانس ان کو دیں پیچھے ہٹنے کا یا آگے جانے کا, یہ بتا کر. میرا ایسا پرسپیکٹو ہے, آپ کا کہتے ہیں؟
3: بالکل صحیح بات ہے کہ جاننا بہت ضروری ہے ان کی لڑکا لڑکی کی بات چیت, جنہوں نے آگے زندگی گزارنی ہے, سفر طے کرنا, اگر وہ پہلے ایک دوسرے سے بات نہیں کریں گے, ایک دوسرے کو سمجھیں گے نہیں, تو وہ کیسے زندگی گزاریں گے؟ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب والدین فیصلہ لے لیتے ہیں تو شادی کے بعد بہت سے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں, دوریاں بڑھ جاتی ہیں, بات اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ طلاق تک چلی جاتی ہے. کیوں؟ جانا نہیں ہوتا, بات نہیں کی ہوتی. بات کرنا بہت ضروری ہے,
0: بات کرنا بہت ضروری ہے, اور پھر یہ بات کرتے ہوئے دونوں کے ذہن میں یہ ڈالنا, یا لڑکے کی طرف سے کوئی ایک تو ذمہ داری لیتا ہی ہے بات کرنے کی, اگر کوئی مطلب کہ ہو سکتا ہے لڑکی شائع ہو, وہ شروعات میں بات نہ کر پا رہی ہو, تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟
1: میرا اس میں یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ پہلی ملاقات جو بھی ہوتی ہے اس میں موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو نا جج کر رہے ہوتے
0: ہیں, جج کر رہے ہوتے ہیں صرف پہلے دیکھ کر چیزوں.
1: تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ملاقات میں بالکل بھی یہ ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے. پہلی ملاقات میں یہ ڈیسیژن لینا نہیں چاہیے. لائف ٹائم کرنا ہے نا کسی کو, زندگی گزارنی ہے, وہ پانچ منٹ کی ملاقات میں آپ کبھی بھی یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ یار میں اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہوں. آپ کو کم از کم دو سے تین دفعہ چار دفعہ ملنا چاہیے, کھانا کھانا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, پراپر ڈسکشن کرنی چاہیے, سب سے پہلے کمفرٹیبل ہونا چاہیے. آپ کمفرٹیبل جب تک نہیں ہوں گے آپ ایک دوسرے کو جج کرتے رہیں گے, اور جب تک یہ چیز ختم نہیں ہوگی تو کوئی آپ کوئی اس ڈیسیژن پہ پہنچیں گے نہیں. وہ کبھی نہ کبھی لائف میں کوئی ایسا ٹائم آ جائے گا کہ آپ کو پہلی والی باتیں نا بری لگنا شروع ہو جائیں گی کہ پہلے دن تو یہ بولا تھا, اب وہ باتیں کہاں گئی ہیں. تو وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دو تین چار ملاقات ہونی چاہیے, یہ ضروری ہو گیا ہے آج کے ابھی یہ والا جو کلچر.
0: اچھا ویسے یہ جو تم نے ابھی بات کی نا, دو تین ملاقاتیں شادی کے حوالے سے جو خاندان طے کر رہے ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی, اس میں یہ تو مطلب تھوڑا سا نا مشکل سا ایک چیز لگ رہی ہے, مطلب جو ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں. لیکن کیا ایسا چل رہا ہے, ابھی ہو رہا ہے ایسا جو تم لوگ دیکھ رہے ہو آپس میں آس پاس جینزیز میں ایسا چل رہا ہے؟
1: میں یہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے سراؤنڈنگز میں یہ چیزیں دیکھی ہیں.
0: ہاں ایسا کرتے ہیں لوگ, مطلب وہ پھر بہترین طریقے سے ان کی زندگی,
1: مجھے لگتا ہے یہ طریقہ بہتر ہے.
0: اچھا
1: آپ کو دو تین دفعہ مل لینا چاہیے, ملاقات کرنی چاہیے, بیٹھنا چاہیے, کھانا کھانا چاہیے. جب تک آپ کسی کے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے, بیٹھ کے دو چار باتیں نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی اگلے کو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو کہ یار اس کی پرسنالٹی کیسی ہے.
0: اچھا احمد آپ کو بڑی خوبصورت بات کرتے ہو, میں نا شہیر سے ایک چھوٹا سا بڑی زبردست بات ہے, مجھے ایسا لگتا ہے, میرا ایسا خیال کہتا ہے, ہم پہلے پروگرام میں بیٹھے
1: جی,
0: ہم نے ایک دوسرے سے بات کی,
1: بالکل
0: میں ایک پریکٹیکل ایگزامپل دینے والا ہوں, یہ ہماری دوسری ملاقات ہے ایسے ہی ہے یعنی گفتگو میں جو ون ٹو ون بلکہ سب کے ساتھ جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں ہماری یہ دوسری ملاقات ہے
1: جی.
0: ایسا نہیں لگتا کہ اب آپ کھل کر بات کر پا رہے ہیں
1: جی,
0: یعنی کہ دل چاہ رہا ہے کہ ہاں یار ڈسکشن کریں, آپ مجھے کہتے بھی ہیں ایک منٹ رحمان بھائی میں نے ایک بات کر لی, تو ایسا آ رہا ہے نا
1: سر.
0: تو مجھے لگتا ہے کہ اگر دونوں میں سے ایک یہ انیشیٹو لے لے پہلی ملاقات میں کہ وہ اپنی بات کو کھل کر کے میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس حوالے سے میں ساری باتیں جو میرے دل میں ہیں میں کرنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ جب یہ لفظ بولتے ہیں نا, میرا یہ ماننا ہے ایک لڑکا اگر یہ ذمہ داری لے کر یہ لفظ بولے گا, یہ لائن بولے گا, تو لڑکی آٹومیٹکلی فوراً سے وہ اوپن ہو جائے گی, ذہن اس کا اوپن ہو جائے گا کہ یار وہ میرا پوائنٹ آف ویو سننا چاہ رہا ہے. شاید اس نے اپنے گھر میں اپنا پوائنٹ آف ویو کبھی سننے کے حوالے سے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ یار میرا بھی کوئی پوائنٹ آف ویو ہے, میری بھی کوئی گال سنی جا سکتی ہے, اب میں لڑکی بھی ہوں بے شک, ایسا ہے نا.
1: تو مجھے ایسا لگتا ہے جو لڑکی ہے نا وہ ایک دم آپ کے ساتھ اوپنلی بات نہیں کرتی, وہ کبھی بھی نہیں کریں گی, وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں مجھے ایسا لگتا ہے. اور ان میں
0: لیکن پہلی ملاقات میں آپ کو اپنی باتیں کر دینی چاہیے, وہ سوچے گی ضرور اس بات.
1: ہاں لیکن وہ ڈیسیژن پہلی ملاقات میں نہیں لینا چاہیے,
0: ڈیسیژن نہیں لینا چاہیے, اس سے میں اگری کر رہا
1: ہوں.
0: شہیر کیا پوائنٹ آف ویو تمہارا, باتیں ذرا تھوڑی سی نکل گئی ہیں, ہم واپس آئیں گے اس طرف بھی کہ میں اگر تمہیں زیادہ بہتر جانتا ہوں یا تم مجھے زیادہ بہتر جانتے ہو, لیکن باتیں نکل گئی ہیں. ہاں
2: سو بیسیکلی ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ
0: ہنس کیوں رہے ہو, کیا ہوا ہے بیسیکلی؟ اچھا یہ لفظ زیادہ بولتا ہے,
3: یہ لفظ زیادہ بولتا ہے.
0: اچھا کوئی بات,
2: تو جو بات ہو رہی تھی کہ کس طرح کی لڑکی ہونی چاہیے آپ کا ایک,
0: ہاں تمہارا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟
2: آپ کو نا ایک دوسرے کے آئیڈیولوجیز کو جان لینا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے, کیونکہ اگر آپ کی آئیڈیولوجیز سیم ہوں گی تو آپ ایک بہت بیٹر چانس ہے کہ آپ سسٹین کر جائیں گے. اگر آپ کی آئیڈیولوجیز ہی ڈفرینٹ ہیں, لائک ایک بہت ہی فضول سی ایگزامپل میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ ایک لڑکا اگر فریڈرک نیچے پڑھ رہا ہے اینڈ ایک لڑکی عمیرہ احمد کی فینٹیسی ورلڈ میں ہے, وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کبھی بھی کمپیٹیبل نہیں رہ سکتے کیونکہ دونوں نے ڈفرینٹ چیزیں پڑھی ہیں, دونوں کے ڈفرینٹ ذہنیت ہے. اگر آپ کی آئیڈیولوجیز میچ نہیں کر رہی اینڈ آپ دوسرے بندے کو اپنا لائف پارٹنر بنا کے لا رہے ہیں اینڈ آپ ٹرائی کر رہے ہیں کہ آپ اسے چینج کریں اپنی آئیڈیولوجیز میں ڈھالنے کے لیے, وہاں پہ اختلافات پیدا ہوتے ہیں. تو بیسک تھنگ یہی ہے کہ آپ آئیڈیولوجیز کو جان لیں ایک دوسرے کی. اگر آپ کی آئیڈیولوجیز میچ کر رہی ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح میں سوچتا ہوں ویسے وہ سوچ رہی ہے یا وہ سوچ رہا ہے, آپ اس کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. جو میرے خیالات ہیں وہی اس کے خیالات ہیں, مجھے اسے مجبور نہیں کرنا پڑے گا کہ یہ اس نے اپنی پوری زندگی جس کانسیپٹ پہ گزاری ہے وہ اسے چھوڑ دے اور جو میں سوچ رہا ہوں وہ اس پہ جائے. اگر آپ اس چیز کو پہلے سے انیشیٹو لے کے اس پہ بات کر لیں گے, اگر آپ یہ دیکھ لیں گے کہ میں اس کے ساتھ کتنا کمپیٹیبل ہوں اس حوالے سے, تو ایک بہت بیٹر چانس ہے کہ آپ
0: اس میں سٹارز میٹر کرتے ہیں ویسے.
1: سر مجھے
0: یار آج کل مجھے بڑا اس کا نا, پہلے میں نے مجھے پہلے بہت کبھی شوق ہوا کرتا تھا نا کہ کمپیٹیبل کیپریکارن کے ساتھ ٹورس مطلب 95% کمپیٹیبل ہے, اس کے ساتھ ورگو 100% کمپیٹیبل ہے, لیو کے ساتھ اس کے آپس میں جھگڑے رہیں گے, مطلب کہ دوسرے جتنے بھی سائنز ہیں, مطلب اس طرح ہے.
1: کینسرینز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا سٹار کینسر ہے, مجھے بیسیکلی جو کینسر اسٹار جن کا ہوتا ہے نا وہ بڑے ایموشنل سے لوگ ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ جو ایموشنل بندہ ہوتا ہے نا وہ بہت جلدی کنیکٹ کر جاتا ہے,
0: بہت جلدی کنیکٹ
1: ہر بندے سے کنیکٹ کرتا ہے, وہ بہت جلدی کنیکٹ کرتا ہے. ابھی آپ نے جیسے بولا نا کہ پہلی ملاقات میں میں نے اتنی اوپنلی بات نہیں کی,
0: نہیں تم نے کی تھی, ہم نے بہت اوپنلی بات
1: میں نے کی تھی, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دو ملاقاتیں آپ کی لازمی ہونی چاہیے. میں آپ کے ساتھ تھوڑا کمفرٹیبل ہو جاؤں گا نا, میں آپ سے اوپنلی ہر چیز میں شیئر کروں گا, ہاں یہ میری زندگی میں یہ مسئلے ہیں.
0: جین زی آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں میں یہ ویسے نام لے رہا ہوں, اس سے کوئی برا تو نہیں لگ رہا, مجھے پیارا لگتا ہے, آپ لوگ نا بہت پیارے لگتے ہیں,
2: وی پراؤڈلی اون دیٹ.
0: تو ہاں اچھا یہ جو فریڈرک نیٹشے کے بارے میں تم نے بات کی اور ہمیرا ارشد کے بارے میں, وہ میری بات ذہن سے نکل جائے گی. یار دونوں کا آرٹ فارم ایک ہی ہے,
2: آرٹ فارم ایک ہی ہے
0: اور دونوں نا سوچتے بڑا زبردست ہیں, तो कहीं ना कहीं मैच हो सकता है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है जो लिखने वाला लिखारी है ना, वो लिखारी चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे कोई भी हो, सोच यानी उसकी है,
1: मिलती है,
0: उसके अंदर मौजूद है चीजें। तो जो भी कोई बात करने वाला है ना, सुनने वाला है, समझने वाला है, वो मैच कर जाता है।
2: नहीं, मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ कि अगर आप एक फिलोसफिकल गायक हो, एक आप ऐसी लड़की के साथ, आप
0: हुमैरा अरशद का तुमने तो डिफरेंस दिया, वो भी तो फिलोसफिकल ही है।
2: नहीं, हुमैरा अरशद नहीं, हुमैरा अहमद बोला था मैं।
0: हुमैरा अहमद भी, हुमैरा अहमद
2: की बात है, वर्ल्ड है ना वो। एक मैं अपने साथ, मेरी यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियां जो उन नॉवेल्स को पढ़ के दे आर लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। मतलब मैं आपको अभी अपनी फीड पे दिखा सकता हूँ, जिन्होंने अपने नाम वो रखे हुए हैं। अच्छा। जो इमेजिन करती हैं, लाइक अभी ये बात कहीं और,
0: मेरे पास तुम हो तो रो पड़ी, वो जो मर गया चला
2: एक करेक्टर है।
1: बेसिकली चीज ये है कि वो जो कल्चर था ना, पुराना कल्चर था, वो जो चलता हुआ आ रहा है कि हमने डिसाइड कर लिया जी वो लड़की है जी शादी हो,
0: नहीं नहीं
1: मैं वो चेंज हो रहा है।
2: बेसिकली रहमान भाई एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहा था, लाइक अगर एक लड़की पढ़ती आ रही है लाइक फैंटेसी, एंड एक लड़का है जो उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जो बिल्कुल भी उस पर नहीं उतर रहा, सो दे कैन नॉट बी कंपेटेबल। अभी मैं बात कर रहा था कि इतनी फैंटेसी में रहते हैं, एक करेक्टर है हाशिम करदार, एंड मुझे एक मेरी यूनिवर्सिटी फेलो है, उन्होंने बोला कि मेरी ख्वाहिश है कि हाशिम ने जिस तरह अपनी लाइक वाइफ थी या कोई भी वहाँ पर करेक्टर था, उसे एक्वेरियम में डुबो के मारा था। आई वॉन्ट के मेरे साथ ही हो।
0: अच्छा, तो अच्छा मैं कह रही थी मैं भी एनजी मार रही
2: थी, मैं ये बात कर रहा था कि
1: लगता कहीं ना कहीं शेर भी एक वो फैंटेसी वाली वर्ल्ड में
0: वर्ल्ड में है। नहीं, ये खूबसूरत लगता है। नहीं नहीं, ठीक है। अच्छा जेंसीज, ये ना मुझे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ना हमें समझ में आ जाती हैं, हमें एक्सप्रेस करने के लिए ना, मैं आज आप लोगों को एक चीज देके जा रहा हूं, प्लीज उसको रख लेना, नहीं रखना कोई मसला नहीं है। मैं जिस एज ब्रैकेट में हूं, मुझे उम्र के इस हिस्से में मुझे ऐसा लगता है, बात अगर यकीन से की जाए ना और सामने बैठकर उसको ये इल्म हो कि ये सिर्फ मुझसे बात हो रही है, यानी ये सिर्फ अहमद तुमसे बात कर रहा हूं मैं, अगर ऐसे बात की जाए ना और आंखों में आंखें डालकर और दिल से बात की जाए, ये मैं कोई हुनर नहीं दे रहा, ये मैं बता रहा हूं कि फीलिंग्स अगर आपकी यहां तक पहुंच जाए कि आपकी हर बात में तासीर, आपका वो जो एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर उसमें निचड़ता हुआ महसूस हो, आप जो भी बात कहें वो पहली मुलाकात हो या वो चाहे दूसरी मुलाकात हो, वो चाहे ओपन हो या ना हो, बोले या ना बोले, आपको सुनने के बाद दूसरी मुलाकात का उसको जरूरत नहीं रहेगी। शादी के हवाले से अगर आप यकीन से पुख्ता हैं और आप ये बता रहे हैं उसको कि मैं ये सोच रहा हूं, मेरे जहन में ये ख्याल है, लेकिन मेरे ख्याल के साथ साथ तुम्हारा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल के साथ साथ तुम्हारा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम क्या सोच रही हो, तुम तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है, मेरा अगर हिस्सा है 50-50% अगर हम अंदाजा लगाएं तो तुम ये समझ लेना कि मेरा 49% है, तुम्हारा 51% है हिस्सा, और ऐसा ही चलेगा। ये बात इसी तरह से अगर कर दी जाए, अगर बात समझा दी जाए कि किसी दबाव में मत आना, किसी के भी दबाव में मत आना जरूरी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा मन मुतमइन है, मैं जिम्मेदारी तुम्हारी ले सकता हूं, मैं तुम्हारे कभी बैक पे कभी फ्रंट पे खड़ा हो सकता हूं, किसी भी महाज पे, किसी भी जगह पे, जिंदगी के किसी भी सबक के दौरान, किसी भी प्रॉब्लम के दौरान, तो तुम ये जान लोगी कि मैं उस हर जगह पे मौजूद रहूंगा। अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल मुकम्मल पुख्ता आता है, तुम्हें ऐसा महसूस होता है, तो हमारी जिंदगी बड़ी खूबसूरत होगी। पहली मुलाकात में भी अगर ये मैं बता रहा हूं, इस एज ब्रैकेट में पहली मुलाकात में अगर ये बात कर दी जाए, हम कर देते हैं, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बात कर जाऊंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि यार पहली मुलाकात है, क्योंकि मेरा जो सोच है उसके पीछे जितने ख्यालात हैं, जितनी चीजें हैं, 86 बिलियन न्यूरॉन्स जो एक ही जगह पे अब हावी हो चुके हैं कि यार बस ये उससे मरकूज हैं सोचे सारी, वहां पे मैं ये बात कर जाऊंगा। और आपकी एक्शंस दरअसल प्रूफ करते हैं, सिर्फ आपकी बातें प्रूफ नहीं करती। आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किस लिहाज से बात कर रहे हैं, ये बात उसके दिल तक पहुंचती है अगर उसके दिल के अंदर कोई खन्नास ना हो, उसके दिल के अंदर कोई ऐसी छोटी सी बात ना हो या उसका ख्याल बहुत छोटा महदूद ना हो, तो चीज़ें पहुंच जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाय द वे 1:42, हमारा वक्त काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गुजर रहा है, बातें बड़ी
1: मजा आ रहा है, जबरदस्त बात की
0: नहीं, कुछ कुछ
1: कह रहे, मैं अभी ये जो
0: इस ट्रांस में रहोगे तुम, लेकिन तुम इसको प्लीज रख लेना और इसके ऊपर पुख्ता होकर, मैं चाहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है, 24 साल की उम्र में ना मैं ऐसा ही था जो इस वक्त हूँ, 24 साल की उम्र में ना मैं बिल्कुल ऐसा ही था, और शायद अभी क्योंकि एक वक्त काफी लंबा गुजर चुका है रेडियो के साथ, तो वो शायद उस तरह वाली आग नहीं है, लेकिन आग ऐसी ही कुछ थी कि बात करनी है तो प्रॉपर करनी है। अगर वो मेरे ऊपर बीती है, तुम्हारी एक बात मुझे इतनी प्यारी लगी अहमद, तुमने ये कहा कि दूसरों की डिस्कशन, किताबों की डिस्कशन, वो तो एक अलग है, आपका नॉलेज आ जाता है, लेकिन जो आप अपने अंदर से बोलते हैं ना, आपका जो अंदर है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, सही तो करना है ना यार, अगर वो खोलोगे नहीं, बोलोगे नहीं, सीखने का ये बेहतरीन अमल है, टाइम है। अगर यही चीजें सोचोगे कि यार मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं अगर ये बोलूंगा तो शायद उसमें वजन नहीं होगा, जैसे ये बोल पड़ता है ना, बड़ा प्यारा करता है, अभी इसने बोली, मैंने उसको बताया यार नहीं, उसको पता चल गया यार नहीं, अभी अभी मेरी ये लाइन है, मैंने इसको एक बार दोबारा से चेंज करना है, देखना है, पढ़ना है, अब मैंने दोबारा पढ़कर प्रॉपर आना है। शहीर ऐसा ही है ना, मेरी किसी भी बात को कभी भी ऑफेंड नहीं होना उससे, मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वरना यकीन करो मैं कभी कंबाइंड प्रोग्राम्स नहीं करता, मेरा अपने प्रोग्राम में मजा आता है, वह अकेले बैठ के रहा, लेकिन मुझे आप लोगों से वाकई बात करनी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी अरसा हो गया यार टीनएजर्स के साथ ना, और टीनएजर्स कह रहा हूँ, जेंजीज के साथ ना, उस तरह से वो उनके बारे में रील्स देखी, चीज़ें देखी नहीं, मुझे लगता है उनके साथ बैठकर उनसे बारे में पूछा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, ना कि उनके उनके बारे में राय एक पहले ही वो कर ली जाए कि हाँ यार ये ऐसे होते हैं, ऐसे वैसे ये चीज़ें।
3: यकीनन आपने फिर मुख्तलिफ पाया होगा जो आपने सुना उससे आप बात।
0: मैंने उसके ऊपर कभी वो रखा ही नहीं, यानी मेरा अपना ये मानना है, मैंने अपने ऊपर बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने अंदाज़ा नहीं लगाना, चाहे वो आखिरी मुलाकात में भी कुछ ऐसा बोल जाए, नहीं यार मैंने अंदाज़ा नहीं लगाना, मैंने उसको हर बार चांस देना है, मैं हर बार उसको मौका देना है, मेरा रब मुझे हर बार मौका दे रहा है, यार चल तुझसे फिर गलती हो गई, चल कोई बात नहीं यार, माफ़ कर दे,
3: खूबसूरत बात,
0: एक बार फिर दोबारा गलती कर ली, दर्द नज़ा तो नहीं आया ना अभी, वो वाला दर्द जिसमें रूह निकल रही होती, कब्ज़ हो रही होती है, वो निकाल रहे होते हैं, ठीक है ना, उस वो वाला वक्त तो नहीं ना आया, होशो हवास दरअसल गायब हो जाते हैं, फिर माफ़ी मांग ही नहीं सकते आप, उससे पहले मांगनी है आपको माफ़ी, वो माफ़ करता रहता है हज़ारों चांस, अगर वो कहे दूजी बारी तेनों चांस नहीं देना, मैंने तुम्हें दूसरा चांस ही नहीं देना, तुमने नमाज कैसे नहीं पढ़ी, तुमने रोज़ा कैसे नहीं रखा, तुमने उसके साथ ज्यादती कैसे की, और तुम हंस खुशी से कैसे बोल रहे हो, सब कुछ करने के बाद तुम रुक कैसे गए हो यहाँ पर, मुझसे माफ़ी, चलो मुझसे मेरे वाली माफ़ी मांगनी है, जो तुमने उसके साथ ज्यादती की उससे क्यों नहीं माफ़ी मांगी, इतने तुम अकड़ गए हो, इतने तुम पत्थर हो गए हो, तुमसे तो बड़े बड़े बुलंद पहाड़ हैं, अगर मैं उनको हुक्म दे दूँ वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएंगे, क्या कर लोगे तुम, एक छोटा सा सर दर्द बुखार आ जाए इंसान को तो वो पता ही नहीं चलता, तो मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं मौका देना है, नहीं कोई गलती हो गई है मुझसे हो गई है, फौरन माफ़ी मांगनी है, ये नहीं बनना कि यार मेरी इंसल्ट हो जाएगी यार, ये तो छोटा सा है यार, गलती तो मुझसे हो गई है, अब मैं इससे माफ़ी कैसे मांगू, नहीं मुझे मांग लेनी है बेटा, आई एम रियली सॉरी।
1: सर आज कल की जो जनरेशन है ना इसमें ये चीज़ जैसे आपने बोला कि बार बार बार बार आपको चांस देना चाहिए, हमारी वाली जो जनरेशन है ना ये एक चांस दो चांस दिए तीन चांस दिए फिर ये रुक जाते हैं, ये कहते हैं यार तीन दफा मौका दे दिया, वो तीन दफा नहीं बदला तो चौथी दफा क्या
0: बदला, नहीं ये मैं बदल इस हवाले से बात नहीं कर रहा, ये बिल्कुल ठीक है,
1: ये आज का जो पॉइंट है मैं आपको वो बता रहा हूं, लोग कहते हैं कि यार तीन दफा मैंने उसको चांस दे दिया है अब मैं उसको चौथी दफा भी दे दूंगा तो वो नहीं।
0: अच्छा वो मैं अब मजे की एक बात बताऊं, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कनेक्ट करेगी, कैसे कनेक्ट करेगी मैं नहीं समझता, मैं नहीं जानता भी कैसे अब तक पहुंचेगी, लेकिन सुनना जरा गौर से, शिर्क वो भी बर्दाश्त नहीं करता, मेरे साथ किसी दूसरे को नहीं ठहराना, और इस ताल्लुक के अंदर भी शिर्क मुश्किल है, बर्दाश्त नहीं हो सकता,
1: बिल्कुल,
0: इसमें शिर्क बर्दाश्त नहीं हो सकता, आपको बिल्कुल लॉयल रहना है और ऑनेस्ट रहना,
1: बिल्कुल
0: सच्चा रहना। बिल्कुल
1: सर, कोई भी आपने रिश्ता आप चाह रहे ना ये कंटिन्यू रहे,
0: हाँ,
1: तो आप कभी उसके पास्ट के बारे में ना,
0: उन्होंने हम ना दरअसल हम पता क्या लोग हैं, हम कहते हैं चार की इजाजत है, जायज है, सब कुछ ठीक है, उन्होंने किस सर्कमस्टांसेस में वो की पता ही नहीं है तुम लोगों को, उसमें बेवा भी शामिल है, उसमें विधवा जिसे कहते हैं बेवा शामिल है, तलाक याफ्ता शामिल है, उन लोगों को सहारा मिला वहां पे, एक डिफरेंट वर्ल्ड में इस्तेमाल नहीं कर सकता सिर्फ उसी के लिए उन्होंने नहीं, उन्होंने तो ये सेट किया आपके लिए कि अगर आपके पास इतनी ताकत है, आपके पास इतनी वक्त है, तो आप ये कर सकते हैं, ऐसा अगर आपको मौका मिले तो कर सकते हैं आप, तू करना ही है, तेनू करके रहना वा, ये नहीं किया उन्होंने, तो वो शिर्क बर्दाश्त नहीं करता। तो अगर आपको ऐसा लगे कि शिर्क हो रहा है और ये बहुत गंदा शिर्क हो रहा है, गलत हो रहा है, एक मौका हो गया, दूसरा मौका हो गया, या फिर कुछ दूसरी चीजें बीच में आ जाती हैं, इज्जत सबसे पहले नंबर पे होती है। आप अगर इज्जत दे रहे हैं, बहुत इज्जत दे रहे हैं, तो अगर वो आपको बदले में इज्जत नहीं दे रहा, तो आप उसको बताएं कि यार ये क्यों नहीं मिल रही मुझे, क्या मेरे अंदर कोई कमी है, क्या मेरी और तुम्हारी जो जात है उसमें से प्रायोरिटी तुम्हारी जात की है, मेरी नहीं है, मुझे क्या तुम्हारे साथ इस जहान में नहीं भेजा गया, मेरी उसी तरह से रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो वो जो चीज़ है ना कि आपको इज्जत सबसे पहले रखनी है। एक रिश्ते के अंदर जब इज्जत होती है तो बाकी सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बियर हो जाती हैं। ठीक है,
1: यहाँ पे भी ना मुझे लगता है दो चीज़ें हैं।
0: हाँ,
1: एक तो जैसे आपने बात की इज्जत की, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए।
0: हाँ,
1: हम यहाँ पे ना दो चीजों को कंबाइन कर देते हैं। हम अपनी ईगो को अंदर ले आते हैं।
0: हाँ, ठीक है, अना को ले आते हैं।
1: कुछ लोग हो जाते हैं बड़े ईगोइस्टिक, हो जाते हैं यार उसने ये कर दिया है, हुन में उन्हें मौका नहीं देता।
0: हाँ, हुन में उन्हें मौका
1: मर्जी का। यहाँ पे हमें अपनी ईगो को थोड़ा साइड पे रखना चाहिए,
0: थोड़ा सा साइड पे, अगर रिलेशनशिप है ना तो उसमें थोड़ा साइड पे रख लेना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: थोड़ी देर के
1: लिए। बहुत अच्छी बात की आपने, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कभी भी कुछ ऐसा स्टेप ही ना लें कि आपको नजर आना शुरू हो जाए कि यार वो सामने वाले की नजर में ना आपकी कम हो रही है।
3: जहाँ मोहब्बत होती है फिर वहाँ अना नहीं होती,
0: अना नहीं होती।
3: हाँ, अगर अना है तो वो मोहब्बत नहीं है।
0: हाँ, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते,
3: एक साथ नहीं,
1: एक साथ।
0: ठीक है, बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें। शहीर, कोई दिल में कोई बात आ रही है कहने के लिए? ट्रैक प्ले करें, एक ट्रैक प्ले करते हैं। मैंने सोचा था कॉल्स वगैरह भी रिसीव करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि लोग ना कह रहे हैं तो आपस की गल्ला करी जा रहे हैं।
1: कॉल्स ले
0: सर, ठीक है, अगर आप कॉल करना चाहें मोर देन वेलकम, आप हमें कॉल कर सकते हैं 0421100101 हमारे और आपके दरमियान रबते का नंबर। आप क्या कहना चाह रहे हैं बताएं। अस्सलाम वालेकुम जी।
4: अस्सलाम वालेकुम
0: जी। वालेकुम अस्सलाम।
4: हीरो के लिए आप भला लोगों को बता दें कि आपने कॉल नहीं ले ली ताकि हम गौर से आपको शो।
0: आवाज आ रही है आप लोगों को? यार वो किधर है दूसरा वाला? इसको लगा हुआ है वैसे, ठहरो यार एक मिनट। हाँ, अब बोलो क्या कह रही हो
4: भाई।
0: हाँ जी,
4: मतलब आपको पहले बता देना चाहिए था ना कि आपने ऐसे ही करना है, हम चुप करके शो सुनते हैं आपका।
0: ओहो,
4: भी होते हैं ना बेचारे, एक मोबाइल लेके बैठे होते हैं। अब जिस मोबाइल से मैं सुन रही इसी मोबाइल में बैलेंस होता है, मुझे इसी मोबाइल से कॉल करनी होती है।
2: शो में डिस्ट्रैक्शन आ गई।
1: सर माजरत ख्वाहें कि
0: हम माजरत ख्वाहें, हम जरा लंबी डिस्कशन चल निकली। बिस्मा बात कर रही हूँ।
4: इतनी खींचे, मैंने पहले अपना नाम बताया है।
0: क्या नाम बताया, दोबारा बताओ।
4: मैं
0: चलो ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो जल्दी से।
4: मतलब आप लोगों ने इतनी बातें कर छोड़ी है, खिचड़ी मची हुई है दिमाग में, अब मैं कौन सी बात का जवाब दूँ?
0: सारी बातों का दे दो। देखो तुम्हारे पास टाइम है, 51 मिनट हो चुके हैं, तुम्हारे पास पूरे 4 मिनट का टाइम है, 4 मिनट में सब कुछ खोल के।
1: क्यों ना हम इनसे इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानें।
0: हाँ देखो, अहमद तुमसे कुछ पूछना चाह रहा है। बिस्मा उससे सुनो क्या कह रहा है वो। हाँ
1: अस्सलाम वालेकुम बिस्मा।
4: वालेकुम सलाम।
1: अच्छा बिस्मा, अगर आपके पास टाइम है तो आप हमारी ये जो डिस्कशन हुई है, जो हमारा टॉपिक था इसमें, आप उस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप वो देना चाहेंगी?
0: इतने सारे सवालात में कोई एक सवाल का जवाब जो मन में आ रहा हो
4: आप। अच्छा, सारी डिस्कशन का कोई भी अपनी मर्जी।
0: हाँ, कहीं से भी कोई भी सवाल, क्योंकि एक सवाल नहीं है, कई सवाल थे इसमें
3: जो आपके दिल को लगा,
0: जहाँ पे आपका दिल ट्रिगर हुआ कि यार ये बात करनी है मैंने।
4: हाँ मैं जब जब आपने शादी शुदी की बातें कर रहे थे ना,
0: हाँ शादी शुदी
4: सोच रही थी ना, जब देखो अब हम जो जेन जी है ना बहुत बुरा फंस गए हैं,
0: बहुत बुरा फंस गए हैं।
4: हाँ ये देखो हमें अपने मम्मा पापा से, जैसे मेरे नानो थी ना, मतलब नानी ने जितना बर्दाश्त था उतना बर्दाश्त सबर मेरे मम्मा में नहीं है,
0: जितनी
4: मेरी मम्मा बर्दाश्त और सबर करती उतना मुझ में नहीं है, ठीक है। मैं ये सोचती हूँ कि देखो मतलब हम अपने घर मम्मा से भी डांट खाते हैं और हमारा ये हाल है, और अगर हमारी जो हमारे में से जो जनरेशन आएगी उनका क्या हाल होगा, मतलब वो तो हमसे भी ज्यादा होंगे ना, जिनमें बर्दाश्त नहीं होगा, सब्र नहीं होगा, तो मतलब हम अपने मम्मा से भी डांट सुनते हैं या इनसे भी हमारी होती है अच्छी खासी, और उसके बाद हमारी जो हमारे बच्चे होंगे हम होगा ना कि हम इनसे हुक्मरानी करें, हम इनसे ऐसे रोब जमाएं जैसे हमारे घर वाले हमसे जमाते हैं, मतलब मम्मा पापा, मगर ऐसा नहीं होने वाला, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा है वो उल्टा हमें डांटेंगे, मतलब हम फंस गए ना, हम इधर के ना उधर के, हम दोनों तरफ से बेइज्जती करवाएंगे अपनी। तो मैं कहती हूँ भाई ये तो बस ना शादी शुदी की बात पे मैं कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कि तो हो पा रहा है अपना फ्यूचर देख के। तो बाकी जो पहली बात हुई थी ना, जो अभी अहमद बिलाल भाई कर रहे थे ना, उनसे आप जब उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आप वो अपने से भी ज्यादा दूसरे को वो पहचानते हैं, इस तरह की कोई टॉपिक था ना, उससे मैं बात करूँगी। वो टॉपिक ये था, मतलब हम देखो अब बहुत से बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को पहचानते हैं, खुद शिनाख्त कहते हैं ना जिसको, वो लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में, और एक दो ही मिलेगा हमको खुद को, अपने आप को खुद पहचानते हैं, बाकी सारे हम लोगों का ज्यादा फोकस अपने से नहीं होता, दूसरों को होता है। मतलब आप जैसे कह रहे हैं ना अंदाजे नहीं लगाने चाहिए इस बार में, हम लगाते हैं, हम दूसरों पे ज्यादा फोकस करते हैं अपने पे नहीं, तो ये चीज होता है, इस वजह से हम दूसरों को मतलब उनसे ज्यादा पहचान लेते हैं, ये एक वजह है। और दूसरा एक होता है पढ़ाई इंसान को सब कुछ दे सकती है सिवाय करदार के, करदार इंसान को मतलब दूसरे लोगों से मिलके उनमें उठ बैठ ही पता चलता है इसका क्या करदार है,
0: इसका क्या किरदार है,
4: बाकी तन्हाई सब कुछ दे देगी आपको। ये चीज होता है कि हमें लोग ही बताते हैं कि आप ऐसे हो ऐसे, कि हमें अपने बारे में पता चलता है, हम खुद को नहीं खुद पहचानते, ना हम पहचानते हैं ना हम पहचानना चाहते हैं, और हम बेशक डॉक्टर का शो भी सुनते हैं फिर भी हम नहीं पता चल रहा खुद का, हमें कोई बताएगा तो फिर पता चलेगा अच्छा मैं ऐसी हूँ, मैं अपने जब मैं बात करती हूँ तो मैं ज्यादा इस तरह के वर्ड बोलती हूँ, मैं ऐसे बोलती हूँ ऐसे बोलती हूँ, तो ये चीज होती है हमें खुद पता नहीं चलता, तो ये बातें हमारा फोकस अपने पे कम दूसरों को ज्यादा होता है, इस वजह से हम दूसरों को ज्यादा उससे भी ज्यादा हम कहते हैं। और वैसे भी अगर हम किसी को ये बात कह दें ना कि हम तो आपको बेटा आपसे भी ज्यादा पहचानते हैं, इतने में वो पागल हो जाता है, अच्छा तुम मुझे पहचानती हो,
0: फौरन से इमोशनली उससे अटैच हो जाता है बंदा, अच्छा यार ये तो मुझे कभी किसी ने कहा ही नहीं, मैं तुम्हें इतना पसंद है
2: सर, ये मुझे ही कहा है,
4: खुद को भी पहचान नहीं पाया, मतलब मुझे समझ नहीं आती अपने आप को, इसको अगर समझ
0: मैंने ये बताया था कि ट्रैप में फंसना नहीं है कभी।
1: चले हम ना
0: अच्छा लेकिन मुझे पता है बिस्मा तुम ना उस पे ज्यादा बात करना चाह रही हो जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्योंकि तुम उसमें खौफजदा हो।
1: सर हम टॉपिक थोड़ा सा चेंज करते हैं बिस्मा के लिए, हम इनसे ये पूछ लेते हैं कि अगर आपको कोई पसंद आ जाए तो क्या आपको उसे बता देना चाहिए।
0: हाँ क्या आपको कोई पसंद आ जाए तो क्या उसे बता देना चाहिए बिस्मा,
4: मतलब उसको आप ना हल्का फुल्का बता दो, ठीक है आप मुझे पसंद हो,
3: हल्का फुल्का
0: सारा नहीं दसना उन्हें कि मैं सारा ही पसंद हूं, ठीक है
4: हां इतना भी नहीं, फिर हम बस उसको बता दो कि
3: जब बताना ही है तो पूरा बताएं।
2: तो उफ टेंट से
0: एक बजकर 56 मिनट दूसरी तरफ मुझे वसीम अहमद साहब नजर आ रहे हैं। बिस्मा थैंक यू वेरी मच, मैंने आपको बिल्कुल इंटरप्ट इसलिए नहीं किया, मैंने कहा खुल के बात कर ले बिस्मा आज। हाँ सुना दो मुझे जल्दी से सुना,
4: मतलब जो मैं जब से आपको सुन रही हूँ ना, मतलब मैंने आपको सुना तब भी अब यही कह रहे थे मेरा गला खराब है, आज भी अब यही
0: यार वो मेरा ना वाकई में मैं सच कह रहा हूँ कि अक्सर ऐसा होता है मेरे साथ ना, ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा है कि मुझे बहुत ज्यादा सीवियर किस्म का मुझे ये जुकाम होता है और गला खराब होता है, बहुत ज्यादा शदीद होता है और मैं शायद इसको ज्यादा हावी कर लेता हूँ।
4: हाँ जी आपके साथ कोऑपरेट करते हैं, लोग आते हैं आपके शो में और आपके साथ कोऑपरेट करते हैं कि भाई मेरा छोटा भाई है, इसका गला खराब है, इससे ज्यादा बोलना पड़ेगा, उसको तकलीफ ना हो, तभी वो आपके चोर जाते और आपका आधा शो खा जाते हैं।
0: डॉग्स डॉग्स तो डॉग्स का और मेरा तो ये है कि मोहब्बत सी है और बड़ी गहरी वाबस्तगी है। मैच फ्रीक्वेंसी सिर्फ प्रोग्राम करने के हद तक अगर ये बात की जाए या ओवरऑल लाइफ के हवाले से भी बात की जाए तो मेरी डॉग्स और ज़िया के साथ फ्रीक्वेंसी 100% मैच हुई और हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं और डंके की चोट पे होती हैं, लाइव ही हो जाती हैं कभी कभी। तो अच्छा मजे की बात ये कोई इतना खास अरसा भी नहीं हुआ क्योंकि 101 को अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नंबर वन पोजीशन पे लेके जाने वाले मतलब डॉक्स मैं सबसे पहले नाम लूंगा, लाहौर स्टेशन का नाम लूंगा कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इतने सारे खूबसूरत चेहरे और अलग अलग आवाज़ें आपको नज़र आ रही हैं सुनाई दे रही हैं ये सारे का सारा जो इसका सहरा है वो डॉक्स को पहुँचता, ये सारे का सारा ख्याल सोच ये सब चीज़ें जो है ना डॉक्स की हैं। सो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि उसके साथ में एक अलग फ्रिक्वेंसी मैच हुई।
4: आप बिल्कुल दोस्त पे ना डालें, बाद में कोई मसला हो तो कि हाँ हाँ ये दोस्त
0: नहीं, मसला हुआ तो फिर वो हम अपने ऊपर ले लेंगे क्योंकि वो हमारा फेस है, मसला हम आज नहीं आने देंगे।
2: मसला बैलेंस कहोगे।
0: हाँ खुदा करे कि मैं उस जाविये से देख सकूं जहां से आपके अंदर का हाल वाजे हो। आज का ये शेर था मेरा इसके ऊपर पोस्ट के ऊपर। आपके कुछ कॉमेंट्स हैं, दो मिनट बाकी रह गए, वसीम भाई तशरीफ लाने वाले होंगे अंदर या आ चुके होंगे? नहीं, अच्छा ठीक है। तुम्हारी हो गई है रील सारी कंप्लीट? अब्दुल रहमान तुमसे गाना सुनना था मैंने यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, फिर कभी हो जाएगा। नाम आपके ले रहा हूँ, आपके मैसेजेस पढ़ रहा हूँ। जुगनू जूनियर हमारे साथ, अनीला आपी, हमीद गुल, फरी आपी, रजा चौधरी, सज्जाद अली लाडला, मारिया शहजादी, मोहम्मद शहजाद, वड्डा तारक, निक्का तारक, वे क्या नाम लिखा उसने? अच्छा जी, वड्डा तारक, निक्का तारक, शमीम आपी, अब्दुल हमीद, बर्फी वाले, यार बहुत लंबे नाम हो गए, चलो ठीक है। जुगनू जूनियर थैंक यू वेरी मच। इसके साथ कह रहे हैं अल्लाह ज़िया अंजुम सर को अच्छी सेहत और तंदरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, उनकी फैमिली पर उनका साया हमेशा कायम रहे, आमीन सुम्मा आमीन, थैंक यू वेरी मच। जुगनू जूनियर हमारे साथ कह रहे हैं, तुम्हारे ही होने से आबाद है दिल, तुम ही जब ना होगे तो वीरान होगा। बस पहला पहला शेर पढ़ रहा हूँ, टाइम नहीं है इतना। अच्छा जी, बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेजेस हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक है। और कुछ नाम, मरीना बिलाल हैं हमारे साथ और अच्छा ठीक है, ये कल वाले पैगाम आते हैं। ओके, टाइम आपसे इजाज़त लेने का वक्त आन पहुंचा और सामने वसीम भाई भी गुंचा शौक लेकर आपके लिए तशरीफ ला चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सर कैसे हैं आप? खैरियत से? बहुत मज़ा आया आप सबसे गुफ्तगू करके, आप सबसे बात करके,
5: बहुत शुक्रिया,
0: थैंक यू वेरी मच। नयान अहमद, बिलाल, शहीर और अब्दुर्रहमान, थैंक यू वेरी मच, तुमसे गाना फिर कभी सुनेंगे।
1: थैंक यू सो मच।
0: और ये पेंडिंग में रह गया है,
6: रह गया सर,
0: क्योंकि वो मेरे जहन में है तो वो मैंने सुनना है, एक आपसे सुनना है और एक वो एक और भी लड़का है वो उससे भी सुनना है, वो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा गुनगुनाता है,
2: राहील
0: है मेरे ख्याल से, हाँ बहुत बहुत प्यारा गुनगुनाता है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे कल रात 12 बजे, प्रोग्राम अधूरी बातों में। आज बहुत सारी बातें जैसे आप सुनना चाहते हैं कुछ वैसी भी हुई, कुछ दूसरे अंदाज में भी हुई,
5: बातें अधूरी भी रही,
0: उम्मीद करता हूँ कि हाँ अधूरी रहनी चाहिए, दोबारा आपको मौका मिल जाता है बात करने का, लड़ाई करने का। तो कैसा लगा, सब ठीक रहा?
5: मजा आया,
0: तुम्हारी रील्स हो गई ना कंप्लीट। बाय द वे आखिर में एक शेर के साथ इजाजत चाहूंगा, मैं जमीन से एक दिन आसमां को आऊंगा, तुम पहले आसमां पे मेरा इंतजार करना। ये खूबसूरत सा ट्रैक सावल और अताउल्ला इसा खेलवी की खूबसूरत आवाज, वक्त का पता ही नहीं चला। कल रात आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हामिद नासर।

अनजान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव ये वीरान तो न था।

0: best music. Q101.
1: Shukriya. आपने FM 101 ट्यून किया। सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

नसीबे इश्क दिले बेकरार भी तो नहीं, नसीबे इश्क दिले बेकरार भी तो नहीं, बहुत दिनों से तेरा इंतजार भी तो नहीं। तलाफिये सितमे रोजगार कौन करे, तू हम सुखन भी नहीं राजदार भी तो नहीं। जमाना पुरसशे गम भी करे तो क्या हासिल, जमाना पुरसशे गम भी करे तो क्या हासिल, कि तेरा गम गमे लैलो निहार भी तो नहीं। तेरी निगाहे तगाफल को कौन समझाए, तेरी निगाहे तगाफल को कौन समझाए, कि अपने दिल पे मुझे इख्तियार भी तो नहीं। तेरी निगाहे तगाफल को कौन समझाए, कि अपने दिल पे मुझे इख्तियार भी तो नहीं। तू ही बता कि तेरी खामोशी को क्या समझूं, तू ही बता कि तेरी खामोशी को क्या समझूं, तेरी निगाह से कुछ आश्कार भी तो नहीं। वफा नहीं ना सही, वफा नहीं ना सही, रस्मों राह क्या कम है, वफा नहीं ना सही, रस्मों राह क्या कम है, तेरी नजर का मगर एतबार भी तो नहीं। तेरी नजर का मगर एतबार भी तो नहीं, अगरचे दिल तेरी मंजिल न बन सका ए दोस्त, अगरचे दिल तेरी मंजिल न बन सका ए दोस्त, मगर चिरागे सरे राह गुजार भी तो नहीं। बहुत सुरदा है दिल कौन इसको बहलाए, उदास भी तो नहीं बेकरार भी तो नहीं। तू ही बता तेरे बेखानमा किधर जाए, कि राह में शजरे सायादार भी तो नहीं। फलक ने फेंक दिया बरगे गुल की छांव से दूर, फलक ने फेंक दिया बरगे गुल की छांव से दूर, वहां पड़े हैं जहां खारजार भी तो नहीं। जो जिंदगी है तो बस तेरे दर्दमंदों की, जो जिंदगी है तो बस तेरे दर्दमंदों की, ये जबर भी तो नहीं इख्तियार भी तो नहीं। वफा जरिया इजहार गम सही नासिर, वफा ये है तो बस तेरे दर्दमंदों की, ये जबर भी तो नहीं इख्तियार भी तो नहीं। वफा जरिया

अभी आपने मेहदी हसन की खूबसूरत आवाज़ में खूबसूरत गीत समाज फरमाया, यकीनन आपको पसंद आया होगा। तुम जिद तो कर रहे हो, हम क्या तुम्हें सुनाएं। 101 FM पाकिस्तान आपका अपना फैमिली स्टेशन, आपके लिए ढेर सारी पोइट्री और शायरी मेरे पास मौजूद है। खुद को तेरे मेयार से घटकर नहीं देखा, जो छोड़ गया उसको पलट कर नहीं देखा। अहमद फराज का कलाम पेशे खिदमत है। खुद को तेरे मेयार से घटकर नहीं देखा, जो छोड़ गया उसको पलट कर नहीं देखा। मेरी तरह तूने शबे हिजरा नहीं काटी, मेरी तरह तूने शबे हिजरा नहीं काटी। मेरी तरह इस देख पे कट कर नहीं देखा। तू दिशना फरात ही को लहराता रहा है, तू दशनाए नफरत को ही लहराता रहा है। तूने कभी दुश्मन से लिपट कर नहीं देखा। थे कूचाए जाना से परे भी कई मंजर, दिल ने कभी इस राह से हट कर नहीं देखा। अब याद नहीं मुझको फराज अपना भी पैकर, जिस रोज से बिखरा हूं सिमट कर नहीं देखा। तू दशनाए नफरत को ही लहराता रहा है, तूने कभी दुश्मन से लिपट कर नहीं देखा। कहते हैं कि जो लोग हमारे साथ साथ ज़िंदगी में चल रहे होते हैं, कभी कभी उनके दो चेहरे होते हैं। हम एक चेहरे से वाकिफ होते हैं, दूसरे चेहरे से हम वो हमें वाकिफ ही नहीं होने देते हैं। और जब कभी उनका दूसरा चेहरा हमारे सामने आता है, वो हमारे बिल्कुल ख्यालों से बिल्कुल ऑपोजिट होता है, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। कैसा लगता है जब किसी का दूसरा चेहरा आपके सामने है, जो आपके जिसके बारे में आपने कभी ख्यालों में भी ना सोचा हो। दिल आबाद का बर्बाद भी होना जरूरी है, दिले आबाद का बर्बाद भी होना ज़रूरी है। जिसे पाना ज़रूरी है उसे खोना ज़रूरी है। मुकम्मल किस तरह होगा तमाशा बरको बारह का, मुकम्मल किस तरह होगा तमाशा बरको बारह का। तेरा हंसना ज़रूरी है, मेरा रोना ज़रूरी है। बहुत सी सुर्ख आँखें शहर में अच्छी नहीं लगती, बहुत सी सुर्ख आंखें शहर में अच्छी नहीं लगती। तेरे जागे हुओं का देर तक सोना ज़रूरी है। किसी की याद से इस उम्र में दिल की मुलाकातें, किसी की याद से इस उम्र में दिल की मुलाकातें। ठिठरती शाम में एक धूप का कोना ज़रूरी है। ये खुद सर वक्त ले जाए कहानी को कहाँ जाने, ये खुद सर वक्त ले जाए कहानी को कहाँ जाने। मुसन्निफ का किसी किरदार में होना जरूरी है। जनाबे दिल बहुत नाजा ना हो दागे मोहब्बत पर, ये दुनिया है यहाँ ये दाग भी धोना ज़रूरी है। दिले आबाद का बर्बाद भी होना ज़रूरी है, जिसे पाना ज़रूरी है उसे खोना ज़रूरी है। क्या रिश्तों में वजाहतों की ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरी है कि बताया जाए कि हम आपको इतना चाहते हैं, क्या ज़रूरी है कि हम आपकी इतनी केयर करते हैं ये भी बताया जाए, क्या ज़रूरी है कि हमें आवाज़ देनी पड़े कि मेरी बात सुनो, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई परेशानी है, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्या ये बताना ज़रूरी है। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, ना सुकून था ना करार था। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, ना सुकून था ना करार था। यही उम्र थी मेरे हमनशीं कि किसी से मुझको भी प्यार था। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, ना सुकून था ना करार था। यही उम्र थी मेरे हमनशीं कि किसी से मुझको भी प्यार था। मैं समझ रहा हूं तेरी कसक, तेरा मेरा दर्द है मुश्तरक।
मैं समझ रहा हूँ तेरी कसक, तेरा मेरा दर्द है मुश्तरिक, इसी गम का तू भी असीर है, इसी दुख का मैं भी शिकार हूँ। फकत एक धुन थी कि रात दिन इसी ख्वाबेजार में गुम रहे, फकत एक धुन थी कि रात दिन इसी ख्वाबेजार में गुम रहे, वो सुरूर ऐसा सुरूर था, वो खुमार ऐसा खुमार था। फकत एक धुन थी कि रात दिन इसी ख्वाबेजार में गुम रहे, वो सुरूर ऐसा सुरूर था, वो खुमार ऐसा खुमार था, कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ ना हो सकी। काबिले गौर शेर है, बल्कि आप इसे शाह बैत कहें तो क्या बात है। कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ ना हो सकी, मुझे फुर्सतें नहीं मिल सकी, वो हवा के रथ पे सवार था। कभी लम्हा भर की भी गुफ्तगू मेरी उसके साथ ना हो सकी, मुझे फुर्सतें नहीं मिल सकी, वो हवा के रथ पे सवार था। हम अजीब तर्ज के लोग थे कि हमारे और ही रोग थे, हम अजीब तर्ज के लोग थे कि हमारे और ही रोग थे। मैं खजा में उसका था मुंतजिर, मैं खजा में उसका था मुंतजिर, उसे इंतजार बहार था। इसे पढ़ के तुम ना समझ सके, मेरी किताब के रूप में कोई कर्ज था, कोई कर्ज था, कई साल का कई रज जुगों का उधार था। इसे पढ़ के तुम ना समझ सके, मेरी किताब के रूप में कोई कर्ज था, कई साल का कई रज जुगों का उधार था। तेरे जैसा मेरा भी हाल था, ना सुकून था ना करार था, यही उम्र थी मेरे हमनशी कि किसी से मुझको भी प्यार था, कि किसी से मुझको भी प्यार था।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया। सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM।

सब्र को, सब्र पर दिल को तो आमादा किया है लेकिन, सब्र पर दिल को तो आमादा किया है लेकिन होश उड़ जाते हैं अब भी तेरी आवाज के साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ख्याल आते ही और एक अजीब सी बिजली जो है वो कौन जाती है रगो पै में, अगर उनकी कॉल आ जाए तो फोन को देखते ही उसके ऊपर जब नंबर उनका दिखाई देता है या नाम दिखाई देता है तो अजीब सी कैफियत हो जाती है। ऐसे महसूस होता है कि जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हम मर ही जाएं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं हमारी जिंदगी में जिनको हम हमेशा याद करते रहते हैं, जो हमारे दिल के निहां खाने में हमेशा मौजूद रहते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभी ये यकतरफा आम तौर पे यकतरफा होता है, कभी कभी दो तरफा भी हो जाता है, मगर आम तौर पे जब इस तरह की कैफियत होती है वो आपकी तरफ से मोहब्बत का इजहार होता है, आपकी तरफ से वो मोहब्बत जो होती है ना वो नज़र आती है। तो जैसे अमजद इस्लाम अमजद ने कहा कि वस्व एक इजाफी था उसमें खुश मिजाजी का, वस्व एक इजाफी था उसमें खुश मिजाजी का और हमको लाहक थे वाहमे मोहब्बत के। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसे ही खुश मिजाज होता है और हमें लगता है कि शायद हम उससे मोहब्बत कर रहे हैं तो वो भी हमसे मोहब्बत कर रहा है। सईद हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, सईद ख्वाजा कदीर कदीराबाद से, सईद ख्वाजा कदीराबाद मुल्तान से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सईद ख्वाजा आपका बहुत शुक्रिया कि आप मुल्तान से हमारे प्रोग्राम में आपने SMS किया है। वसीम भाई अल्लाह सलामत रखे, आमीन। अपना कलाम है ज़रूर पर ये मज़ा आएगा, हो के आलम है दिल परेशान, हूँ का आलम है दिल परेशान, मैं कहाँ तू कहाँ, दर्द हो ना ऐसा सदा, मैं हूँ वो भी बेईमान, जुदा हो जाऊँगा सईद तेरी कायनात से, यूँ जहर हिजर का पी के बसा जाऊंगा तेरा ये जहां। शुक्रिया सईद ख्वाजा डियर ब्रदर, कुछ लिखने में क्योंकि रोमन में लिखा हुआ है आपने अपना मैसेज और उसमें भी कुछ लफ्ज़ों का आगे पीछे हो जाता है, कुछ पढ़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मज़ा नहीं आया। अगर आप उर्दू में लिख के भेज सकें या फिर आप लाइव कॉल करें तो आपसे बात होगी, आपके मुंह से हम आपका कलाम सुनेंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम को इतने गौर से सुना, कि इतने प्यार से आपने इतना लंबा मैसेज आपने टाइप करके हमें भेजा है कि मैं आपका दिल की गहराइयों से मशकूर हूँ। मैं दोबारा कोशिश कर लेता हूँ पढ़ने की कि आप ने लिखा है कि हू का आलम है दिल परेशान, मैं कहाँ तू कहाँ, दर्द होना ऐ सदा, मैं हूँ वो भी, ये पता नहीं आपने क्या लिखा है। ओके जी, जुदा हो जाऊँगा सईद तेरी कायनात से, यूँ जहर हिजर का पी के बसा जाऊंगा तेरा ये जहां। कुछ मुझे नज़र तो आ रहा है कुछ इसमें कुछ रिदम, मगर क्या है कि अगर आप सुनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। गुलशेर पाक आर्मी से आपका शो सुन रहे हैं, मेरे साथी भी सुन रहे हैं, अपने साथियों का नाम भी तो आप लिख देते ना गुलशेर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान माशाल्लाह से पाकिस्तान आर्मी से आपने हमें कॉल की है, ना आपने जगह लिखी है ना आपने अपने दोस्तों का नाम लिखा है अपने साथियों का, तो आप अपने साथियों का आप भी हमें बताएं और आप ये भी बताएं कि आप कहाँ पे हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं। आप गुलशेर, आपको आपका नाम भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा है गुलशेर, वाह वाह क्या बात है। तो हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं और आपके दोबारा से मैसेजेस का हमें इंतज़ार रहेगा कि आपके कमेंट्स आपके मैसेजेस हम तक पहुँचें और हम उसे प्रोग्राम में शामिल करें। वक्त बताते चलूँ 3:01 हो चुका है और सुन रहे हैं आप FM 101 अपने RJ वसीम अहमद के साथ प्रोग्राम आपका जाना पहचाना गुंचा शौक। कुछ और मैसेजेस हैं फेसबुक पे, बहुत ही कम मैसेजेस हैं आपके,
तो कंजूसी मत किया कीजिए, आपके कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्राम को बेहतर करने में हमारी बहुत मदद करते हैं। और जिशान ली हमारे प्रोग्राम को सुन रही हैं और लाइक कर रही हैं, ताहिरा मसूद ने प्रोग्राम को लाइक किया है, जुगनू जूनियर ने लाइक किया है, आपके कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करता हूँ। और जनाब जिशान अली का है कि अस्सलाम वालेकुम, शो अच्छा हो रहा है, प्ले लिस्ट अच्छी है, फ्रॉम कराची पाक कॉलोनी। बहुत शुक्रिया जिशान अली, आप इतनी दूर से हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से वेलकम कहता हूँ। आपको अच्छा लगा अहमद रुश्दी का गाना, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? और एक और गाना मेरे पास बहुत अच्छा मौजूद है, बल्कि साहब सभी गाने आपकी पसंद के होंगे इंशाल्लाह, प्रोग्राम सुनते रहिएगा। और इसी तरह से हमारे प्रोग्राम में ताहिरा मसूद आई हैं, इन्होंने कह के गमे नहा को भुलाया मगर भुला ना सके, ये पोइट्री भेजती हैं हमें और अभी भी इनकी पोइट्री हम तक पहुँची है, उसे मैं प्रोग्राम में शामिल करने जा रहा हूँ। जो मेरे रेगुलर लिसनर हैं, जो रेगुलर कॉलर हैं, उनके कॉमेंट्स अभी तक मुझ तक नहीं पहुँचे, जैसे उनके आमात मुझ तक पहुंचेंगे, उनकी पोइट्री पहुंचेगी, उसे भी प्रोग्राम में ज़रूर हिस्सा देंगे। और इन्होंने लिखा है ताहिरा मसूद साहिबा ने, गमे नहा को भुलाया मगर भुला ना सके, लबों को छेड़ लिया दिल से मुस्कुरा ना सके। कुछ ऐसी नींद तेरे गम की छांव में आई कि हादसाते जमाना हमें जगा ना सके, मुझे तो उनकी इबादत पे रहम आता है जिसके साथ जो सजदे में दिल झुका ना सके, गुजर गया कभी ऐसा भी वक्त मजबूरी कि हम भी रो ना सके वो भी मुस्कुरा ना सके। वाह क्या बात है, हज़ार बार हुए खुश भुला कि हम उनको, मज़ा तो ये है कि एक बार भी भुला ना सके। वाह जी वाह क्या बात है, अगर हज़ार नशे मन जलें तो फिक्र ना कर, ये फिक्र कर के गुलिस्तान पे आँच आ ना सके, खुमार अजल भी ना रास आए उन गरीबों को जो ज़िंदगी को हरीफ़ अजल बना ना सके। आपका शुक्रिया ताहिरा मसूद प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। और इसी तरह से जुगनू जूनियर कहते हैं कि तुम्हारे ही होने से आबाद है दिल, तुम्ही जब ना होगे तो वीरान होगा, तुम्ही से है हसरत तुम्ही से है अरमान, ना हसरत होगी ना हसरत ही होगी ना अरमान होगा, मेरा दिल फिदा तुम पे और जान कुर्बान, तुम्ही हो मेरी जिंदगानी का सामा, तुम्हारे ही जब काम आई ना ये जान तो फिर जान का क्या मेरी जान होगा। ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए जुगनू जूनियर, आपकी पोइट्री का भी बहुत शुक्रिया। और जो हमारे लिस्टनर सुन रहे हैं, हम उन्हें कहेंगे कि आपके कमेंट्स जो होते हैं वो प्रोग्राम को खूबसूरत बनाते हैं, तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए। पता है फेसबुक का www.facebook.com/fm11lahore। अब महबूब अली हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए और फिर कॉल इनकी पहुंची, महबूब अली ने हमारे प्रोग्राम का जो पहला गीत है उस वक्त इनकी कॉल आई थी, मैं माजरा चाहता हूँ कि ज़रा देर हो गई आपका पैगाम पढ़ते पढ़ते, तो आपने उस गाने को बहुत पसंद किया, तुम जो कर रहे हो ओके जी, और बहुत शुक्रिया प्रोग्राम को पसंद करने का। अब्दुल हमीद फरुखाबाद से हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, रेगुलर लिस्नर कॉलर, और बहुत दुआएं दे रहे थे तमाम सुनने वालों को और कह रहे कि रेडियो की आवाज़ जो है ना आपकी कम आ रही है, चलें जनाब अल्लाह करे कि ठीक हो जाए। तनवीर अकबर हमारे प्रोग्राम में वापड़ा टाउन लाहौर से शामिल हुए हैं, इनके साथ मुनीर भाई हैं और मोहम्मद असलम है। तनवीर अकबर और मुनीर भाई और मोहम्मद असलम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने तमाम लोगों को सलाम भिजवाया है और तमाम बीमारों के लिए शफा की दुआ की है, और उसके साथ साथ जो हमारे आरजे हैं ज़ियान जुम, उनके लिए भी इन्होंने नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। साजिदार हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं, कह रहे कि 2016 में मैंने आपको पहली दफ़ा कॉल की थी और अब मैंने आपको कहा था कि तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे मुन्नी बेगम की आवाज़ में सुना दीजिए, तो आपने सुना दिया था वो दिन, और आज के दिन साजिदार हमारे साथ मौजूद हैं, दरमियान में गायब भी हो गए थे मगर माशाल्लाह से दोबारा से आ गए हैं। साजिदार जीते रहिए, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपने भी एक रिक्वेस्ट की है प्रोग्राम में अपनी एक गज़ल सुनने की, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको आज भी आपकी पसंद की गज़ल ज़रूर सुना दूँ और सुना सकूँ। ओके जनाब, कलाम करती नहीं बोलती भी जाती है, कलाम करती नहीं बोलती भी जाती है, तेरी नज़र को ये कैसी जुबान आती है, कभी कभी मुझे पहचानती नहीं वो आंख, कभी चिराग से चारों तरफ जलाती है,
ये चार सू का अंधेरा सिमटने लगता है, कुछ इस तरह तेरी आवाज जगमगाती है। ये चार सू का अंधेरा सिमटने लगता है, कुछ इस तरह तेरी आवाज जगमगाती है। मैं उसको देखता रहता हूं रात ढलने तक, मैं उसको देखता रहता हूं रात ढलने तक, जो चांदनी तेरी गलियों से हो किया थी। वाह वाह क्या बात है। ये अमजद इस्लाम अमजद का कलाम मैं आपको सुना रहा हूँ। ये शेर मैं दोबारा से आपको आपकी नज़र करूँगा और यकीन मानिए कि इसके अंदर इतना रोमांस है, इतना प्यार है, इतनी खूबसूरती है कि मैं क्या बताऊँ आपको, मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी तारीफ़ करने के लिए। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि जब आसमान पे चांद होता है तो जो महबूब होते हैं वो आपस में कहते हैं कि रात को, चाहे वो कितने ही फासले पे क्यों ना हो, एक दूसरे से कितनी दूर क्यों ना हो, किसी और शहर में वो, किसी और शहर में वो, किसी और मुल्क में वो, किसी और मुल्क में वो, कहते हैं कि चांद को तुम देखना मैं भी देखूँगा और इस तरह हम एक दूसरे को देख पाएंगे। मैं शेर पढ़ता हूँ दोबारा से, गौर से सुनिएगा। मैं उसको देखता रहता हूँ रात ढलने तक, मैं उसको देखता रहता हूँ रात ढलने तक, जो चांदनी तेरी गलियों से होके आती है, ये रोशनी भी अता है तेरी मोहब्बत की, ये रोशनी भी अता है तेरी मोहब्बत की, जो मेरी रूह के मंजर मुझे दिखाती है। कलाम करती नहीं बोलती भी जाती है, तेरी नज़र को ये कैसी जुबान आती है। कुछ निगाहें बहुत कातिलाना किस्म की होती हैं, कुछ निगाहें जो होती हैं वो आपके निगाहों में से होती है, आपके दिल को चीरती हुई रूह तक पहुंच जाती हैं, और शायद इसी को मोहब्बत कहते हैं, और शायद यही मोहब्बत पूरी कायनात को कायम किए हुए हैं। रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, ये और बात तेरी आरजू न रास आई। रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, रहे हयात में कुछ मरहले तो देख लिए, ये और बात तेरी आरजू न रास आई। ये सानहा भी मोहब्बत में बारहा गुजरा, कि उसने हाल भी पूछा तो आंख भर आई। मैं सोते सोते कई बार चौंक चौंक पड़ा, मैं सोते सोते कई बार चौंक चौंक पड़ा, तमाम रात तेरे पहलू से आंच आई। दिले फुसुरदा में फिर धड़कनों का शोर उठा, ये बैठे बैठे मुझे किन दिनों की याद आई। वो दिन जो बीत चुके होते हैं ना, जो दिल के अंदर हर वक्त मौजूद होते हैं, वो लम्हे उनको हम किसी भी वक्त अपने आप से जुदा नहीं कर सकते। अगर दिल तो उदास रहता है ना उन बातों को याद करके। दिले फसुरदा में फिर धड़कनों का शोर उठा, ये बैठे बैठे मुझे किन दिनों की याद आई। मैं सोते सोते कई बार चौंक चौंक पड़ा, तमाम रात तेरे पहलुओं से आंच आई। खुली जो आंख तो कुछ और ही समा देखा, खुली जो आंख तो कुछ और ही समा देखा। वो लोग थे न वो जलसे न शहरे रानाई, फिर उसकी याद में दिल बेकरार है नासिर, फिर उसकी याद में दिल बेकरार है नासिर। बिछड़ के जिससे हुई शहर शहर रुसवाई, रहे हैं आप में कुछ मरहले तो देख लिए, ये और बात तेरी आरजू ना रासाई। आवाज़ आपकी सवातों तक पहुँच रही है आपके अपने मेज़बान आरजे वसीम अहमद की। प्रोग्राम में लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे।

0: प्यार एक शख्स के इकरार से मशरूत न कर, प्यार एक शख्स के इकरार से मशरूत न कर, शर्त इकरार पे इनकार भी हो सकता है। मुझसे दामन ना छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे दामन ना छुड़ा, मुझको बचा कर रख ले, मुझसे एक रोज तुझे प्यार भी हो सकता है। आज के प्रोग्राम में जो पहले कॉलर हमारे मौजूद हैं उनसे हम बात करके देखते हैं कि हमारे साथ लाइन पे कौन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकात।
0: जी, हमारे साथ कौन बात कर रहे हैं?
1: असद अली लाहौर से मुखातिब
0: हूं। जी असद अली, क्या हाल है आपकी? ठीक ठाक हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह कुल हाल।
0: अपना रेडियो बंद करें।
1: वही करने लगा हूं। चले
0: जी, क्या कहेंगे?
1: काल में प्रॉब्लम होने लगा, बड़ी सी काल में रेडी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ जी वसीम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं?
0: जी जी
1: ठीक है मेरे भाई की।
0: जी जी शुक्र अल्लाह का, ठीक है।
1: आपको सलामत रखे।
0: जी जी बहुत शुक्रिया। अमीन।
1: अच्छा, आपने जो मौजू रखा, मौजू आपने बहुत प्यारा रखा है। टॉपिक आपका बहुत प्यारा, दोनों टॉपिक आपके बहुत प्यारे हैं। एक तो मेरे जहन में, दूसरा जहन से निकल गया काल बनाते बनाते। जो आप पूछे ना कि रिश्तों के अंदर वजाहत जरूरी है,
0: जरूरत होती है वजाहतों की।
1: हाँ, मेरे ख्याल से इस दौर के रिश्तों के अंदर जो है ना, उसमें यानी है वजाहत की जरूरत, जो इस दौर के रिश्ते हैं।
0: मतलब बताना पड़ता है, कहना पड़ता है।
1: जी जी बिल्कुल, बताना पड़ता है
0: कि देख यार, मैं तेरा भाई हूँ, या मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, ये बताने की जरूरत है।
1: देखिए, बेसिक बताने की जरूरत है, बताना ही बेहतर है। वैसे कोई है जी अगर समझ जावे, ज्यादा ये अगर दसे बड़ा लगता लोगों को। तो असल में देखिए ना, आज के वक्त की अगर हम बात करें ना, तो जो रिश्ते हैं उसमें बताने की बहुत जरूरत है। अगर आज से 50 साल पीछे चले गए तो क्या ही बात है उस दौर की। तो
0: अच्छा,
1: उस दौर में एहसास बहुत था, आज के दौर में एहसास नहीं है।
0: आजकल
1: भाई को कत्ल कर रहा है, बहन बहन को कत्ल कर रही है, ठीक है ना। तो अल्लाह आपको सलामत रखे। शेर अगर आपकी इजाजत हो तो शेर
0: जी, जी, सुनाए सुनाए।
1: शेर मेरे पास एक दो पुराने हैं, वो जो आपको मैं बार बार सुनाता हूँ।
0: एक सुना दे उनमें से।
1: आपकी आवाज सुनने के लिए मैं आपको कॉल कर देता हूँ। आपने मुझे ना अहमद फराज का कलाम सुनाने है कॉल के बाद।
0: चले आप सुनाए ना, आपके पास कौन सा शेर है, वो एक शेर सुना दे हमें।
1: मैं सुनाने लगा हूं। चलते चलते दिल ने पूछा जख्मी पांव के छालों से, चलते चलते दिल ने पूछा जख्मी पांव के छालों से, कितनी दूर बसाली बस्ती दिल में रहने वालों ने।
0: वाह वाह क्या बात।
1: दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम थे बुरा नसीब था, इतनी कोशिशें करके कुछ भी ना कर सके हम, वसीम भाई घर चलता रहा और समुंदर भी करीब था।
0: बहुत शुक्रिया असद अली, बहुत शुक्रिया। अल्लाह
1: तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम, बिलखसूस मेरी बहन अनिला पी और बोती जट साहब है मेरे भाई, तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, बहुत ही खूबसूरत बात की, मुख्तसर और जामे, क्या बात है जनाब। ऐसी कॉल होनी चाहिए ताकि दूसरे लोग उसको एंजॉय भी करें और अगले बंदे की बारी भी जल्दी आ जाए। हेलो
2: जी वसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या बात है जनाब, क्या बात है, कैसे हैं आप?
2: कॉल मेरी मिली थी पहले, लेकिन भाई साहब नंबर ले गए।
0: कैसे?
2: बस वो एक्चुअली गली में ना कोई लेडीज थी, उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, उनको देख रहा था ना विंडो से ना। तो विंडो से देख रहा था, उनकी हार्ट पेशेंट थी, एमरजेंसी में लेके गया उनको।
0: किनको?
2: लेबर्स में से किसी।
0: अच्छा अच्छा, ओहो।
2: तो इस वजह से भी वो कॉल नहीं कर सका पहले।
0: अच्छा, अब ठीक हो? अब ठीक है
2: जी, अलहमदुलिल्लाह। चले गए वो लेके उनको।
0: चले चले चले, शुक्र है।
2: तो सिंधी पहले तो शाम देसी डॉट का आपका प्रोग्राम सुनने का, वो ये है कि 7 बजे खाना खा लें, आराम से लेट जाए, कोई पूछे कोई आप नींद आ रही है। आज मैंने ऐसे किया।
0: अच्छा, नींद आ भी है, नींद आ भी आ रही हो ना, तो उसके बाद आंखें बंद करके ना जाली जाली सा, यार मैंने नींद आ रही पी, मैंने सोन दियो।
2: ऐसे किया मैंने आज।
0: अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छा यार, बहुत शुक्रिया आपका, मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ, मेरी खातिर आप जल्दी सोए, मेरी खातिर आप जल्दी उठे, क्या बात है। कुछ शेर सुनाए मजे का,
2: जो आजकल चल रहा
0: है। शेर सुना रहे हैं आपने, शेर छाड़ ना देना साढ़े से।
2: नहीं आज के मौके में नफ्स से बातचीत करनी चाहिए ना।
0: हाँ अच्छा सा शेर
2: सुना। अच्छा, अच्छा सा दर्द दे गया बे इतबार आपका।
0: अच्छा
2: नहीं चाहिए झूठा प्यार आपका।
0: हाँ क्या बात,
2: जिस हिसाब से दिल तोड़ते फिर रहे हो अच्छा चल रहा है कारोबार आपका।
0: हाँ हाँ वाह वाह, मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा सुनाया आपने, बहुत बढ़िया। मुझे एक शेर याद आया, कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, हैं तारिक भाई
2: जी,
0: कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं।
2: गली में एक लड़का है पुलिस में है, वो बड़ी अच्छी पोस्ट पे है, वो एकदम उसने लव किया, बड़ी पुरानी बात है, कहता मैं सुसाइड कर लूंगा, मैं खुदकुशी कर लूंगा। लड़की कहती मैं भी कर लूंगी, आज उसके भी चार बच्चे हैं, उसके भी दोनों अलग अलग शादी। मैं उसे कहता हूँ
0: आपने मेरे शेर को पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि कितने झूठे थे हम मोहब्बत में, तुम भी जिंदा हो हम भी जिंदा हैं। तारिक भाई थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए।
2: नीला भी को सलाम दीजिएगा, महबूब साहब को भी
0: आपका सलाम पहुंच गया, थैंक यू,
2: अल्लाह
0: हाफिज़। ओके जी।

कहते कि आंखें हमेशा सच बोलती हैं, आंखें जो कहती हैं वो सही होता है। हम मोहब्बत के बहुत दावे करते हैं, हम मोहब्बत को बहुत याद करते हैं, हम बिछड़ने वालों को बहुत। कहते कि आंखें हमेशा सच बोलती हैं, आंखें जो कहती हैं वो सही होता है। हम मोहब्बत के बहुत दावे

0: शुक्रिया अल्लाह का, बिल्कुल ठीक हूँ। कौन बोल रहे हैं?
1: वसीम बोल रहा हूँ सर, अहमदाबाद से।
0: कौन?
1: वसीम बोल रहा हूँ, वसीम सर अहमदाबाद से।
0: अच्छा, वसीम बोल रहे हैं मेरे हमनाम अहमदाबाद से। क्या बात है, क्या बात है ना, वेलकम, कैसे हैं आप?
1: शुक्र अल्लाह का सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अभी रेडियो ऑन किया है तो माशाल्लाह आपका शो सुन रहा हूँ। बाकी टॉपिक का या इस तरह का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैं अभी ड्यूटी पे आया हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: और वैसे बस का दिनों में आपका प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, आपसे बातचीत नहीं हुई है लेकिन प्रोग्राम आपका माशाल्लाह सुनता हूँ, अच्छा होता है, खूबसूरत से आवाज में
0: बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए कि क्या रिश्तों में वजाहत करनी जरूरी होती है या वजाहत के बगैर भी रिश्ते चल जाते हैं?
1: सर जी, आजकल का जो माशरा है या आजकल के जो मामलात है वो देखें कि आजकल का दौर और साहब का है। मजीद आप 10 साल 5 साल 15 साल पीछे चले जाएं, उस इत्तेफाक था, एक दूसरे से मोहब्बत थी, एक दूसरे के घर आना जाना था। आज देखें, आज इधर भी जो बैठे हैं, कोई चाचा जात भाई बैठा है उसको किसी की परवाह नहीं है, सब मोबाइलों पे लगे हुए हैं। आगे किसी की शादी होती थी, 5-5, 10-10 दिन रखते थे, उसमें खाला जात आ जाती थी, चाचा जात आ जाते थे, फूफो आ जाती थी, वो सारे बैठ के गप पे शुगल, अच्छा मजाक होता था। वो दौर आप देखें और इस दौर में कितना फर्क आ गया। इस दौर में सर जी बहुत सारी जो है ना बातें इंसान को,
0: तो फिर हमें बताना चाहिए आजकल के दौर में, हमें बताना पड़ेगा कि जनाब मैं आपका चचाजाद भाई हूँ, मैं आपका सगा भाई हूँ, ये बताना पड़ेगा कि आप अपने रवैया मेरे साथ ठीक रखें, मेरे साथ सही रहें।
1: बिल्कुल सर जी, आजकल के दौर में ये आगे देखें, जो आपका भाई है, चचाजाद भाई है, उससे आगे पीछे कोई दो चार रिश्तों को जानता पहचानता है। आज जो बहुत करीबी रिश्ते हम उनको पहचानते हैं, बाकी और किसी को नहीं पहचानते।
0: हाँ ये तो है, ये तो
1: ये तो जरी बात है। आजकल बताना पड़ता है, यार मैं आपका रिश्ते में ये लग रहा हूँ, आपका आजकल हमारे को रिश्ते का पता नहीं है, यार ये मेरे वालद के रिश्ते से है या ये मेरी माँ के रिश्ते से है।
0: चले, बहुत शुक्रिया आपका वसीम, बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
1: आपको बताना पड़ता है सर
0: जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।
1: ओके सर,
0: अल्लाह हाफिज। ओके जी, दिल जल रहा था गम से मगर नगमा गर रहा, दिल जल रहा था गम से मगर नगमा गर रहा, जब तक रहा मैं साथ मेरे ये हुनर रहा, सुबह सफर की रात थी तारे थे और हवा, सुबह सफर की रात थी तारे थे और हवा, साया सा एक देर तलक बाम पर रहा, साया सा एक देर तलक बाम पर रहा, मेरी सदा हवा में बहुत दूर तक गई, मेरी सदा हवा में बहुत दूर तक गई, पर मैं बुला रहा था जिसे बेखबर रहा, गुजरी है क्या मजे से ख्यालों में जिंदगी, दूरी का ये तिलिस्म बड़ा कारगर रहा, खौफ आसमां के साथ था सर पर झुका हुआ, खौफ आसमां के साथ था सर पर झुका हुआ, कोई है भी या नहीं है यही दिल को डर रहा, उस आखिरी नजर में अजब दर्द था मुनीर, उस आखिरी नजर में अजब दर्द था मुनीर, जाने का उसके रंज मुझे उम्र भर रहा, दिल जल रहा था गम से मगर नगमा गर रहा, जब तक रहा मैं साथ मेरे ये हुनर रहा। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।
0: वालेकुम अस्सलाम हमीद गुल साहब, वेलकम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं?
2: आप ठीक हैं सर, खैरियत से? आपको भी वेलकम सर।
0: जी जी, बहुत शुक्रिया जी, खैरियत से हूँ जी। क्या सुनाएंगे, कुछ लाए हैं मजेदार सा?
2: वो शाहिद जकी साहब की गजल के चंद अशआर हैं
0: जी,
2: नज़्म सुनाएंगे आपको अपनी आखिर में
0: जी।
2: शाहिद जकी साहब कहते हैं कि यार भी राह की दीवार समझते हैं,
0: वाह,
2: यार भी राह की दीवार समझते हैं मुझे, मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे।
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
2: मैं समझता था मेरे यार समझते हैं मुझे, और जड़ उखड़ने से झुकी

0: कहती हैं शाखें मेरी,
1: वाह,
0: जड़ उखड़ने से झुकी रहती हैं शाखें मेरी, दूर से लोग समर बार समझते हैं मुझे।
1: बहुत अच्छी।
0: और एक सच्चा शेर सुनिएगा कि नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाना, नेक गिना जाता है। नेक लोगों में मुझे नेक गिना जाता है और गुनहगार गुनहगार समझते हैं मुझे।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: और मैं बदलते हुए हालात में डल जाता हूँ। मैं बदलते हुए हालात में डल जाता हूँ, देखने वाले अदाकार समझते हैं मुझे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: और इसमें एक बड़ा बारीक सा शेर है कि रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ। रोशनी सरहदों के पार भी पहुंचाता हूँ, हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे। हम वतन इसलिए गद्दार समझते हैं मुझे, और वो जो उस पार हैं, उनके लिए इस पार हूँ मैं। देखिए आर पार का क्या खूबसूरत मंजर है कि वो जो उस पार हैं, उनके लिए इस पार हूँ मैं, ये जो इस पार हैं, उस पार समझते हैं मुझे।
1: बहुत अच्छे।
0: और मैं तो यूं चुप हूं कि अंदर से बहुत खाली।
1: वाह,
0: वो सर मजा लीजिए इस शेर का।
1: क्या बात।
0: मैं तो यूं चुप हूं कि अंदर से बहुत
1: खाली हूं। वाह,
0: और ये लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: और ये लोग पुरस्रार समझते हैं मुझे।
1: वाह,
0: और मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ। मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ, छोड़ दुकानदार खरीदार समझते हैं।
1: वाह वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
0: मैं तो खुद बिकने को बाजार में आया हुआ हूँ और दुकानदार खरीदार समझते
1: हैं मुझे। वाह,
0: और इसका मतलब है कि लाश की तरह सरे आबे रवा हूँ शाहद। लाश की तरह सरे आबे रवा हूँ शाहद, डूबने वाले मददगार समझते हैं।
1: ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया। डूबने वाले मददगार समझते हैं मुझे, बहुत
0: मददगार समझते हैं मुझे। मैं आपको एक नज़्म सुनाता हूँ
1: जी,
0: लेकिन उससे पहले एक बात है। इसी वो एक शायर थे हैं अभी, अज़हर इकबाल साहब
1: जी।
0: उन्होंने एक बात की कि एक शागिर्द अपने उस्ताद के पास गया तो उसने कहा उस्ताद जी मैंने शेर कहा है, देखें आप। तो उसने कहा पढ़ो। तो उसने कहा कम से कम दो दिल होते, दो दिल तो होते इश्क में
1: जी,
0: एक रखते एक खोते इश्क में। तो उस्ताद ने कहा कि मियां तुम इसे ऐसा कर लो कि कम से कम 100 दिल तो होते प्यार में। कम से कम 100 दिल तो होते प्यार में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते प्यार में।
1: बहुत अच्छे,
0: तो
1: बहुत अच्छे।
0: अच्छा, उसने कहा शेर, उसने कहा ठीक हो गया उस्ताद जी। वो एक और उस्ताद के बाद चला गया तो उसने कहा कि उस्ताद जी मैंने शेर लिखा है। अच्छा, वो उन्होंने वो इसला वाला शेर पढ़ा कि कम से कम 100 दिल तो होते प्यार में, रफ्ता रफ्ता सबको खोते प्यार में। उसने कहा शेर तो बड़ा अच्छा है लेकिन तुम्हारा नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि उसने कहा मेरा असर क्यों? उसने कहा तुम्हारे 2 दिल से ज्यादा रखने की औकात नहीं। शायरी कैसी चीज है जो पकड़ी जाती है,
1: पकड़ी जाती है, ये है।
0: लहजे से पकड़ी जाती है, बड़ी चीजों से पकड़ी जाती है, तलफ़ुज़ से पकड़ी जाती है और बड़ी चीजों से पकड़ी जाती है। मैं एक मुख्तसर सी नज़्म जिसका उनवान है गोशवारा। आजकल मुझे इनकम टैक्स वाले ने वो मुझे भेज रहे हैं कि आप गोशवारे जमा करें
1: जी जी।
0: मेरा दिल था उनको गोशवारे की जगह अपनी ये नज्म उनके लिए ना दे दूं। नज्म देखिए, बड़ी दो चार लाइनों की नज्म है कि तुम्हारी आंखें अब भी वही हैं। वसीम साहब तुम्हारी आंखें, वैसे आपको मैं मुखातिब करके कहता हूँ लेकिन इससे मुराद नहीं है
1: जी जी।
0: तुम्हारी आंखें अब भी वही हैं, तुम्हारी यादों का सफाक चेहरा वो सर्द लहजा अब भी वही है। मगर ऐ बेवफा ये तो बता मैं तेरे दिल में कितना बचा हूँ। मगर ऐ बेवफा ये तो बता मैं तेरे दिल में कितना बचा हूँ, जरा हिसाब करके तो बता, मुझे ख्वाबों का गोशवारा भरना है। मुझे ख्वाबों का गोशवारा भरना है, तुमने बस मेरा यही आखिरी काम करना है, मेरा ये काम करोगे ना,
1: वाह,
0: मेरा ये काम करोगे ना, ख्वाबों में रंग भरोगे ना।
1: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
0: तुम्हारी आंखें अब भी वही हैं,
1: तुम्हारी
0: यादों का, तुम्हारी यादों का वो सफात चेहरा, वो सर्द लहजा अब भी वही।
1: वाह क्या बात है, बहुत शुक्रिया अमित गुल साहब, थैंक यू वेरी,
0: थैंक यू सर, थैंक यू,
1: जीते रहिए, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, ताज़ा मोहब्बतों का नशा जिस्मों जाँ में है, ताज़ा मोहब्बतों का नशा जिस्मों जाँ में है, फिर मौसम बहार मेरे गुलिस्तान में है। एक ख्वाब है कि बारे दिगर देखते हैं हम, एक आशना सी रोशनी सारे मकाम में है। एक शाख यास्मीन थी कल तक खिजा असर, और आज सारा बाग उसी की अमां में है। खुशबू को तर्क करके न लाए चमन में रंग, इतनी तो सूझबूझ मेरे बागबां में है। लश्कर की आंख माले गनीमत पे है लगे, सालार फौज और किसी इम्तिहान में है। हर जानसार याद दहानी में मुनहमिक, नेकी का हर हिसाब दिले दोस्ता में है। हैरत से देखता है समंदर मेरी तरफ, कश्ती में कोई बात है या बादबा में है। ताज़ा मोहब्बतों का नशा जिस्मों जाँ में है, फिर मौसम बहार मेरे गुलिस्तां में है, फिर मौसम बहार मेरे गुलिस्तां में है। नईरा नूर की आवाज़, साजिद डार

0: रहता है मगर एक अजब सा खौफ सा दिल को। ओके जनाब, अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: अभी ऐसे नहीं है, गलना तो नहीं ना।
0: कौन बोल रहा
1: है? सर मैं मोहम्मद इकबाल अर्ज कर रहा हूँ, लाहौर शहर।
0: जी मोहम्मद इकबाल, जुगनू जूनियर।
1: जी जुगनू जूनियर। मैं देख लो पिछले शो की मेरी तकरीबन 5 to 6 बैलना पूरी गई है। एडे च भी है सतमी बैल जान नहीं थी, बुरी कॉल कर लेती। मैं पता की सोचा थी, मैं कहा हूं मैं चुकी, मैं करनी कोई नहीं।
0: की नहीं करनी
1: कॉल?
0: क्यों?
1: सतमी बैल जा रही थी, पहले तकरीबन 2 बैलना गई ने ऑफ एयर, तुम नहीं चुकी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: पंजवी बैल होने जा रही थी ऑन एयर जी, मैं नहीं चुकनी हूं, ए हूं चुकनी थी, चुकनी थी, मैं तो नहीं करनी
0: जी।
1: तो शो का मजा खराब हो जाता है ना।
0: हां जुगनू जुगनू, की हाल है? ठीक ठाक जी, फर्स्ट क्लास जी।
1: अल्हम्दुलिल्लाह, सब तो पहले तो मैं ज़िया भाई की दुआ करांगा कि अल्लाह ताला उन्होंने जल्द अज जल्द सेहत खुली अता फरमाए और दोबारा अपना शो जरा ना आरते जुगनू।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जुगनू जूनियर, बहुत शुक्रिया।
1: दूसरे नंबर पे अनिला पी साइदा पी अमीर गुल साहब और अब्दुल हमीद बर्फी वाले निका तारक बड्डा था, तो मैं सारे खूबसूरत कॉलर और लिसनर में अस्सलाम वालेकुम आखांगा। तीसरे नंबर पे जो तुसी चंदे ते मैं 4 to 5 to 6 रहने अली यूसुफ साहब।
0: हां 2-3 सुना दियो।
1: ते लफ्जों में अपने शहद कोई घोलता नहीं।
0: वाह।
1: लफ्जों में अपने शहद कोई घोलता नहीं, हर शख्स बोलता है मगर तोलता नहीं।
0: बोलता नहीं, वाह।
1: तोलता नहीं, अंगुष्ट उठ रही है मेरी जात पर मगर तब यार देखते हैं कोई बोलता नहीं। देता है उसको इश्क भी रुतबा कमाल का, सब कुछ गंवा के इश्क में जो डोलता नहीं। और सेकंड लास्ट शेर है कि करने लगे हैं प्यार में मरने के अहद सब, उकदे कोई हयात के अब खोलता नहीं।
0: वाह।
1: बंदा जलील होता है अपने ही काम से, वो मालिक कभी किसी को रोलता नहीं।
0: बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया।
1: अक्सर लोग कह देते हैं ना कि मेरी किस्मत ही खराब है।
0: सही बात है,
1: ये गलत होता है। वो मालिक जो है ना, वो कभी किसी को नहीं डोलता।
0: बिल्कुल ठीक,
1: बंदा अपनी हरकतों से चली जाता है।
0: बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया।
1: तमाम लिसनर्स और तमाम खूबसूरत कॉलर्स को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: चुक लिया करो यार
0: जी,
1: मैं कॉल चुक लिया करो।
0: ओके अल्लाह हाफिज़। चलो जरूर सुना रहा, थैंक यू, अल्लाह
1: हाफिज़,
0: अल्लाह हाफिज़। ओके जी, जुगनू जूनियर हमारे बहुत अच्छे कॉलर हैं, बड़ा प्यार करते हैं। और जनाब मैसेज हम तक पहुंचे, सईद ख्वाजा का कदीराबाद मुल्तान से। वसीम भाई नंबर बता दें, कॉल करनी है। शुक्रिया, नंबर नोट करें जनाब सईद ख्वाजा जी के। नंबर है हमारा 0421110001, 042 लाहौर का कोड है। उसके बाद आपने 111 तीन दफ़ा मिलाना है, यानी 111 फिर 0000 ये भी तीन दफ़ा, फिर 111 1111001001। दोबारा सुन लें, 0421110001। इस नंबर को मिला के आप मेरे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया मैसेज करने का। और इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे भी चंद और लोग शामिल हुए हैं। फैसल अब्बास हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, इन्होंने प्रोग्राम को लाइक किया है। जिशान अली ने लाइक किया है, ताहिरा मसूद ने लाइक किया है, हमीद गुल साहब ने लाइक किया है, जुगनू जूनियर ने प्रोग्राम को लाइक किया है। आपका बहुत शुक्रिया। और जिशान अली ने कहा कि अस्सलाम वालेकुम, शो अच्छा हो रहा है। अच्छा, ये मैसेज हम इनका पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा मेरे सामने आ गया तो दोबारा भी मैंने पढ़ दिया है, ऐसी कौन सी बात है। और حمید گل صاحب کہتے ہیں کہ السلام علیکم، لسٹنگ سلامت رہے، نیا ایک باب لکھنا چاہتا ہوں، انوکھے خواب لکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ کو سوچتا رہتا ہوں پل پل، تجھے نایاب لکھنا چاہتا ہوں۔ بہت اچھا، بہت خوب، بہت بڑھیا حمید گل صاحب، آپ تو جیتے رہیے۔ فیصل عباس کہتے ہیں وسیم بھائی فرام لاہور، السلام علیکم وسیم بھائی فرام لاہور۔ اوکے جی فیصل عباس، ویلکم ٹو مائی شو، بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ اور اسی طرح سے ہمارے پروگرام میں جگنو جونیئر کے بہت سارے میسیجز ہیں۔ طاہرہ مسعود کہتی ہیں کہ آنکھ میں بغض کا خنجر تو زباں آری کی، آنکھ میں بغض کا خنجر تو زباں آری کی بات کرتا ہے، وہ کس منہ سے وفاداری کی، ہر قدم پر ہے یہاں سانپ مگر دیکھ مجھے، سیڑھیاں چڑھتا چلا جاتا ہوں دشواری کی۔ بہت شکریہ۔ اور اسی طرح سے جگنو جونیئر ہمارے پروگرام میں ایک دفعہ پھر شامل ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں جناب جگنو جونیئر کے ڈھیر سارے پیغام، اور ہمارے پروگرام میں شامل ہیں فوزیہ جی۔ فوزیہ جی آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام کو سننے کے لیے اور پروگرام کو پسند کرنے کے لیے۔ ون ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن، آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، آپ کے اپنے میزبان آر جے وسیم احمد کی۔ وقت بتاتے چلوں 3:39، 4 بجے تک میرا آپ کا ساتھ ہے، اور آپ اپنی خوبصورت شاعری کے ساتھ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ ٹاپک ہے جناب آج کے پروگرام کا، کیا رشتوں میں وضاحتوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آخری بار ملو رسم محبت ہے یہی، آخری بار ملو رسم محبت ہے یہی، آؤ ایک شام مناتے ہیں بچھڑنے کے لیے، یاد رکھنے کا نام میرے پاس امکان رہے، آج بس آ کے ملو دل سے اترنے کے لیے۔ آخری بار ملو رسم محبت ہے یہی، اور ایک شام مناتے ہیں بچھڑنے کے لیے، یاد رکھنے کا نہ میرے پاس امکان رہے، آج بس آ کے ملو دل سے اترنے کے لیے۔

क्या जरूरी है कि हाथों में तेरा हाथ भी हो, चंद यादों की रफाकत ही बहुत काफी है। लोग चलते हैं इसी पुल से घरों की जानिब, ये थकन इतनी मुसाफत ही बहुत काफी है, ये थकन इतनी मुसाफत ही बहुत काफी है। ये जरूरी है कि हाथों में तेरा हाथ भी हो, चंद यादों की रफाकत ही बहुत काफी है।

0: मैं हूँ यहाँ, तू है कहाँ। खूबसूरत गीत आप सुन रही हैं और अगले कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
1: जी भाई कैसे हैं आप?
0: जी शुक्र अल्लाह ठीक है। कौन?
1: जी लाहौर से इरम बात कर रही
0: हूं। जी इरम, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं?
1: शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का। और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: जी जी वेलकम आपको।
1: टाइम कम है, अब शायरी सुनाते हैं
0: जी
1: और एक गजल सुनाएंगे हम आपको।
0: जी
1: क्यों छोड़ दें हम आपसे मोहब्बत करना।
0: बहुत अच्छी।
1: क्यों छोड़ दें हम आपसे मोहब्बत करना, आप किस्मत में ना सही दिल में तो होना।
0: वाह
1: सर, एक शादी है मेहंदी हसन की गजल है और हो सके तो आप अगले प्रोग्राम में इसे शामिल जरूर कीजिएगा।
0: जी
1: मैं आपको सुनाऊँ के थोड़ा सा तर्क के साथ सुनाऊँ सुर के साथ।
0: जी जी
1: तुम ये फिक्र बात ना तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। खंजर से करो बात ना तलवार से पूछो, मैं कत्ल हुआ कैसे मेरे यार से पूछो। खंजर से करो बात तलवार से पूछो। सलामत रहे सर।
0: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जीती रहिए, अल्लाह हाफिज। ओके जी इरम आपका बहुत शुक्रिया। आपकी लाइन में बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन सी, इसलिए सही तरह से हम सुन नहीं पाए आपकी पूरी कॉल को। साहब खूबसूरत कलाम आपको सुनाने लगा हूँ अख्तर शीरानी का। नज़रों की बात अभी हमने की थी कि नज़र जो है वो दिल को चीर के रूह तक पहुँच जाती है, कुछ ऐसी बात इसमें भी है। कुछ आशिक मिजाज लोगों के लिए, कुछ इश्क में डूबे हुए लोगों के लिए। क्या कह गई किसी की नज़र कुछ न पूछिए। कुछ नज़रें बहुत कुछ कह जाती हैं। वैसे मोहब्बत में इश्क में नज़रें ही सबसे पहले कुछ कहती हैं। क्या कह गई किसी की नजर कुछ ना पूछिए, क्या कुछ हुआ है दिल पे असर कुछ ना पूछिए। झुकती हुई नजर से वो उठता हुआ सा इश्क, उफ वो नजर वो इश्क मगर कुछ ना पूछिए। उफ वो नजर वो इश्क मगर कुछ ना पूछिए।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: There's music, and then there's magic. One above FM 101.

0: फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा।
1: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
0: तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।
1: فَيَوْمَ

उनको अहल जन्नत से पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया और न किसी जिन ने। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।